0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला

जी आकाशवाणी सागर है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई 2026। इस वक्त सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। अपने सभी श्रोताओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी सुबह के 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जो अनुप्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। आइए समाचारों के लिए थोड़ी सी देर इंतजार करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी सागर से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त अर्चना कार्यक्रम का है, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं समूह स्वर में इस मातृ वंदना के साथ।

और श्रोताओं, अब चलते हैं भक्ति संगीत की तरफ इस भजन के साथ। स्वर व संगीत है पुरुषोत्तम दास जलोटा का।

अभी श्रोता भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुन रहे थे। एफएम बैंड पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी सागर।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। सोमवार दिनांक 6 जुलाई 2026 को प्रातः 8:30 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बिंदिया के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो सखी की रिकॉर्डिंग आज यानी बुधवार दिनांक 1 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे से की जाएगी। श्रोता कॉल लगाकर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा फोन नंबर है 240-845 और सागर का एसटीडी कोड है 075-82। कार्यक्रम का प्रसारण दिन सोमवार प्रातः 8:30 बजे बिंदिया कार्यक्रम में हेलो सखी के अंतर्गत होगा। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, सुबह के 6:25 हुए हैं। समय कार्यक्रम विवरण का है। आपको बताना चाहेंगे, सुबह 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। कुछ पुराने फिल्मी गीत होंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। वक्त सुबह 6:40। सुबह सुबह कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 7:00 बजे और 7:05 पर सुनिएगा कृषि संकेत। मन चाहे गीत, फरमाइशी गीतों का ये प्रोग्राम सुबह 7:20 पर हमारे श्रोता सुन सकते हैं और रात्रि 9:00 बजे भी आप मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनेंगे। सुबह 7:45 पर संगीत सरिता का आनंद लीजिएगा। शाम 5:30 पर श्रोता संगीत सरिता सुन सकते हैं। सुबह 8:15 पर आप लोक संगीत सुनेंगे और शाम 7:20 पर आनंद लीजिएगा लोक रंग का। सुबह 8:45 का समय रहेगा चित्रपट संगीत का। 10:00 बजे जिले की चिट्ठी। 10:05 पर प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन आप सुनेंगे। 10:10 से आप सुनेंगे फोन करें गीत सुने कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। 11:00 बजे होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 5:02 का वक्त युववाणी कार्यक्रम का।

बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43

यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्रोताओं, रात्रि 8:20 पर राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर विशेष प्रस्तुति अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय होगा, बेटी बचेगी तो सृष्टि रचेगी। विशेषज्ञ रहेंगी डॉक्टर शिविका यादव, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। भेंट करता रहेंगे दीपक निषाद। समय रात्रि 8:20। रात 9:00 सुनिएगा मन चाहे गीत कार्यक्रम। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार होंगे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

कार्यक्रम विवरण अभी श्रोता सुन रहे थे। FM बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। 6:30 बस होने को हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। आज आप इसकी 35वीं कड़ी सुनेंगे। मुख्य गायक स्वर लक्ष्मी शंकर और रामकिशन चंदेश्वरी के हैं। आइए सुनते हैं।

उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने पांचों वाण छोड़े, जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। आज आपने इसकी 35वीं कड़ी सुनी। मुख्य गायक स्वर लक्ष्मी शंकर और रामकिशन चंदेश्री के थे। ये आकाशवाणी सागर है। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कुछ पुराने फिल्मी गीत कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं ये नज्म, जिसे आवाज मोहम्मद रफी ने दी, साहिर लुधियानवी ने लिखा, रोशन ने संगीतबद्ध किया, और ये नज्म है आपके लिए फिल्म बरसात की रात से।

0: इस नज्म के बाद आइए पहले ये संदेश सुनते हैं, उसके बाद अगला गीत पहुंचाएंगे आप तक।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
2: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
0: प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से ये गाना, जिसे SH बिहारी ने लिखा और OP नैयर ने इसके लिए संगीत तैयार किया।

का व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर

0: और आइए अब सुनते हैं एक दिल सौ अफसाने, इस फिल्म से गाना। ये आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत शंकर जयकिशन का है।
1: तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चम।

अभी श्रोता कार्यक्रम भूले बिस्से गीत में कुछ पुराने फिल्मी गीत सुन रहे थे। श्रोताओं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। सोमवार दिनांक 6 जुलाई 2026 को प्रातः 8:30 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बिंदिया के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो सखी की रिकॉर्डिंग आज यानी बुधवार दिनांक 1 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे से की जाएगी। श्रोता कॉल लगाकर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा फोन नंबर है 240-845, सागर का एसटीडी कोड है 075-82। कार्यक्रम का प्रसारण दिन सोमवार प्रातः 8:30 बजे बिंदिया कार्यक्रम में हेलो सखी के अंतर्गत। तो समय याद रखिए आज प्रातः 11 बजे से। फोन नंबर एक बार फिर 240-845 और सागर का एसटीडी कोड 075-82। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर में आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः ईरानस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन इत्यनेन सह दूरभाष माध्यमेन संभाषणम् अकरोत्। संभाषणावधौ राष्ट्रपतिना पेजेश्कियन इत्यनेन पश्चिम एशियायाः घटनाक्रमस्य विषये प्रोदीरितम्। प्रधानमंत्रिणा उभयोर देशयोर्मध्ये संजातं सहमतिं स्वागतीकृतम्। सहैव तेन भारतस्य निरंतर नीतिः पुनः प्रतिपादिता यत् सर्वेषां समाह्वानानां समाधानं केवलं संवादेन सुष्ठु नीत्या एव भवितुम् अर्हति। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी इत्याख्यः अधिनियमः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य एक दिनांकात् कृत्स्नेही ग्रामीण भारते प्रवृत्तो भविष्यति। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25-उत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तिकरणं विधास्यति। देशे अस्य नूतन तंत्रस्य क्रियान्वयनार्थम् अस्य वित्तीय वर्षस्य कृते 92,675,000,000,000 रूप्यकाणां प्रावधानं विहितम्। उपक्रमस्य अस्य प्रवर्तने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढसमन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् 25-उत्तरैकशतदिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति, चिरस्थायि सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति। अनेन सहैव विकसित भारतस्य संकल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापान देशस्य प्रधानमंत्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना सह षोडशे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखर सम्मेलनम् उभयोर देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुम् एकं प्रकृष्टम् अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखंड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्याम् अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं संजातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद् पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तंत्रेण संचालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एक दिनांकतः उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20-26 तथा उत्तराखंड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 20-19 इत्येतेः सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्य प्रशासनेन उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतं एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्र तंत्रस्य अन्तर्गतं उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणम् एव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी सागर का प्रसारण है। सुबह के 7 बजे हैं। ये समय है कार्यक्रम सुबह सुबह का। इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं साहिबा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। श्रोताओं, कहते हैं कि मनुष्य में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के विचार होते हैं, लेकिन सत्यता ये है कि व्यक्ति की सोच जितनी सकारात्मक होगी उसका मन उतना ही प्रसन्न भी रहेगा और इसका आभास उसके चेहरे से भी लगाया जा सकता है। लेकिन याद रखने की बात यह भी है कि खूबसूरती केवल इतनी ही नहीं है कि हम कितने खुश हैं, बल्कि असली खूबसूरती ये है कि हमसे कितने खुश हैं। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छे विचार ये मन को हमेशा खुश रखते हैं। हम सभी को खुश रहने का ये सबसे बड़ा रहस्य स्वीकार करना होगा। हमें यह भी समझना होगा कि खुशी बाहर की परिस्थितियों में है ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर जो दृष्टिकोण मौजूद है, जिस दृष्टि से हम लोगों को देख रहे हैं या जो आदतें हमारे अंदर बसती हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ हमारी खुशी निर्भर करती है। खुशी का सबब कुछ भी हो सकता है। कई बार कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हमें स्नेह और प्रेरणा मिलती है। ये स्वीकार करना होगा कि वो हमारे जीवन के अनमोल उपहार होते हैं। हमें उन्हें संभाल कर रखना होगा जिससे ये क्रम सदा जारी रहे। हमसे कुछ भी ऐसा ना हो कि ऐसे अनमोल उपहार हमसे दूर हो जाएं, क्योंकि उनका साथ हमें सकारात्मक ऊर्जा, सही मार्गदर्शन और कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। जो लोग हमारे लिए सही हैं, वो हमें जीवन में सही और गलत का फर्क भी सिखाते हैं। केवल तारीफ की तवक्को ही रखना सही जीवन का आधार नहीं है, क्योंकि जो हितैषी हैं उनके द्वारा दी गई प्रेरणा हमें अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रखती है। जब भी हम निराश होते हैं, उनका स्नेह और प्रोत्साहन हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसलिए ऐसे लोगों के प्रति हमेशा सम्मान और धन्यवाद की भावना रखनी चाहिए।

0: क्योंकि इस बात को समझना होगा कि वो बिना किसी स्वार्थ के हमारे व्यक्तित्व को अपनाते हैं। उनके विचार और अनुभव हमें जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करने की हिम्मत देते हैं। हम सबको खुश रहने की कला सीखनी होगी, क्योंकि दुखी होने के तो न जाने कितने कारण हम ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए भी कुछ चीज़ें करनी होंगी। वर्तमान में जीने की आदत हमें डालनी होगी। दूसरे का आभार व्यक्त करने की भी आदत होनी ही चाहिए। और जैसा हम अपनी शारीरिक सेहत का ध्यान रखते हैं, वैसे हमें अपनी मानसिक सेहत का भी ध्यान रखना होगा। और ये एक दिन का क्रम नहीं होना चाहिए, ये एक निरंतर अभ्यास है जो हमें करते रहने होता ही है, जिससे नकारात्मक जो विचार हैं उनको हम आसानी से अपने से दूर रख सकते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि नकारात्मक विचारों ने कभी भी किसी का भी भला नहीं किया है। अच्छी सोच, अच्छी भावना और अच्छे विचार, ये तीनों जीवन में सुख शांति के लिए बहुत जरूरी हैं। सभी का जीवन सुखमय रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ साहिबा को इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम से आप जुड़े रहिए आकाशवाणी सागर के कार्यक्रमों के साथ। 7:05 बस होने को हैं। अब आप सुनेंगे कृषि चर्चा पर आधारित हमारा कार्यक्रम कृषि संकेत। भारत सरकार की योजनाएं और विगत 12 वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास, इस विषय पर केंद्रित रहेगा हमारा आज का ये अंक। और विशेषज्ञ हैं अंकित रावत। तो आइए सुनते हैं कृषि संकेत।
1: जो देश है, प्रदेश है, जिला है, कृषि प्रधान जिला है, तो हम गत 12 वर्षों में देखें हमारे कृषि के क्षेत्र में विभाग के माध्यम से, किसान भाइयों के माध्यम से, हम सब लोगों के सामूहिक प्रयास से एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और जो कृषि है एक अपने धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। हमारे किसान भाई, कहना चाहिए कि जैसी किसानी होती थी उन्नत तकनीकियों को सीख रहे हैं और उसको अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं, उससे उनको भी आर्थिक रूप से फायदा हो रहा है। वर्तमान में आप लोगों को भी जिज्ञासा होगी कि क्या क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से या सरकार के माध्यम से आपको कौन कौन सी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। सबसे मुख्य योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें हमारे सभी कृषक भाइयों को 6,000 रुपये 3 किस्तों में प्रति वर्ष के रूप में उनके खातों में आता है, जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों को एक संबल मिला है। उसके अतिरिक्त पीएम किसान मानधन योजना, जो हमारे 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के जो हमारे किसान भाई हैं उनका एक नॉमिनल प्रीमियम कटता है और प्रीमियम के पश्चात उन्हें 3,000 रुपये प्रति महीना 60 वर्ष के बाद एक पेंशन के रूप में प्रदाय की जाती है, जिससे भी किसानों को बहुत लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण योजना चल रही है, जो है पीएम कुसुम योजना। सोलर वाला पंप लगवाते हैं हमारे किसान भाई तो उनको 90% तक अनुदान मिलता है। जो वर्तमान में किसान भाइयों को ये समस्या रहती थी कि प्रॉपर बिजली ना होने से उनका जो सिंचाई है प्रभावित होती थी, वो सिंचाई प्रभावित नहीं होती है। तो अगर अपन आज से 12 वर्ष पूर्व जाएंगे तो हमारे पास सिंचित रकबा था ही नहीं, बहुत कम सिंचित था, लेकिन वर्तमान में हमारी सिंचाई क्षमता जो है काफी बड़ी है। और ये उसके लिए एक योजना चलती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमारे क्षेत्रों में बलराम तालाब का निर्माण किया गया, जो हमारे किसान भाई अपने एक एक बूंद पानी का उपयोग कर लेते हैं स्प्रिंकलर सेट के माध्यम से, उसका ड्रिप इरीगेशन हो गया। और हमारे किसान भाई अगर आप देखेंगे तो अधिकांशतः अब इन स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरीगेशन पर जा चुके हैं, वो भी जानते हैं कि पानी की क्या उपयोगिता है। अब हमें किसानों को बताने की आवश्यकता नहीं है, किसान हमसे ज्यादा समझदार है, वो हमसे अच्छी खेती करता है, वो हमसे ज्यादा ज्ञान रखता है, ऐसा हम मानते हैं। उसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर करके एक योजना चला करती थी, इसका उद्देश्य ये था कि हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर हो। कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब ये रहता है कि ऐसा केंद्र जहां पे हमारे वर्तमान में जो आपके जितने भी एडवांस यंत्र हैं वो उपलब्ध रहे। तो इस योजना के अंतर्गत लगभग किसान 25,000 तक का अपना यंत्र क्रय कर सकता था, उसमें 10,00,000 रुपए तक के विभाग के द्वारा अनुदान दिया जाया करता था। और उसमें 6 यंत्र आपके फिक्स रहते थे, ट्रैक्टर हो गया और भी जो आपके सीडल हो गई, कल्टीवेटर हो गया, हैप्पी सीडर हो गया, या जो भी यंत्र उस समय तात्कालिक समय रहे होंगे वो उसमें प्रदर्शित हुए थे, तो उनमें से किसी एक यंत्र का अपने को 6 यंत्रों का चयन करना पड़ता था और किसान भाइयों को 10,00,000 रुपए तक अनुदान उसमें मिला है। उसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी खरीफ खरीफ में हमारा लगभग 2% प्रीमियम कटता है, रबी में 1.5% प्रीमियम कटता है, है ना। तो और होता क्या है, 2% आपका काटा है, 4% राज्य सरकार उसमें मिलाती है और 4% केंद्र सरकार मिलाती है। तो इस प्रकार वो हो जाता है, जो 2% आपका प्रीमियम कटा है वो एक्चुअल में सरकार 10% उसका भुगतान संबंधित एजेंसी को या संबंधित संस्था को करती है, है ना। तो वो आपका प्रीमियम 10% रहता है लेकिन सरकार आपसे केवल 2% रहती है, शेष जो 8% में से 4% केंद्र सरकार और 4% राज्य सरकार उसका भुगतान करती है। उसके अलावा महत्वपूर्ण योजना एक हमारी चल रही किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि सारे किसान भाई हमारे जानते हैं, उनको एक संबल मिला है, शॉर्ट टाइम उनको फाइनेंस मिलता है कि हम अपनी खेती करें, जो हमें खेती में जो आदान की आवश्यकता रहती है उस राशि का उपयोग करके हम हमारे आदान की व्यवस्था करें, और जैसे ही हमारा फसलों का उत्पादन आ जाए तो हम उसको पे करके तो हमारा सब क्लियर हो जाता है, हम अगली बार फिर वो लोन उपलब्ध हो रहता है। उसके अतिरिक्त खाद प्रसंस्करण के क्षेत्र में PMFE योजना जो है संचालित है, इस योजना के अंतर्गत होता क्या है, हमारे किसान भाइयों को आपका मैदा मिल हो गई, आपका गेहूं का ग्रेडिंग प्लांट हो गए और भी कई प्रकार के जो संरचना रहती है उन पे अनुदान के रूप में मिलता है। और उसके अतिरिक्त जो हमारा भारत सरकार की नाबार्ड एजेंसी है उनके माध्यम से एक AIF करके एक फंड रहता है, जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, हमारे किसान भाइयों को सब्सिडी भी मिलती है। उसमें जो लोन रहता है आपका प्रोजेक्ट टॉस का 9% पे लोन फाइनेंस होता है हमारे किसान भाइयों को, जिसमें से जो राज्य सरकार का अनुदान उस यूनिट में मिला वो तो मिला ही मिला, अतिरिक्त में जो हमको 9% ब्याज लग रहा है उसको में से 3% ब्याज हमें प्रॉपर अगर हम चलाते रहते हैं तो 3% हमारा रिटर्न हो जाता है, तो वो लोन हमको 9% के आसपास पड़ता है। कई योजनाएं संचालित हैं, इनसे हमारे किसान भाइयों को निरंतर लाभ मिलता जाता है।
0: अभी अपने कृषि संकेत का ये अंक सुना, विशेषज्ञ थे अंकित रावत। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, अनुप्रसारण किया जाएगा हमारे भोपाल केंद्र से, प्रतीक्षा थोड़ी सी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल में भारी बारिश का जायजा लिया, कहा केंद्र और राज्य मिलकर संकट से निपटेंगे। वीवीजी रामजी अधिनियम आज से होगा लागू, ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में होंगे शामिल, और मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडौरी में भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति भयावह है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि हमने स्थिति का जायजा लिया है और इसके लिए चर्चा की है। संकट बड़ा है और चुनौती भी सामान्य नहीं है।
1: यहाँ भारी बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश में जो संकट पैदा हुआ है, स्थिति भयावह है, संकट बड़ा है और चुनौती भी सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी तत्परता पूर्वक कदम उठाए गए। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन। मैं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि
0: कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। प्रधानमंत्री को यहां की स्थिति की रिपोर्ट दी जाएगी और हर संभव सहयोग भारत सरकार करेगी। श्री चौहान ने आज भी प्रभावित इलाकों में जाकर स्थिति का जायजा लेने का आश्वासन दिया है। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जीरामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में

0: लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश भर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर नए ढांचे में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। महोत्सव में कोदो कुटकी उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि का अंतरण, 494 करोड़ से अधिक लागत के 629 विकास कार्यों को लोकार्पण एवं भूमि पूजन और हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव राज्य के कोदो कुटकी उत्पादक 3,941 किसानों के बैंक खातों में 2,82,99,300 रुपये की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। ये राशि किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रदान की जा रही है, जिससे श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस अवसर पर राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा, कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद भारती पारदी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जल से ही जीवन है और जीवन के लिए पानी की बचत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन का अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी बीते 3 वर्षों से यह अभियान वृहद रूप से जन सहयोग से चलाया जा रहा है और बड़ी संख्या में जल संरचनाओं का संरक्षण एवं पुनरुद्धार किया है। कल राजगढ़ में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल अलनीनो के प्रभाव से कम बारिश का अनुमान है, इसलिए प्रदेश में अमृत सरोवर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नदी संरक्षण जैसे जल स्रोतों के संरक्षण कार्य निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि
2: मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 19 मार्च से 30 जून तक लगभग 100 दिन में 10,514 करोड़ की लागत से 3,62,000 से अधिक ये हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, छोटे कूप, अमृत सरोवर, इन सब का पुनरुद्धार किया।
0: रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली ने बड़े बाहरी झटकों का सामना करने के बावजूद जबरदस्त मजबूती दिखाई है। बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की प्रस्तावना में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत विकास दर, कम महंगाई, वित्तीय और गैर वित्तीय कंपनियों की बेहतर बैलेंस शीट और पर्याप्त बफर ने माइक्रो फाइनेंशियल स्थिरता बनाए रखने में मदद की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक आधार उसे कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में रखते हैं और बाहरी झटकों से निपटने की ज्यादा क्षमता प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 30 जून तक प्रदेश भर में 5,48,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 4,68,000 से अधिक विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है तथा 2,93,257 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत की उनकी यह पहली आधिकारिक यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। यह सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के अवसर प्रदान करेगा। प्रदेश में PM सूर्य घर योजना के तहत अब तक कुल 1,00,000

45,150 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इनके बैंक खातों में 1,010,25,00,000 रुपए की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। भारत और इंग्लैंड

हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 126 रन का लक्ष्य रखा, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 13 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कल मानसून जबलपुर, भोपाल, रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में प्रवेश कर गया है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा और सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जिला स्तरीय बैंकर समन्वय समिति की बैठक में बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा कर पात्र लोगों को तुरंत लाभ पहुंचाया जाए। मानसून के चलते नर्मदापुरम का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और शिवपुरी का माधव टाइगर रिजर्व आज से 30 सितंबर तक अगले 3 महीनों के लिए पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद किया जाएगा। सतपुड़ा के मढ़ई और चूरना कोर क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। झाबुआ जिले में साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 के 7वें दिन साइबर सुरक्षा रैली, नुक्कड़ नाटक और विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इंदौर के 100 सरकारी स्कूलों में ONGC CSR फंड और सांसद सेवा संकल्प के सहयोग से करीब 70 लाख रुपए की लागत से RO सिस्टम और वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में 29 स्कूलों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और बड़वानी जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी आज से शुरू हो गई है। ये खरीदी आगामी 10 अगस्त तक चलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल में भारी बारिश का जायजा लिया। कहा, केंद्र और राज्य मिलकर संकट से निपटेंगे। बीबीजी रामजी अधिनियम आज से होगा लागू। ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडौरी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। 7:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं मनचाहे गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में स्वीकार कीजिए साहिबा का नमस्कार। पहला गीत फिल्म रफू चक्कर से, कंचन का गाया हुआ ये गीत है जिसे गुलशन बावरा ने लिखा, कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया। आप सबने सुनना चाहा गीत को। ये हैं दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा। पहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंछोर। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से ये हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल आज़ाद। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुने ये गीत।

लहू के दो रंग, ये फिल्म का नाम है जिससे अगला गीत अब आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज़ में। फारूक कैसर के ये बोल हैं, बप्पी लहरी का संगीत है इस गीत के लिए और अनुरोध आपने हम तक पहुंचाया है। ये हैं नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबन, शिवा, शिवांशु, यश, अवधेश, प्रेम नारायण, रमेश कठौंदिया, सुजीत पंडित, रमाकांत दुबे। मेन मार्केट ग्राम पोस्ट सोराई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश और नामदेव परिवार के तमाम लोग। गायत्री कॉलोनी रहली से हेमराज ठाकुर, राकेश श्रीवास्तव, नवल किशोर नामदेव, राघवेंद्र सोनी, नरेंद्र सोनी, जीतू नामदेव, छोटू नामदेव, उमा सराफ, राम जैन, लगान पढ़रिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती और आप हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। बिलईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन, कुमारी भाव्या और प्रियांश देवांगन। आप तमाम श्रोताओं के अनुरोध पर आइए सुने ये गाना।

अब सुनते हैं आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। गीत है फिल्म हिम्मत से, जिसको सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास बागवानी, ये हैं। शाहजी नगर देगलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता संतोष भाकरे, सुनन्या, सुकन्या और सविता भाकरे। समस्तीपुर बिहार से ये हैं मीरा सिंह, ज्योति सिंह। रोहतास बिहार से अनुरोध करता हैं सोनम सिंह और अनामिका सिंह। खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई जान भाई, राजकुमार बोड़ाना। और सुदामा नगर खंडवा से अनुरोध है लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: अब आप सुनेंगे रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल। इस गीत को आवाज महेंद्र कपूर ने दी है और ये गीत है फिल्म पति पत्नी और वो से। गीत को सुनना चाहते हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर, जयपाल यादव। चंडीगढ़ से अनुरोध है सतीश अनेजा, श्रीमती विमला अनेजा का। डागर गांव छत्तीसगढ़ से ये हैं राज्यपाल गजभिये, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदूरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदूरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान। किशनगंज बिहार से ये हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और देवाश्री। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के तमाम लोग। आइए सुने ये गाना।

प्रोग्राम के आखिर में आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म होटल से ये गाना, जिसे आशा भोसले और मनहर ने आवाजें दी, इंदिवर ने लिखा और उषा खन्ना ने संगीतबद्ध किया। हमारे इन श्रोताओं ने इस गीत को सुनना चाहा है। ये हैं कवर कॉलोनी बढ़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली परभणी महाराष्ट्र से अनुरोध करता है रुपेश संघाई, महेश संघाई, प्रगेश, प्रतेश और पूरा संघाई परिवार। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से ये पसंद किया है गीत को राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और उनके परिवार के तमाम सदस्यों ने। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष और ये अनुरोध बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर, काजल, लखवीर, रानू, कृष्णा, छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन, रंगीला, निशान, अनमोल, प्यारे बेटे चटकू मटकू, शिवाजी चौक कटनी से अनुरोध है अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अंतुन कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा। तो आइए सुने ये गीत।

अभी श्रोता मन चाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे थे। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। सोमवार दिनांक 6 जुलाई 2026 को प्रातः 8:30 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बिंदिया के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो सखी की रिकॉर्डिंग आज यानी बुधवार दिनांक 1 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे से की जाएगी। श्रोता कॉल लगाकर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। कॉल करने के लिए फोन नंबर है 240-845 और सागर का एसटीडी कोड है 075-82। कार्यक्रम का प्रसारण दिन सोमवार प्रातः 8:30 बजे बिंदिया कार्यक्रम में हेलो सखी के अंतर्गत होगा। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी सागर है। समय हुआ है कार्यक्रम संगीत सरिता का। सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं पंकज उदास की आवाज में ये पेशकश।

0: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: आइए अब सुनते हैं कुमार सत्यम सारथी को।

और चलते चलते आप तक पहुंचा रहे हैं एक कव्वाली। ये हैं जानी बाबू और

इस कव्वाली के साथ ही संगीत संगीत सरिता का ये सफ़र अब यहीं तक। इजाज़त दीजिए साहिबा को, थोड़ी देर में आप समाचार प्रभात सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने

0: बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
2: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
3: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा

0: होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की

0: आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। 8:15 हुए हैं, आपको इंतजार होगा लोक संगीत का। आइए सबसे पहले सुनते हैं राम मूर्ति तिवारी की आवाज में ये लोकगीत।

श्रोताओं आप तक पहुंचेगा अगला लोकगीत, लेकिन पहले सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। सोमवार दिनांक 6 जुलाई 2026 को प्रातः 8:30 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बिंदिया के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो सखी की रिकॉर्डिंग आज यानी बुधवार दिनांक 1 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे से की जाएगी। श्रोता कॉल लगाकर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। कॉल करने के लिए फ़ोन नंबर है 240-845, सागर का एसटीडी कोड है 0-75-82। कार्यक्रम का प्रसारण दिन सोमवार प्रातः 8:30 बजे बिंदिया कार्यक्रम में हेलो सखी में होगा। सूचना समाप्त हुई और अब चलते हैं अगले लोकगीत की तरफ। ये हैं शकुंतला शुक्ला।

0: का व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: ये हैं प्रीतम सिंह ठाकुर और साथी।

0: साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: ये हैं बब्बू राजा बुंदेला और साथी, आइए सुनते हैं ये विदाई गीत।
2: बाबुल तोरी गली, अरे उड़ गई उड़ गई।

अभी श्रोता लोक संगीत कार्यक्रम में कुछ बुंदेली लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। वक्त हुआ है चित्रपट संगीत का। सबसे पहले आइए सुनते हैं शफकत अमानत अली की आवाज में निरंजन अयंगर के ये बोल, शंकर एहसान राय का संगीत। ये गीत फिल्म माय नेम इज खान से।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: आइए अब सुनते हैं सुल्तान फिल्म से ये गाना, जिसे राहत फतेह अली खान ने गाया है। इरशाद कामिल के बोल हैं, विशाल शेखर का संगीत।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: और आइए अब सुनते हैं फिल्म रेड 2 से ये गीत।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। आपको बता दें कि भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था। बिधान चंद्र रॉय की गिनती देश के महान चिकित्सकों में की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि विश्व भर में चिकित्सा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है। इसलिए हम भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर डॉक्टर को आज सलामी देते हैं और इस विशेष दिन यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे की उन सभी को सम्मान के साथ बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत दिल का रिश्ता। इस फिल्म से अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों के स्वरों में समीर के बोल, नदीम श्रवण की बनाई धुन।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं परदेसी बाबू। इस फिल्म से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। सुधाकर शर्मा ने इस गीत की रचना की है और तर्ज बनाई है आनंद राज आनंद ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अब आपको सुनवाते हैं समीर का लिखा ये गीत। अलका याग्निक, अभिजीत की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है जुदाई।

बॉम्बे फिल्म से गीत चित्रा की आवाज में महबूब के बोल ए आर रहमान की बनाई धुन।

अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश, अलका याग्निक का गाया गीत, समीर की रचना, हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म का नाम जूली।

जूली फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक से अब दीजिए आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारायणिया को आज्ञा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुनते रहिए आगे के कार्यक्रम विविध भारती के संग।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

दोस्तों, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध, आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4

0: मीटिंग वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजे हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

बड़वानी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं मानसून और प्रशासनिक तैयारियों की। पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस वर्ष जिले में जून माह में औसतन 743.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश की शुरुआत होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नगर पालिका परिषद बड़वानी द्वारा मानसून के दौरान शहर में संभावित जल भराव, बाढ़ या अतिवृष्टि जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। नगरवासियों को सूचित किया गया है कि बारिश में यदि शहर के किसी भी क्षेत्र में जलभराव या अन्य कोई समस्या होती है तो नागरिक सतर्कता बरतें और तत्काल राहत व बचाव दल से संपर्क करें। अब बात करते हैं जन स्वास्थ्य की, जिसके तहत बड़वानी में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। अभियान में जन्म से 5 वर्ष तक की आयु के कुल 2,61,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। वहीं मृदा परीक्षण और कृषि विकास के क्षेत्र में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जिले को इस वर्ष 7,718 मिट्टी परीक्षण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले अभी तक 7,178 मिट्टी नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब बात नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता की, जिसके तहत पिछले दिनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी द्वारा नशा मुक्ति सप्ताह के दौरान गाँवों में जाकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक का मंचन कर युवाओं और समुदाय को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक भी किया गया। वहीं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान 24 मार्च से जिले भर में चलाया जा रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय जेल बड़वानी में 10 दिवसीय जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रतिदिन 100 कैदियों की टीबी की स्क्रीनिंग की। अब बात आपदा प्रबंधन और युवा शक्ति की। पिछले दिनों 7 दिवसीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण के तीसरे सत्र का समापन हुआ। इस सत्र के दौरान जिला आपदा प्रबंधन के आदेश से बाढ़ बचाव व सिंहस्थ कुंभ के लिए 231 युवाओं को संभागीय सेनानी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया गया। अब बात करते हैं खेल जगत और बड़वानी के गौरव की। हॉकी इंडिया द्वारा ओमान में 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए अंडर 18 महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई है, जिसमें बड़वानी शहर की स्नेहा दावड़े को पुनः भारतीय टीम में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं व्यापार और अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमिता की, जिसके तहत पिछले दिनों दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड नेशनल SC/ST हब MSME मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में सेंधवा में SC/ST उद्यमिता जागरूकता एवं स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं सिकल सेल नियंत्रण की, जिसके तहत पिछले दिनों विश्व सिकल सेल दिवस पर आयुष विभाग के चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा एड ऑन थेरेपी के रूप में सिकल सेल से प्रभावित 201 रोगियों को आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण घर घर जाकर किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर बात करें तो पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम रामकुलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, कलेक्टर जयति सिंह, SP पदम विलोचन शुक्ल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, छात्र व नागरिक उपस्थित थे। वहीं पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में पिछले दिनों दुग्ध उत्पादकों की जागरूकता कार्यशाला का आयोजन जिले में किया गया। कार्यशाला के दौरान उपसंचालक डॉक्टर दिनेश पटेल ने पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, संतुलित आहार बनाने की विधि और दुग्ध उत्पादन के लाभ तथा साइलेज की ई मार्केटिंग व गोरस एप्लीकेशन की जानकारी प्रदान की। बड़वानी जिले की चिट्ठी में अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता की। साइबर अपराधों के बढ़ते ग्राफ पर अंकुश लगाने, आमजनों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सजग करने और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से पिछले दिनों जिले में 15 दिवसीय विशेष साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। और अंत में बात जल संरक्षण और जल गंगा संवर्धन अभियान की, जिसके तहत बड़वानी जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन सहित विभिन्न कार्यों को संपादित किया गया। वहीं कल यानी 30 जून को जलगंगा संवर्धन अभियान के जिला स्तरीय समापन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। जिले में कुल 5,666 विकास कार्यों को पूरा किया गया है, जिसके चलते जिला प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। तो श्रोताओं, ये थी बड़वानी जिले की चिट्ठी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे बड़वानी जिले की चिट्ठी।
1: ये आकाशवाणी सागर है, 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन।
2: बहुत बहुत अभिनंदन है आपका स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। मैं हूं मनोज सक्सेना और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चितावर जी। सर नमस्ते।
3: नमस्कार
2: सर। एक कहते हैं ना कि आजकल हर व्यक्ति को ये समस्या होने लगी है, वह है फैटी लीवर की। आम बात हो गई फैटी लीवर होना। फैटी लीवर होना तो ठीक है, क्या फैटी लीवर होने से डायबिटीज हो सकती है?
3: बड़ा ही अच्छा और प्रासंगिक प्रश्न है। क्या होता है कि जब हम शुरुआती दौर में अपने जीवन शैली में कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, खान पान हमारा संयमित नहीं होता, नियमित व्यायाम नहीं होता, टेंशन तनाव बढ़ने लगता और कहीं ना कहीं निद्रा हमारी आंखों से उड़ने लगती है, तब आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस, तनाव, बाकी सब चीजें बढ़ने लगती हैं। तो इस अवस्था में क्या होगा, जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन से हम बढ़ते हैं तो शुगर भी बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो उसका एक प्रतीकात्मक रूप है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो वहां पे होता है, वो लिवर के थ्रू होता है। तो सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक तौर पे लिवर फैटी होने लगता है। तो ये फैटी लिवर होने लगा तो इसका मतलब यही है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब यही है कि अतिरिक्त ऊर्जा लिवर को मिल रही है जो वो पचा नहीं पा रहा है। तो किसी को भी अगर फैटी लिवर हो तो उसको मान लेना चाहिए कि उसे भविष्य में डायबिटीज होने की संभावना लोगों के बनिस्पत ज्यादा है।
2: सर जिनका पेट बड़ा होता है क्या उनको फैटी लीवर होता है?
3: प्रायः जिनका पेट बड़ा है तो उनकी वसा माने चर्बी जो है
2: जी,
3: वो आपके जो उतक हैं उनके आसपास ज्यादा है, जो खास आपके अंग हैं उनके आसपास ज्यादा है। विसरल फैट ज्यादा होगा तो ये तभी होगा जब फैटी लीवर हो चुका रहेगा। तो इनके तो मान के चले कि बहुत प्रबल संभावना है। आप किसी को बात अलग है, किसी को हर्निया है इसके कारण पेट बाहर है, वो अलग बात है, किसी को लेग्स एब्डोमेन है उसकी बात अलग है, पर प्रायः यह अवस्था चर्बी बढ़ने के बाद ही आगे आती है। तो इस अवस्था में फैटी लीवर तो आपको मिलेगा ही।
2: सर एक और भ्रम कह सकते हैं इसको या मिथक कह सकते हैं जो भी है कि फैटी लीवर जब होता है तो ट्राइग्लोसाइड बढ़ा हुआ आता है, ऐसा क्या सच है?
3: ये बिल्कुल सही है। देखिए हम बात कर रहे थे इंसुलिन रेजिस्टेंस की, जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो लिवर से ज्यादा फैट निकलेगा जो कि लिवर उसको पचा नहीं पा रहा है, तो वो ट्राइग्लिसराइड के तौर पे ही निकलेगा। तो हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया माने ट्राइग्लिसराइड की अधिक मात्रा इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंगित करती है।
2: तो हार्ट की बीमारी होने की संभावना कितनी रहती है?
3: देखिए ट्राइग्लिसराइड को जब हार्ट से जोड़ा गया तो बहुत सीधा सीधा संबंध नहीं मिला। LDL जो एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है वो अगर अधिक हो तो हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। HDL कम होने पे भी हार्ट डिजीज की संभावना ज्यादा हो जाती है। पर ट्राइग्लिसराइड का एसोसिएशन इंसुलिन रेजिस्टेंस से ज्यादा है, फैटी लिवर से ज्यादा है, प्री डायबिटिक स्टेटस से ज्यादा है। आप डायबिटीज हो जाने पे आपको हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसको इस तरह से देख सकते हैं।
2: सर पीलिया की संभावना कितनी बढ़ती है फैटी लिवर होने के बाद?
3: देखिए फैटी लिवर डिजीज और क्रॉनिक लिवर डिजीज का आजकल सीधा सीधा संबंध होता जा रहा है। सो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को आजकल MASLD कहते हैं, बाद में उसको वो स्टेटोहेपेटाइटिस में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं MASH है। फिर उसके बाद मेटाबॉलिक डिजीज लीडिंग टू सरोसिस होता है, जब फाइब्रोसिस होने लगता है तब आपको पीलिया भी हो सकता है, और कैंसर होने का भी एक बहुत बड़ा कारक बन गया है जिसको हम हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं।
2: जी जी,
3: तो वो हो जाए तो साल भर में ही बहुत कुछ हो जाता है।
2: फिर वही सवाल सर, फैटी लीवर ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए?
3: देखिए उत्तर तो हमेशा एक ही है, बोलोगे डॉक्टर साहब क्या घिसी पिटी बात करते हो, संयमित भोजन, नियमित व्यायाम, 6 से 8 घंटे की नींद और जीवन में टेंशन तनाव नहीं होना चाहिए। बिंदास अपने पंखों को फैला के उड़ते जाए, जीवन की खुशियां राह देख रही है।
2: श्रोताओं वाकई इतनी बेबाकी से जो सर बात करते हैं वो सुनकर हमें भी ऐसा लगता है कि हम वाकई आप तक आपके जो सवाल थे

0: का उत्तर पहुंचा रहे हैं और हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से यही उद्देश्य है कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और नियमित शरीर की जांच जरूर कराते रहें। आपके मन में भी इस तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8878112343। नंबर फिर सुन लीजिए 8878112343। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तवार जी से। अगले एपिसोड में हम कुछ और सवालों के साथ फिर आते हैं। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना का नमस्कार।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। FM बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। 10:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं, फोन करें, गीत सुनें। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: फोन करें, गीत सुने इस कार्यक्रम के पहले।
1: आकाशवाणी सागर से आप सुन रहे हैं फोन करें गीत सुने कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।
2: और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर। और आइए लेते हैं ये पहला कॉल।
3: हेलो,
2: नमस्कार, फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
3: आज मेरा पहला कॉल लग गया।
2: बहुत बहुत बधाई आपको। अपना नाम बताएं।
3: आसमान में बहुत सारे तारे हैं
2: जी,
3: लेकिन कोई चांद जैसा नहीं। आसमान में बहुत सारे तारे हैं लेकिन कोई चांद जैसा नहीं। आरजे तो और भी बहुत है, लेकिन कोई आप।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
3: हाय एवरीवन, हेलो मध्य प्रदेश, हेलो जय शेखर सर, नमस्कार एवरीवन एंड नमस्कार टू यू आल्सो।
2: दिस
3: इज प्रियदर्शनी मिश्रा, आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर ओडिशा से बोल रही हूँ।
2: कुछ बताएं, अभी नया क्या किया आपने इन दिनों?
3: हम चाहे दूर हो या पास, लेकिन जरूरी मायने रखता है रिश्ता।
2: बिल्कुल,
3: ठीक है, जो हम सबके बीच में है कहीं ना कहीं, राइट। एक दूसरे से जुड़े हैं, किसी को कोई देखा नहीं फिर भी एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि ये दिल की भाषा है, ठीक है, दिल से दिल तक। एक हफ्ता पहले फादर्स डे गया, फिर यू नो जो ये बोलते हैं क्या, योगा डे गया, फिर संगीत वर्ल्ड म्यूजिक डे गया। तो जैसे कि सर आपको मेरा क्वेश्चन है, आप कौन सा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? और म्यूजिक सुनते हैं ना लिरिक्स?
2: मैं म्यूजिक भी सुनता हूँ और उसके लिरिक्स पे भी ध्यान देता हूँ, और खासतौर से मुझे स्लो रोमांटिक सॉन्ग पसंद आते हैं।
3: हाय फाय, मुझे भी।
2: अच्छा अच्छा,
3: क्योंकि लिरिक्स हम ये इसलिए सुनते हैं, ये कितना गहरा है, कौन से गाने के पीछे ये आया, कौन से गाने के पहले ये आया, कितना हार्ट टचिंग हुआ। अगर हम म्यूजिक ही सुनेंगे, लिरिक्स का मतलब नहीं सुनेंगे, तो फायदा नहीं होगा। इसलिए आपने इतना सही जवाब, 100 out of 100।
2: चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी योगा डे निकला है तो आपने योगा किया क्या?
3: फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बात करके अच्छा लगा। हाँ, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं देती हूँ। लाइक यू नो, योगा हम जैसे आजकल के हम जमाने के बच्चे हैं ना, यंगस्टर, ठीक है, आप भी यंगस्टर है, हमारे साथ जाते हैं, ठीक है। तो हम अगर क्या करते हैं ना, हम सब कुछ भूल जाते, मैंने सब कुछ करते हैं, मतलब हम खाना भी भूल जाते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ पाते। लेकिन जो मोबाइल को थोड़ा स्पेस देके अगर हम योगा को हमारी जिंदगी में ऐड कर पाएंगे डेली रूटीन की तरह, जैसे हम सांस लेते हैं और योगा को हम सांस में अपने उतर पाएंगे, तो हमारे लाइफ में कोई रोग, मैंने रोग नहीं होगा कि हॉस्पिटल में हमें वेटिंग में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं रोज योगा करती हूँ, सबको बताती हूँ, अगर आप बिजी शेड्यूल में हो, अगर प्राइवेट सेक्टर में है, आईटी सेक्टर में है, तो कहीं ना कहीं एक जगह मत बैठिए, घूम के आइए, जैसे जयशेखर सर करते हैं, आधा घंटे बीच बीच में रेस्ट लीजिए, ब्रेक लीजिए छोटा सा सही, और आंखों को थोड़ा पानी, रेस्ट लीजिए और पानी थोड़ा छिटका मारिए, और एक योगा हम अगर रोज करेंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। हाँ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, शरीर ही अपना मंदिर होता है
2: जी। बारिश शुरू होने को है आपके यहाँ, शायद बारिश शुरू हो चुकी होगी।
3: हाँ, बारिश शायद क्या, बीच बीच में अभी शुरू

0: हाँ, अभी लेकिन थोड़ा रेगुलर नहीं हुआ है बारिश, लेकिन अभी आ जाएगा।
1: तो आप ऐसा करें कि एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें।
0: आपके पास सराखों पर हम उपहार पहले बाद में लेते हैं, पहले पौधा लगाते हैं और पौधा देते हैं।
1: अब आप बता दें कि फरमाइश क्या लेकर आए हैं आप।
0: मैं तो आपको मिस करूंगी, मैं छोड़ना नहीं चाहती। अगर इतना बात करूंगी तो और लिस्नर क्या होगा। आपको भी फरमाइश जल्दी से बता देती हूँ। आप ऐसे ही आगे बढ़िए और हम सबको ऐसे ही एंटरटेनमेंट कीजिए। ये हमारी सबकी तरफ से आपको दुआ है, ठीक है। बेस्ट विशेस, पुराना वाला सुनना चाहूंगी पूरा, वो डेडिकेट करूंगी आपको, मेरे फैमिली को और मेरी बेस्ट फ्रेंड चीनू को,
1: ठीक है।
0: प्यार किया है प्यार करेंगे मूवी का है और टाइटल ट्रैक है।
1: प्रियदर्शनी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।
0: थैंक यू।
1: और सुनिए अपनी फरमाइश पर, प्यार किया है प्यार करेंगे, इस फिल्म का ये गीत।

0: नमस्कार जय शेखर भैया।
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
0: भागीरथ कुमार, हर बार मड़िया विट्ठल नगर सागर।
1: क्या हालचाल है आपके?
0: सर बढ़िया है सर।
1: और क्या कर रहे हैं आप?
0: सर मैं ट्रेन में मूंगफली का धंधा करता हूँ।
1: तो अभी कैसा चल रहा है आपका व्यापार?
0: सही है सर, अभी क्या पेंट्री गार्ड वगैरह लग गए सर, तो इसके वजह से धंधा मत्ता चल रहा है।
1: दूसरा व्यापार करने का भी प्रयास करें
0: सर? लाइन के हिसाब से सर क्या है, मतलब सर अपनी मेहनत ही करना चाहिए, है ना सर? तो कई प्रकार के लोग मिलते हैं।
1: अच्छे लोग भी मिलते होंगे और बुरे लोग भी?
0: बुरे लोग भी मिलते। एक बार तो एक ने मेरे को नकली नोट दे दिया था 50 का।
1: अच्छा अच्छा,
0: ठीक है। तो पहले क्या है, नोट समझ में आते थे,
1: हाँ हाँ,
0: है ना, चौड़े थे, थोड़ी लंबे थे,
1: हाँ हाँ।
0: अब लेकिन 100 हो गया, 10 का और 50 का, 20 का, मतलब थोड़ा हाँ, हाँ। तो इसमें थोड़ा दिक्कत आती है।
1: अच्छा अच्छा
0: जी सर, है तो थोड़ा अपन को संभल के चलना पड़ता है।
1: भागीरथ भाई, आप एक कोशिश करें कि इस बार बारिश आने के पहले आप एक नन्हा सा पौधा लगाएं अपने घर के आसपास, पानी डालें उसको, लोगों से पूछें कि वो कितना बड़ा हुआ, आप छू के भी महसूस कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा हो रहा है।
0: हाँ सर, क्या जांच वगैरह लगा लो थोड़ी सी, तो उसमें बकरी बकरे देखने में सहूलियत होगी।
1: और हमें बताइए अगली बार कि आपने वो पौधा कितना बड़ा हो गया है।
0: जी सर, जी सर।
1: तो बताएं गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
0: सर मुझे गाना सुनना है, बता दो तुम्हें प्यार कैसे करें, बता दो तुम्हें प्यार कैसे करें।
1: सुनवाते हम आपको आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: जय राम जी भैया, फोन करने की सुने में स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं।
1: धर्मेंद्र हर बार बोल रहा सर, ग्राम बरोदिया बल्लभ।
0: तो धर्मेंद्र कुछ अपने बारे में बताएं, क्या कर रहे हैं आप बरोदिया में?
1: सर अभी तो गर्मी पड़ रही है, पानी गल नहीं रहा है।
0: हाँ ये समस्या तो आ रही है,
1: किसानी की तैयारी हो गई है, बीज लाला सो रहा और तो पानी के इंतजार में बैठे हैं।
0: सही कह रहे हैं आप, अपनी तैयारी पूरी रखें। लेकिन
1: पूरी है सर, पूरी हाँ, तैयारी।
0: और एक काम और करें कि एक कोई पौधा ऐसी जगह लगाएं जिसका लाभ सभी लोगों को मिले, आम जनता को।
1: सर बिल्कुल, पेड़ लगे हैं चार, आस ही लगाने हैं, छोटे छोटे हैं, पानी गिरेगा जब लग।
0: चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें बता दें कि गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: गाना सर वो सुनने आएगा मजा बरसात में।
0: आइए धर्मेंद्र भाई, हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: हेलो
1: जी, स्वागत है आपका। फोन करेंगी सुने में
0: पवन कुर्मी बोल रहे थे।
1: पवन भाई कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: कनेरा धाम से।
1: तो पवन भाई क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल में आप?
0: अभी तो कुछ नहीं सर, अब तैयारी चल रही है सोयाबीन की।
1: हाँ,
0: बारिश का इंतजार है, बस तैयार है और बाकी।
1: बिल्कुल, सारी तैयारी करके रखें, बीज उपचार भी करवा लें, मिट्टी परीक्षण भी करवा लें और जो जो व्यवस्था करनी है वो कर लें।
0: बिल्कुल सर, अपन किसान वाणी के माध्यम से पूछते रहते हैं डॉक्टर साहब से।
1: हाँ अच्छा, एक काम और करना है आपको, एक पौधा जरूर लगा दें जो सबके काम आ सके।
0: फलदार हो, छावनी हो, अच्छी ऐसी लगाते हैं। बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं अपन ने।
1: गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
0: गाना सुनवा देना, बरसात का सुनवा देना, बरसात के दिन आए।
1: आइए पवन भाई, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका। फोन करेंगी सुने में।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: ज्योति कुशवाहा दास है, हम पहली बार लगा रहे सर।
0: अच्छा अच्छा, ज्योति कुछ अपने बारे में बताएं, क्या कर रही हैं सानोधा में आप?
1: अभी तो कुछ नहीं, खाना बना रहे।
0: अच्छा अच्छा, खाने में क्या बन रही सब्जी?
1: पराठे सेक रहे।
0: अच्छी बात है, खुशबू तो यहाँ तक आ रही है ज्योति जी। अच्छा, जब घर के कामों से फ्री हो जाती हैं तो अपना समय किन कामों में लगाती हैं आप दूसरे?
1: अभी तो कुछ नहीं करते, करते ही रहते हैं।
0: ज्योति, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस बरसात में एक छोटा सा पौधा आप जरूर लगाकर जाएं सानोधा में, और उसकी देखभाल भी जरूर करें, और अगली बार जब हमें फोन करें तो बताएं आपके वो पौधा कितना बड़ा हुआ है।
1: वो तो हम लगाएंगे। ठीक है सर।
0: तो बताएं, गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
1: राम लखन का।
0: ज्योति जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म राम लखन का ये गीत।

0: चाहिए वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नमस्कार, फोन करेगी सुने में स्वागत है आपका।
4: नमस्ते,
3: अपना नाम बताएं।
4: नेहा विश्वकर्मा।
3: नेहा विश्वकर्मा, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
4: टड़ा केसली।
3: अच्छा मैं नेहा, एक बात बताएं कि टड़ा का नाम हमेशा केसली के पहले क्यों आता है, एक साथ क्यों लेते हैं टड़ा केसली का नाम?
4: हम तो शुरू से यहाँ सुना है, टड़ा पे 18-20 किलोमीटर दूर है, टड़ा केसली के नाम ऐसा जान हो जाए।
3: क्या करती है नेहा आप टड़ा केसली में?
4: केसली में रहते हैं, कुछ नहीं, घर को काम करते हैं।
3: इस साल कोई अच्छे से पौधे लगाए आप, फलदार छायादार, जो आम लोगों को फायदा दे।
4: ये तो हम लगा था सर, हर साल लगा, फिर भी हम कछुन कछुन लगाते ही रहते।
3: इस साल कौन सा पौधा लगाने के मन है आपका?
4: हमने एक आम को लगाओ, एक अनार को लगाओ।
3: अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो नेहा बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
4: सर फिल्म को नाम याद नहीं आ रहा, गाने की बोल बोल ना।
3: बोल दीजिए।
4: अगर जिंदगी हो तुम्हारी संग हो मौत पहले तो हो तुमसे पहले।
3: बहुत अच्छी बात है नेहा, ये फिल्म है बलमा और हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार। फोन करें गीत सुनने में स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं।
2: सविता विश्वकर्मा।
1: कहाँ से बोल रहे हैं सविता जी?
2: सागर।
1: अच्छा अच्छा, क्या करती हैं आप?
2: कुछ नहीं करती, घर में ही रहते हैं।
1: अच्छा, तो घर में रह के घर के काम तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
2: घर का ही काम करते हैं।
1: हाँ हाँ, अच्छा हमें ये और बताएं कि घर के कामों से जब फुर्सत मिलती है तो आप कैसे मनोरंजन करती हैं अपना?
2: कुछ नहीं, रेडियो सुनते रहते।
1: अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे आकाशवाणी के कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको? हाँ हाँ हाँ, और बिंदिया आता है वो भी अच्छा लगता होगा।
2: हाँ।
1: तो नेहा जी, हमारा एक अनुरोध है आपसे कि बरसात शुरू होने के पहले आप एक छोटा सा पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल भी करें।
2: पौधे तो हम बहुत सारे लगाए हुए हैं।
1: अच्छा अच्छा, अब कोई ऐसा छायादार और या फलदार ऐसा पौधा लगा?
2: ऐसा जमीन में जमीन नहीं है जगह लगाने के लिए, सब सही लगा के।
1: अच्छा लगेगा, पर्यावरण के लिए हमारा अपनी तरफ से योगदान हो जाएगा ये। तो हम उम्मीद करेंगे आप जरूर एक पौधा लगाएंगी। और अब बता दें गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
2: ये नदिया के पार की सुना दीजिए कोई
1: सा। नदिया के पार का। आइए सविता जी, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

तो श्रोताओं, अब आपको इंतजार है मुद्दे की बात का। मुद्दे की बात है, हर पल अपने को रखें सुरक्षित, सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपनी सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखें। तो ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया विनोद यादव ने और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके इस दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

फोन करें, गीत सुने। अभी श्रोता इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। सोमवार दिनांक 6 जुलाई को प्रातः 8:30 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बिंदिया के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो सखी की रिकॉर्डिंग अब से बस थोड़ी ही देर बाद आज प्रातः 11 बजे से की जाएगी। श्रोता कॉल लगाकर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा फोन नंबर है 240-845। सागर का एसटीडी कोड है 075-82। आपको याद दिला दें, कार्यक्रम का प्रसारण दिन सोमवार प्रातः 8:30 बजे से बिंदिया कार्यक्रम में हेलो सखी में किया जाएगा। तो अब से कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे से आप इस कार्यक्रम के लिए फोन लगा सकते हैं। फोन नंबर एक बार पुनः सुने 240-845। सागर का एसटीडी कोड है 075-82। सूचना समाप्त हुई।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: श्रोताओं, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर विशेष प्रस्तुति में आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता। विषय रहेगा बेटी बचेगी तो सृष्टि रचेगी। विशेषज्ञ रहेंगी डॉक्टर शिविका यादव, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और भेंट करता रहेंगे दीपक निषाद। समय रात्रि 8:20 पर।

आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में अब 11 बजने को हैं। आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
0: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
2: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
2: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
2: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
2: जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
2: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ, पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
0: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
2: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं, लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है। इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
2: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
3: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद सर।
3: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
6: यस मैम।
5: वाह, क्या बात है
7: मैम।
5: हाँ बेटी,
7: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
7: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
7: जी, पहाड़ी।
3: अरे वाह, अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
6: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
6: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
6: अच्छा।
5: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
6: मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
8: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
7: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
5: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
6: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
5: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
7: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
5: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
7: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
5: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
6: सॉइल इरोजन,
5: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
5: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
6: जी मैम।
7: यस मैम।
5: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
7: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
5: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
7: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
5: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
5: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
5: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह।
5: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना। इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
6: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
6: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। तो डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
6: धन्यवाद सर।
7: धन्यवाद मैम।
0: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
3: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
2: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग

0: बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना। ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ।
0: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे भाई ये भी कोई
0: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो क्या बात है, बोलो।
2: मैं बोलूं? अच्छा देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा और मुखिया जी क्या फाके करें? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
2: मुखिया जी
5: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
6: माफ कीजिएगा लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
5: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
6: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
5: तो भरने दो।
6: गांव के सभी लोग, औरतें बच्चे और मर्द, गांव छोड़कर जा रहे हैं।
5: अरे तो जाने दो।
6: लेकिन मुखिया जी इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकते।
5: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है और ये हमारी बांसुरी भी है।
6: लेकिन मुखिया जी,
5: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
6: जी मगर
5: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी
5: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
5: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
3: मुखिया जी
5: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है?
3: जी वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
5: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
3: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
5: नालायक डरपोक, अरे भाग रहे हो, इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
3: जैसी आपकी मर्जी।
5: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है, दूर दूर तक जहां नजर जा

आती है। पानी पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या, अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, अरे कहाँ जाऊँ मैं, ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है, अरे बचाओ मुझे, अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या, ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच ही गया। यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन न जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए।

0: बांगुई। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी सागर है।
4: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार। हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297।
3: ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर में श्रोता विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से सुनेंगे।

0: आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल, रफ़ीक हुसैन और रफ़ीक जयपुरी की लिखी ये गज़ल थी, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की तर्ज थी।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बेख्याल हो
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: शर्मिला सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे सईद राही का कलाम।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: पंकज उषा का सर्वाधिक ये गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर की रचना थी, आवाजें थी पंकज उदास और साधना सरगम की। मोहरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता

0: गुणवत्ता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती का ये कार्यक्रम है यादों

हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां, महफिल

0: राहुल देव बर्मन की तर्ज थी मंजूर सुल्तान परी की रचना, आपने सुनी मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म थी तीसरी मंजिल।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है। या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

घर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह

आप सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा संगीत था सचिन देव बर्मन का। फिल्म तीन देवियां का गीत आपने सुना।

0: गोपी नैयर के संगीत निर्देशन में कश्मीरी का लिखा ये गीत आपने सुना। आशा भोसले की आवाज में फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: आनंद बख्शी का लिखा सूरज और चंदा फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बेख्याल हो गई चूलिया।
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
3: जाने
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: कौन की गुड़िया फिल्म का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर और आनंद बख्शी के की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज थी।
1: कहूंगा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा तुम चोर हो चोर हो चोर हो।
2: क्या चुरा है मैंने तुम्हारा, बोलो क्या चुरा है?
1: मेरा दिल।
2: क्या

फूट गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके फूट गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हो तेरा रंग

इन जुल्फों में उलझ उलझ कर कई मुसाफिर भटके, हो गया तिलका पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके, हो तेरा रंग।

दिल से लगा लूं, जमीन पर तुझे मैं खुदा से मिला दूं। ऐसी करूंगा मैं दीवानी मस्तानी, ओ जानी जरा नजरे मिला ले समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा रंग

हूँ मैं खरे खरे, जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बसा दूँ मैं, पास अगर तू आ जाए सांस सांस टकरा जाए, दिल क्यों धड़कता है तुझको दिखा दूँ मैं, तीर पे तीर चला के मुस्का के शर्मा के मुझे पास बुला ले, वहीं पे मेले लग जाए तू देखे जहां पलक के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके, तेरा रंग है।

गया दिल का पुर्दा पुर्दा लगे पचासी झटका तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला हाय हाय

खुमार बरवंकवी की रचना आपने सुनी, नौशाद का संगीत था, साज और आवाज फिल्म में यह आवाज थी मोहम्मद रफी की। अब यादों की महफिल, ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रोताओं कार्यक्रम सुरीला सफर में, क्योंकि ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है आपके रेडियो सेट पर। श्रोताओं, मौसम कोई भी हो, कहीं रिमझिम की फुहार है, कहीं सूरज की तपिश, ये आप बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे होंगे आजकल। तो मौसम कोई भी हो, हर पल आपके संग है विविध भारती, आपके रेडियो सेट पर है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बातें हैं और हम हैं, आप हैं, साथ साथ कार्यक्रम है सुरीला सफर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज की इबारत को लेकर अपनी बातें लिखी हैं, और कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो नहीं लिखे हैं। तो बस आप अपनी जो है बातें लिखिए, और आप को लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai, और हमारे नए श्रोता भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। और अब आज की इबारत आपके लिए पढ़ देते हैं। क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है? क्या सचमुच पलकों के पीछे छुपकर कोई कुछ कह जाता है? क्या काजल सचमुच नैनों में बसता है? हो ना हो, लेकिन ये गलत फहमियों का जहाँ भी कुछ कम खूबसूरत तो नहीं। रेत का समंदर, जरा सोच कर देखो, अगर ये दिल ना होता, जज्बातों का रंग महल, जितने दरवाजे उतने पहलू, उतने अरमा उतनी ही ताबीरें। इश्क के असर को छुपाए कि मोहब्बत क्या सचमुच लाखों में एक हसीन होती है, या फिर शायद कस्तूरी की तरह जो चोरी चोरी चुपके चुपके शाही पान में खुशबू बिखेर जाती है। न रखो गलत फहमियाँ, न पूछो भला शबनम मुस्कुराती कब है, रात कब जागती है। देखो कि दिल टूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, खुशफहमियों का जहां कुछ रहने भी दें, जब सुलझ जाए गलत फहमियों की रेशमी डोर, बदगुमानी के बादल जब हट जाएं, जब मोहब्बत के दीप जले तुम आ जाना। अजब फहमी गलत फहमी के दरमियान हूँ इबादत, मैं तुझे लिखती हूँ कि तू मुझे लिखता है। श्रोताओं, आप समझ ही गए हैं कि आज दरमियाँ होती गलत फहमियों की बातें हम करने जा रहे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी जो बातें हैं वो इसको लेकर लिखी भी हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि क्या आपके जीवन में कभी गलत फहमियों का दौर आया, और आपने इस दौर को किस तरह, किस खूबसूरती से निभाया, ये आप हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि कई बार गलतफहमियां जो होती हैं वो होती हैं, और बड़े मनमुटाव भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार गलतफहमियों के बावजूद भी बड़ा प्यार उमड़ता है। हमारे सभी श्रोताओं का फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

अभिनेत्री नंदा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था द ट्रेन फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, आरडी बर्मन की तर्ज थी और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि हम खुशफहमी और गलत फहमी के माया जाल में जकड़े हुए हैं, हमें लगता है जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हम तारीफ के काबिल हैं। जब भ्रम टूटता है तो गलत फहमी का सत्य स्वीकारना पड़ता है। और इन्होंने गीत जो चुना है जब दीप चले आना, तो देखते हैं कि कौन कौन से गीत आज के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वैसे आज की फिल्में भी आप जरा ध्यान दीजिए श्रोताओं, ये फिल्में भी कुछ इसी तरह की हैं, द ट्रेन और आगे भी जो फिल्में आप जिनके गीत आप सुनेंगे उन्हें आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने वो फिल्में देखी हैं तो उनके बारे में आप बता भी सकते हैं कि उनमें क्या गलत फहमियां थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि गलत फहमियां भ्रम भ्रांति यानी जीवन का एक छुपा हुआ राज, जो प्यार मोहब्बत में बहुत खूबसूरत लगता है, जो रीत का समंदर यानी अधूरी चाहतें पूरी कर देता है, सुहाने सपने सजाता है, मन की उम्मीदें बढ़ाता है, कल्पना रम्य सुख देता है, प्यार का कोमल मोहक आनंद लुटाकर खुश कर देता है। गलत फहमी को खुशफहमी बना देने वाली आज की सकारात्मक इबारत है। और वो चांद मुस्कुराया और पलकों के पीछे क्या तूने कह डाला मुझसे भला काजल तेरा, रंग महल के दस्तरवाजे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत का मुख्य विषय भ्रम और यथार्थ तथा प्रेम की अनुभूति है, यहाँ तार्किक सत्य के बजाय खुशफहमियों के रोमांटिक संसार की को तरजीह

किया गया है, क्योंकि यही जीवन और प्रेम को जीने का हौसला देते हैं। भाषा बेहद काव्यात्मक, संवेदात्मक और उर्दू हिंदी के खूबसूरत मिश्रण जैसे जज्बात, ताबीरें, बदगुमानी, इबारत ऐसे सजी है। इसमें गद्य होते हुए भी एक लय और संगीत है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज कहीं जाना है लेकिन गीत तो सुनती रहूंगी। एक गीत जिसका मुझे बहुत इंतजार रहेगा आपकी इबारत में, ये शब्द रंग महल के दस दरवाजे। तो देखते हैं, और पलकों के पीछे भी इन्होंने चुना है, देखते हैं कौन कौन से गीत आज होते हैं शामिल। और एक और श्रोता ने चांद तो जब भी मुस्कुराता है, पलकों के पीछे से कचरारे कचरारे, ये दिल ना होता बेचारा, रंग महल। और एक और श्रोता जिन्होंने कुछ शब्द इसमें से चुने हैं, ये शब्द हैं कि चांद पलकों के पीछे, रंग महल, हसीना चोरी चोरी चुपके चुपके, शबनम रेशम की डोर, दीप हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि नैनों में दर्पण है, चांद आहें भरेगा पलकों के पीछे से, और लाखों हैं निगाह में। इन्होंने भी बहुत सारे गीतों को पसंद किया है। तो अगला गीत आपको सुनवा देते हैं, और आपको बताना है कि ये जो फिल्म है श्रोताओं, इसमें मुख्य अभिनेत्री कौन है। और कई बार आपको भी बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती होंगी। कभी दो अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनके कपड़ों को लेकर, कभी कोई गिफ्ट अदल बदल जाता है, कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, या फिर बहुत बड़ी गलतफहमियां देखने को मिलती हैं जब हम रेलवे के सफर पर होते हैं। तो ऐसी कुछ यादें अगर आपकी हैं तो आप हमसे जरूर साझा करें।

देवानंद साहब की एक बड़ी अजीब अदा इस गीत में नजर आती है श्रोताओं। उनके हाथ में एक चीज है, क्या आप ने ध्यान दिया है? तो आप हमें जरूर लिखकर बताएं। और एक अभिनेत्री जो नजर आ रही हैं वो तो तनुजा हैं, दूसरी अभिनेत्री के बारे में हमने आपसे पूछा है, तो आप हमें जल्दी से इसका जवाब भेज दें। और वैसे जो सवाल हमने पूछे हैं उसके बहुत सारे जवाब भी हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं अपने सभी श्रोताओं का हमारे गद्यांश को पढ़ने के लिए और उस पर कमेंट्स करने के लिए, अपने गीत और अपनी बातें हमसे साझा करने के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जीवन दर्शन की बहुत ही गहरी बात को एक रूपक के रूप में दर्शाया गया है। जिंदगी कोई गणित या सीधा समीकरण नहीं, बल्कि भावनाओं, उम्मीदों और एहसासों से बुना हुआ एक ऐसा कैनवास है जहाँ खूबसूरत गलत फहमियां ही इसके रंग को जीवंत बनाती है। जीवन की कला इन्हीं कोमल भावनाओं और गलत फहमियों को संजोने में है। कभी कभी किसी बात को सकारात्मक रूप से मान लेना, भले ही वो पूरी तरह से सच न हो, जीवन को जीने योग्य और खूबसूरत बना देता है। गलत फहमियां अक्सर वे उम्मीदें और सपने होते हैं। तो एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती का सुरीला सफर, ये एक सफर कल कौन सी इबारत आएगी? कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर भी गलत फहमी और खुश फहमी के दो पहियों के बीच पिस्ता फंसता चला जाता है, चलता रहता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ विचारों, शब्दों या इरादे का गलत अर्थ गठन होता रहता है। कभी धूप तो कभी छाओ। और इन्होंने एक और हमारी एक और श्रोता लिखती है कि चांद जाने कहाँ खो गया, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, हुस्न से चांद भी शर्माया है। और कुछ गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आदमी की जिंदगी खुशफहमी और गलत फहमी से भरी हुई है। मुझे खुशफहमी रहती है कि मेरी कमेंट अच्छी है और आप पढ़ेंगे जरूर, लेकिन पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, आप कमेंट नहीं पढ़ती, तब महसूस होता है कि मैं कितनी बड़ी गलत फहमी में था। तो ये भी गलत फहमी हो सकती है आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मैंने, ऐसा मुझे याद पड़ता है, मैंने कई बार आपकी कमेंट पढ़ी है, तो हो सकता है कि यहाँ भी कुछ गलत फहमी हो। बहरहाल, जो गलत फहमियां हैं उन्हें मिटा देना ही ज्यादा अच्छा होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत आज की इबारत की पहली लाइन, क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है? आपका जवाब इन गानों में मिल गया। जी हाँ, ये चांद सा रोशन चेहरा, शमी कपूर का रोमांस और चांद, क्या बात है। इन्होंने अपनी तरह से गीतों को चुना है। एक और श्रोता लिखती है कि अजीब कश्मकश है ये यकीन और गुमान के बीच, मैं खुद को तुझ में ढूंढती हूँ या तो मुझ में ठहर जाता है, अजब बंदिश अजब आजादी के दरमियान हूँ, किताब मैं तुझे पढ़ती हूँ कि तू मुझे पढ़ता है, क्या बात है। और इसी तरह का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं। शशि कपूर इस फिल्म में है और क्या रोल है उनका इस फिल्म में, क्या आप बता सकते हैं?

शशि कपूर एक इंजीनियर के किरदार में होते हैं श्रोताओं। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीता। इस फिल्म में बड़ी अजीब सी गलतफहमी थी जो चेहरे को लेकर थी, और अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। वल्लभ भाई पटेल का लिखा ये गीत था, लता मंगेशकर भूपेंद्र की आवाजें थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो चांद खिला, वो तारे हंसे, आंखों में काजल, नैनों में बदरा छाए, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की डोर को हकीकत से ज्यादा गलत फहमियां कमजोर करती हैं। सच्चाई और बातचीत के अभाव में पनपी ये अजब फहमियां करीबियों में दूरियां पैदा करती हैं। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहना कुछ था वो कुछ समझे और मुझे कुछ और कहना था। जी हाँ, लेकिन अगर ये गलत फहमियां हो जाए तो आप एक काम कर सकते हैं कि मोबाइल पर बात कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से ही कुछ मना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपके बीच कोई अनबन हो जाए तो आप एक दूसरे को किस तरह से मनाते हैं, ये गलत फहमियां किस तरह से दूर करते हैं, क्योंकि ये भी समझदारी की ही बात होती है श्रोताओं। गलत फहमियों में कुछ रखा नहीं है, जो खुशफहमियां हैं वो और गलत फहमियां, इन दोनों में बड़ा बारीक सा रेशम के सा अंतर होता है, इसे पहचानने की जरूरत है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने, एक जब दीप जले आना जब शाम ढले जाना, दो दिल के टुकड़े टुकड़े करके, और इन्होंने भी अपनी जो एक लिस्ट है वो बनाई है। एक और श्रोता लिखती हैं, गलत फहमियां रिश्तों में दूरियां बढ़ाती हैं, जबकि खुशफहमियां मुस्कुराने का एक बहाना बन जाती हैं। जब मन की धुंध छट जाती है, बदगुमानी के बादल हट जाते हैं और विश्वास के दीप जल उठते हैं, तब मोहब्बत अपने असली रंग में खिलती है। लेकिन हर गलत फहमी बुरी नहीं होती, कुछ खुशफहमियां रिश्तों में महक बनकर रहती हैं, विरेत के समंदर में दूर दिखाई देती हैं, उस नमी की तरह जो भले ही हाथ में ना आए लेकिन सफर को उम्मीद और दिल को मुस्कान दे जाती है। जब रेत की बात है श्रोताओं, तो रेत में अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नदी है या समंदर है, इसे क्या कहते हैं, अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। और एक और बात है कि कस्तूरी मृग जो है उसे हमेशा ये गलत फहमी होती है कि कस्तूरी कहीं और है, इस बारे में आप क्या जानते हैं तो हमें जरूर बताएं। इस फिल्म में एक्ट्रेस के दो रोल को आपको बताना है नाम।

जुड़वा लड़कियों को लेकर जो ये फिल्म बनी थी, इसमें गजब का सस्पेंस था। श्रोताओं, मेरा साया फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोलते मदन मोहन का संगीत था। और हमने आपसे पूछा था कि दो नाम कौन से थे अभिनेत्री साधना के, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा है वो भी जरूर हमें बताएं। और गीता और निशा, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म का कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? श्रोताओं, अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि रेल के सफर के दौरान बड़ी सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप हमें जरूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की हमारी जो इबारत है, मैं हमको तो पता भी नहीं चला कि हम चांद से रेत पर आ गए और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार भी हो गए, इस साजिश में कब फंसे पता भी नहीं चला। एक और श्रोता लिखते हैं कि ज्वेल थीफ का जो गीत हमने आपको सुनाया, उसमें मछली पकड़ने का कांटा और साथ में उसमें फंसी मछली है। जी हाँ, एक सवाल और पूछा था कि कौन है उसमें मुख्य अभिनेत्री, तो वैजयंती माला थी। एक और श्रोता ने लिखा है, अगर दिल से एहसास, उम्मीदें और ये प्यारे भ्रम निकाल दिए जाएं तो जीवन एक अंतहीन रेत के समुंदर जैसा बंजर हो जाएगा, जहां फैलाव तो बहुत होगा पर सुकून की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। वास्तव में हमारी कल्पनाएं ही इस रसीन जिंदगी में रस घोलती हैं, जैसे कस्तूरी अपनी खामोश खुशबू से पूरे माहौल को महका देती है, ठीक वैसे ही जज्बात इंसानी रिश्तों को जो है जिंदा रखते हैं। कभी कभी जिंदगी को मरुस्थल बनने से बचाने के लिए तर्कों को परे रखना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान दिल की गहराइयों से जुड़ता है तभी वो रिश्तों के असली रूप को जी पाता है और जीवन में प्रेम के दीप जलते हैं।

क्या ही सुंदर बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं, इबारत के लिखने के दायित्व को सौंपने के क्रम में अग्रसर हो रही प्रस्तुत आज की इबारत मन के भेदों में निहित अंतर्द्वंद को भली भांति स्पष्ट कर रही है और इस दृष्टिकोण से ही आज की ये इबारत स्वयं में ही इबादत करने योग्य है। एक और श्रोता लिखती है कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिश अधूरी, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां भी जरूरी हैं।

इस गीत में श्रोताओ और इस फिल्म में सांपों के बारे में बहुत कुछ है या सांप के बारे में बहुत कुछ है। वैसे रस्सी और सांप, इनमें तो बहुत गलतफहमियां होती हैं। क्या आपको हुई हैं?

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खुशफहमियां और गलत फहमियों में के बीच क्या क्या होता है, दो दिलों में कैसी कैसी शरारतें पैदा होती हैं, तरह तरह के गीतों का मजा लेते हैं इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमी जिंदगी में अक्सर गलत फहमियां हो जाती हैं, कभी हम व्यर्थ की खुशफहमी पाले रहते हैं, परिणाम जब इसके विपरीत आते हैं तो पता चलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कस्तूरी सुख है, हिरण रूपी चैतन्य आत्मा में कस्तूरी सुख है और नाभि यानी वर्तमान पर्याय में है। जी हाँ, ये तो है ही है, काव्यात्मक तरीके से आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने आपसे ये पूछा था कि कस्तूरी मृग क्यों वन वन घूमता है। जी हाँ, वो तो कस्तूरी की सुगंध के पीछे घूमता है श्रोताओं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो कस्तूरी है वो कहीं और है, लेकिन ये तो कोरा भ्रम होता है, वो तो उसकी नाभि में होती है। इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल के जवाब को दिया भी है, देने की कोशिश भी की है। एक और श्रोता लिखती है कि कई दिनों से घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ इन्होंने बड़ी ही बड़े प्यार से कह सकते हैं ये कमेंट लिख दिया है कि घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ मूछों को लेकर संसार आसार है, छोटी छोटी बातों पे बवाल होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ये गलत फहमियां पैदा करती हैं, और कभी कभी ये जब खुश फहमियां बन जाती हैं तो कभी थोड़ा सा हम खुश भी हो लेते हैं। एक और श्रोता लिखती है कि गलत फहमी पे मैं बताना चाहूंगा, मेरी धर्मपत्नी जुड़वा है, अपनी जुड़वा बहन से सिर्फ 10 मिनट छोटी हैं, दोनों एक ही स्कूल में हैं और एक ही क्लास में पढ़ती थीं। धर्मपत्नी ने मुझे सगाई के बाद बताया कि उन्हें टीचर्स ने गलतफहमी से बचने के लिए कह रखा था कि स्कूल जब भी आए तो साली साहिबा एक चोटी बनाए और धर्मपत्नी दो चोटी रखें। मैं बताना चाहूंगा कि मुझे दोनों को पहचानने में गलतफहमी नहीं होती, तो ये तो अच्छी बात है। और इस तरह से जुड़वा बच्चों में भी होता है श्रोताओं, तो जो एक गलतफहमियां जीवन में होती हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन हमें किस तरह से इससे निपटना है और कुछ एक तरीका तो गोलमाल फिल्म में जो मूल पालेकर हैं उन्होंने भी बताया है। तो आप हमें बताएं कि ये दो नाम कौन से थे, और संजीव कुमार की एक फिल्म थी जो गलत फहमियों पर आधारित थी, जिसमें देवेंद्र वर्मा भी थे, मौसमी चटर्जी भी थी और बहुत सारे कलाकार थे, तो आप बताएं उस फिल्म के बारे में।

कटी पतंग फिल्म का ये गीत था जो गलत फहमियों पर आधारित ये फिल्म थी श्रोताओं, और अभी तक जो गीत हमने लिए हैं वो ऐसी ही फिल्मों से हमने लिए हैं। तो ये जो फिल्मों के गीत आप सुन रहे हैं इनमें कौन सी फिल्म आपको ज्यादा पसंद है ये आप चाहें तो बता सकते हैं। और गोलमाल फिल्म के कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में हमने आपसे पूछा था, अमोल पालेकर के बारे में, और एक फिल्म संजीव कुमार की थी जिसमें देवेंद्र वर्मा, और ये शेक्सपियर के उपन्यास पर थी। तो आप इसके बारे में भी अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गलतफहमी और भ्रम दोनों ही मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भ्रामक स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के मूल कारणों और प्रभावों में गहरा अंतर है। जहां गलतफहमी दो लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान में कमी का परिणाम है, वहीं भ्रम व्यक्ति की स्वयं की समझने की क्षमता में त्रुटि या मानसिक विकार है। एक और श्रोता ने लिखा है, फिल्म ज्वेल चीफ देवानंद, अशोक कुमार, वैजयंती माला, पूरी फिल्म में लगता है कि देवानंद ही है जो असल जो चोर है, लेकिन वैजयंती माला का पहचान की इन्होंने मतलब फिल्म की जो बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि अक्सर हम जागते हुए भी सपनों को देखते हैं और कल्पना लोक में पहुंचकर बहुत कुछ देखते हैं, पर असलियत में वहां कुछ भी नहीं होता। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि यहां भी हमें गलतफहमी होती है, जी हाँ कई बार। और एक और श्रोता ने लिखा है कि साधना जो दो रोल में है मेरा साया फिल्म में, एक सुनील दत्त की पत्नी और दूसरी डाकू के गिरोह की सदस्य थी। एक सवाल आपसे पूछते हैं श्रोताओं कि दो जो गायिकाएं हैं उनके नाम आप पहचानिए और सोचिए कि जब आप उनके गीत सुनते हैं तो क्या आपको कोई गलतफहमी होती है कि ये गीत किसने गाया है, इन्होंने गाया या इन्होंने गाया।

दो सहेलियां हैं वो बातें कर रही हैं, बता रही हैं कि उनके महबूब की क्या पहचान है, क्योंकि गलतफहमी ना हो जाए इस वजह से। एक और श्रोता ने लिखा है कि झुमका गिरा रे ये गीत बहुत अच्छा लगता है मेरा साया फिल्म का। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा साया फिल्म के तो सभी गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन नैनो में बदरा छाए गीत सुनो तो अनुभूति का स्तर जो होता है वो अलग होता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी सवाल के लिए जो हमने आपसे पूछा था कि मृग तृष्णा के बारे में उन्होंने लिखा है कि जो रेत में अक्सर या रेत के समंदर की तरह नजर आती है, ऐसा लगता है कि दूर पानी है लेकिन पानी वहां होता नहीं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, दो गायिकाएं हैं, क्या उनके गीत में आपको कुछ गलत फहमियां आवाज में होती हैं? तो अगर आप पहचान रहे हैं इन्हें तो आप जरूर लिखें। और सफर के दरमियान भी हमने आपसे पूछा था कि बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप लिख सकते हैं।

आपकी कसम फिल्म का ये गीत था, मुमताज पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज़ थी और श्रोताओं दो जो कलाकार हैं, गायक कलाकार, उनके बारे में हमने आपसे पूछा था। ये लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर जी की बात हम कर रहे थे क्योंकि इनके गाए हुए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसमें बड़ी सारी गलतफहमियां हो जाती हैं कि किस गीत को किसने गाया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संजीव कुमार मौसमी चटर्जी अभिनीत फिल्म इतनी सी बात का इन्होंने जिक्र किया है। जी हाँ, हम लेकिन बात कर रहे हैं फिल्म अंगूर की। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक सामाजिक ज्वलंत विषय पर आधारित फिल्में हैं ये, ऐसी गलतफहमी अगर आ जाए तो बैठकर सुलझा लें, नहीं तो कितनी जिंदगियां जिंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे महबूब फिल्म के बारे में कि अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म ये थी, साधना पर फिल्माया गया गीत था और साथ ही अमिता भी नजर आती हैं श्रोताओं, और इस गीत के बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज और लहजा माने रखता है, यदि कहे गए शब्द और बोलने का तरीका मेल नहीं खाते तो गलतफहमी हो जाती है। कई बार लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात रखने का इंतजार करते हैं या आधा सुनकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आपको फिल्म और कलाकार बताने हैं।

चित्चोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं और हमने जो आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, इस फिल्म में सुनील और विनोद के बीच एक बड़ी गलतफहमी होती है। गोलमाल फिल्म में राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हैं और अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा क्रमशः अशोक और बहादुर की भूमिका में।

कोमल पालेकर और जरीना बहा पर फिल्माए गए ये गीत आप सुन रहे थे चितचोर फिल्म से। आवाज़ें थी यशुदास और हेमलता की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपकी सभी कमेंट्स के लिए आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुरीला सफ़र यहीं संपन्न होता है श्रोताओं।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत प्यासा सावन फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की हैं। गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और अब हम आपको सुनवाते हैं चश्मे बद्दूर फिल्म का गीत। आवाजें यशुदास और हेमंती शुक्ला की हैं, बोल इंदु जैन के और धुन राजकमल की।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के 11 वर्ष पूरा होने पर इसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिख रहा है। डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से सरकारी सहायता पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंच रही है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार में भी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान वे 494 करोड़ रुपए लागत के 629 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कोदो कुटकी उत्पादक करीब 4 किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से करीब 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की जाएगी। किसानों को ये राशि 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दी जा रही है। महोत्सव स्थल पर कृषि यंत्रों, मिलेट्स उत्पादों और स्व सहायता समूहों के उत्पादों की विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। सरकार ने इसके लिए 95,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सत्र 2026-27 में अब तक 5,48,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 2,93,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। पिछले वर्ष की तुलना के प्रवेश में 42.03% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 3 महत्वपूर्ण दिवसों पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर कहा कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के निर्माण में इनकी अहम भूमिका है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों के समर्पण को असंख्य परिवारों के लिए आशा और नवजीवन का आधार बताया। वहीं राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस पर उन्होंने कहा कि डाक कर्मचारियों की कर्म निष्ठा ने डाक व्यवस्था को जनता के विश्वास का सशक्त माध्यम बनाया है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज जम्मू में तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण और RFID कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शुक्रवार को पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बालाघाट और डिंडोरी में आज अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देवास, हरदा, बैतूल, पांडुर्णा और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अनुमान है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब बात खेल की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होगा। मुकाबले पर बारिश का साया है। करीब 80% बारिश की संभावना जताई गई है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद श्रेयस अय्यर की टीम जीत के साथ नई शुरुआत करेगी। युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर भी चर्चा तेज है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी कलेक्टर ने जिले के समस्त रेत खदानों में मॉनसून अवधि के दौरान खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आगरमालवा के अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर एक दूध डेयरी संचालक पर 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। और लोक निर्माण विभाग मंत्री और नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान केवल 100 दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी से लगातार चलने वाला जन अभियान है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBG राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
4: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
2: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
1: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
2: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज

0: सक्षम हो।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the Sustainable Development Goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
3: India's engagement.
4: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
3: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया

0: XH या यार न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: दुल्हन एक रात की सुन का गीत था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, राजा मेहदी अली खान का लिखा।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
4: लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी, ओ बावरी ओ सावरी, अरे ओ चंचल पल छिन, रुक जा रुक जा रुक जा।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज में एक राज फिल्म से। और श्रोताओ, इस गीत के पहले हमने आपको सुनवाया था दुल्हन एक रात की फिल्म का नगमा। उस गीत में संगीत था मदन मोहन जी का। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

प्रेम धवन का लिखा गीत आपने सुना, रवि का संगीत था, आशा भोसले की आवाज, फिल्म एक फूल दो माली से ये नगमा आप सुन रहे थे। ये गीत है जब जब फूल खिले फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है श्रोताओ, और यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: की सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: और मेरा भी यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी आप सभी सखियों को, सभी सखाओं को, सभी श्रोताओं को और साथ में मंदाकिनी जी को
0: जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार आरती, कैसी हो?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मौसम बदला है ना, सच में इसने बिल्कुल पूरा माहौल बदल दिया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही मौसम बदलता है तो मन का मौसम भी बदल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी मौसम नहीं बदला है, वहाँ उनका मन का मौसम तो वैसा ही है।
1: बिल्कुल, प्रार्थना करेंगे जल्दी से वहाँ का भी
0: मौसम बदल जाए। लेकिन हाँ, मुंबई का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है, सुबह से लेकर शाम तक।

0: तक रात तक बरसात हो रही है और मन भी कुछ भीगा भीगा सा है ना
1: जी हाँ बिल्कुल
0: हाँ। और बहुत अच्छा लगता है, अपना एक आनंद अलग ही है आरती
1: जी बिल्कुल।
0: कभी याद आते हैं वो दिन जब तुम बचपन में भीगा करती थी या कॉलेज के दिनों में जब जाती थी और रास्ते में भीग कर आती थी, मुझे तो याद है
1: बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता ना कि हम जान बूझ के भीगते हैं, फिर ना अगर ऐसा जरूरत हो तो भी निकलेंगे। वैसे भी थोड़ा सा भीगना बनता भी है जब बारिश का मौसम आता है, तो थोड़े समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए
0: उसका एक अलग ही मजा है।
1: बिल्कुल
0: बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे, जैसे आजकल कह देते अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हूँ बारिश में भीग के। हाँ कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि सर्दी लग गई है, लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी जब भीग कर साइकिल चलाते हुए आते थे वो दिन बहुत याद आते हैं।
1: बहुत सच में बारिश जो होती है ना एकदम सब कुछ बदल देती है, सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना वो भी एकदम खिल उठता है जब बारिश की बूंदे पड़ती
0: है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदे ऐसी गिरती हैं तो मन भी खिल उठता है। संगीत की कुछ बूंदे जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है, लेकिन हाँ उससे पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखियों और सखाओं के लिए क्या क्या लेकर आए हैं।
1: तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो संसार जो बहुत जिसके बारे में महिलाएं सोचती हैं कि हम कौन सी नई साड़ी खरीद लें, हर महीने खरीद लें या हम थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें और खरीदें, तो उन साड़ियों के संसार के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टसर या घिचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड की पहचान है।
0: अरे वाह, झारखंड की साड़ी पहनेंगे आज हम।
1: जी बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं, आज हम लेकर आए शब्द हमारा विचार आपके, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रतियोगिता पर।
0: आहा, क्या बात है, जो आपके और मेरे बीच भी चलती है।
1: बिल्कुल लेकिन हमारे बीच स्वस्थ जो होती है
0: प्रतिस्पर्धा चलती है। बिल्कुल, हमारे सखी और सखाओं से हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का आपको अर्थ नहीं लिखना है कि जैसे हम एक निबंध लिख देते हैं ना, निबंध नहीं लिखना है कि प्रतियोगिता क्या है। आपको ये बताना है कि आपके जीवन में इस शब्द पर क्या विचार है। आपने कभी जीवन में कोई प्रतियोगिता जीती, आपने जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें आपने अटेंड किया, उसको अटेंड किया, या आप किसी से प्रतियोगिता रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं,
1: प्रतिस्पर्धा में आप कहाँ तक चले गए, कितनी दूर तक चले गए, यानी कि आपने मन से आप कितनी दूर तक चले गए कि मतलब एक होती ना कि स्वस्थ प्रतियोगिता है, कोई बात नहीं चलो उसने आगे किया अब हम भी अच्छा करेंगे, एक होती है कि उसने कैसे किया
0: मैं करके
1: पीछे खींचे। हाँ। तो आप बताइए कि मतलब कौन सी मतलब आप प्रतियोगिता के बारे में,
0: आपके कहने का मतलब ये है आरती कि कई बार क्या है कुछ लोग जो है प्रतियोगिता के चक्कर में किसी की टांग खिंचाई कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। और ये जो ईर्ष्या और जलन हमारे अंदर होती है ना किसी को बढ़ता हुआ देख करके, उसकी शर्ट मेरी सफेद, मेरी शर्ट से सफेद क्यों वाली जो जलन है वो हमें थोड़ा परेशान भी कर देती है
1: और पीछे भी खींचती है,
0: पीछे भी खींचती है। आप एक ना एक दिन फिर पीछे हो जाते हो, उस दौड़ में खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने देखी है ना। तो इसलिए आप प्रतियोगिता तो करें लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता रखें। तो बताइए आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे
1: आप अपना नजरिया हमें बताइए। हाँ। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक चिकित्सक के ऊपर।
0: अच्छा,
1: देखिए चिकित्सक के पास हम सभी जाते हैं लेकिन हमारा एक फेवरेट डॉक्टर होता है जो घर का डॉक्टर कहते हैं, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं कि कुछ भी हो, सर्दी जुकाम या कुछ बड़ी बात कुछ भी हो, सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: उनकी राय मांगते हैं।
0: हाँ।
1: फिर वो जब हम कहते हैं कि नहीं आप इसको आप बड़े डॉक्टर को दिखाइए या इसके लिए आप और टेस्ट वगैरह कराइए, तो फिर अब जब हम और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं जिस पे सबसे पहले हम विश्वास करते हैं तो वो पारिवारिक डॉक्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे।
0: बताइए आपके पारिवारिक डॉक्टर कौन है, कैसे हैं और आपका जीवन में, आपके जीवन में उनका क्या स्थान है, कब क्या ऐसा घटा कि पारिवारिक चिकित्सक आए और आपकी उन्होंने मुसीबत को हल किया।
1: जी बिल्कुल, आप बताइए।
0: तो इन सभी पर हम विचार करेंगे, गीत सुन ले और
1: देखेंगे। आप बस मेरे साथ ना ऐसा मत कर रखा,
0: व्यंजन लेके आई
1: है। बिल्कुल, मैं व्यंजन इतना अच्छा लेकर आई हूँ और हमारे जो श्रोता है वो भी सब सखियां सखा सब लिख रहे हैं पकौड़ों के बारे में। सोचिए कितना, कहां बारिश का मौसम आते ही पकौड़ों की, तो मतलब ऐसा लगता है कि बारिश के साथ में जो एक मिट्टी की सुगंध होती है ना उसके साथ पकौड़ों की
0: गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए। बिल्कुल सही कहा
1: जी।
0: तो बताइएगा आप अपने घर में इस वक्त या बारिश के मौसम में किस तरह से पकौड़े बनाते हैं।

0: कई तरह के पकौड़े,
1: कौन से पकौड़े बनाते हैं,
0: कौन सी बेसन के, और
1: ताकि हम उसको एकदम उसको सोच के कल्पना करके उसको हम खा ले
0: नहीं भी हमारे लिए भेजेंगे हमारे सिक्योर से का, और हम उसे खा भी लेंगे ठीक है, क्योंकि मुंबई का जो मौसम है वो पकौड़ों का ही मौसम हो रहा है।
1: बिल्कुल, तो एक गीत सुन लेते हैं पहले।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो मन तो भीग गया है रिमझिम गिरे सावन।
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं, पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए, है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है,
1: डॉक्टर,
0: हमारा डॉक्टर जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है,
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं,
0: हाँ।
1: और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते या बहुत दूर नहीं जा सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं,
0: जाते ही उन्हें फोन पर बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके,
1: अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है तो आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, है ना
1: जी। बिल्कुल,
0: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है,
1: बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज बुखार है, इस तरीके की चीजें, तो

0: जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीज़ें होती हैं तो हम फ़ोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हाल चाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पे देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें वो बता देते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, जो आप इस जो इस चीज़ का विशेषज्ञ है, तो आप वो उसको दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं।
1: हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम बताइएगा
0: जी,
1: और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए। ऐसी स्थिति भी होती है कई बार
0: जी।
1: तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था। घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए, और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती थी, तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते थे।
0: बिल्कुल,
1: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी कर देते, अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है।
0: ये एक जो चीज होती है ना, जो आप हम मानसिक जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना। कि आधी जो बीमारी होती है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि नहीं आप इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ये दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि हाँ चलो हमें डॉक्टर को दिखा दिया, अब हम ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और जो पारिवारिक चिकित्सक है वो केवल वही की बीमारी का इलाज नहीं करते, बल्कि हमें मार्गदर्शक के रूप में भी वो होते हैं हमारे। और बच्चों के टीकाकरण से लेकर अगर बुजुर्गों की देखभाल तक देखा जाए, परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य पर वो नजर रखते हैं। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी को केवल एक केस के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में समझते।
0: बिल्कुल, क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं, तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर बनते हैं। तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ, वो जानते हैं इतिहास हमारा कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है। तो वो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज को अच्छे से समझता है। तो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं, तो वो भी बताता है कि आप ये चीजें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और जैसे आरती, आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही हैं, तो ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा, वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है कि भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से खाना खाना है, इस तरह की चीजें नहीं खानी है।
0: और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो, या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसे खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं। तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इसको इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते।
1: बिल्कुल सही कहा। और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना, हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके। और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर मरीज के बीच, सबसे बड़ी बात क्या होती है आरती, की हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना है। कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ, तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा।
0: जी हाँ,
1: आपने अगर खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे बीपी की समस्या है तो कहते हैं नमक कम खाइए। अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं तो नमक ऊपर से और लेती हूँ, तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो कैसे आपको ठीक करेंगे। और फिर जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे।
0: बिल्कुल, और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई परवाही की है इस बात के बारे में भी। अगर हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं, तो फिर जाते हैं उनके पास, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं आपने ये लापरवाही जरूर की होगी, या आपको तला हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा, तभी आपको ये परेशानी हुई है। तो क्योंकि वो हमारी बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का जो स्वाद जीभ को लग गया है ना, उस पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे अब आप तुम आज पकौड़े खिलाएंगे ना हमारे शो का, तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी।
0: बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं, कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर हर समय नहीं।
1: बिल्कुल, आपको सीधा साधा खाना मौसम के अनुरूप खाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ भोजन खाइए।
0: ये जो मौसम रहता है ना, इसमें थोड़ा बैक्टीरिया

0: बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ताज़ा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं, सादा जो भोजन होते हैं वही सादा भोजन
1: खाएं। फल फ्रूट खाएं, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाने की कोशिश करें, अंकुरित अनाज खाएं, तो थोड़ा सा हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह सकता है।
0: थोड़ा सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं,
1: बहुत तरीके हैं खाने के,
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: तो हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आरती, वो भी खुश रहते हैं, वो नहीं चाहते कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहाँ के परिवार के सदस्य बीमार रहें या उनके पास इलाज के लिए आए। उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहें, स्वस्थ रहें।
0: तो हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने हम सबको बिना ज़रूरी दवाइयों से बचाया है, उनका निदान सटीक रहता है। अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं। तो ये कहते हैं, ये
1: बिल्कुल। और भी किसी ने कुछ लिखा?
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसकी बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है। अब नाखून से लेके सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है, और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था, और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे, और जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है अब कि वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जरूरी है।
1: जी, एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है, और ये भगवान जैसे होते हैं पारिवारिक चिकित्सक हमारे लिए भगवान समान है। और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
0: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
1: और देखिए, हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो है डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कम्प्लीट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
0: बहुत अच्छी बात है। तो और एक मशहूरता है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं, डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं, उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भलीभांति परिचित होते हैं। इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक

0: लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं
1: जी। और एक और होता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक, बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज़्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज़्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज़्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
0: बिल्कुल सही कहा। और चलिए अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है
1: जी, तो एक गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अभी आते हैं अपने विषय पे, तो

0: हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल
0: जी।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में जी, महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिर दर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज हम आज लेकर आए हैं टसर, यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है उसे।
0: बिल्कुल।
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है, जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है, वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती ना, उससे हाँ, थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो रेशम होती है।
0: तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती है। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहने पहनती है, जब हमें अच्छा लगता है, हमारी सखियों को हम देखते है ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती है, अरे कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम, जैसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये
1: जी। और जो जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्रयुक्त होता है, जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको।
0: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है,

0: और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है उसे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
1: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
0: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है। रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है इसको जलाकर देखा जाता है।
1: बिल्कुल, और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है।
0: अच्छा
1: जी, और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है जिससे वो सूख कर काली राख में बदल जाती है। इसकी प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
0: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको, और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं।
1: जो साड़ी इतना ज्यादा पहनता है वो समझता
0: है कि कैसे इसको रखना है और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल, और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है।
0: बिल्कुल,
1: ये हाथ से और मेहनत से
0: बनाई जाती है और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है। ये
1: बिल्कुल बहुत ही अच्छी होती है साड़ियाँ। एक गीत सुन लेते हैं ना?
0: गीत तो सुन लेते हैं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है?
1: मुझे मालूम था ये आप कहने वाली हैं।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने
1: जी। अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं।
0: करी
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं जो श्रोता लिख रहे हैं, जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारी सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और देखा जाए तो जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कॉम्पिटिशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
0: हाँ,
1: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
0: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और ये हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते रहते हैं।
0: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
1: बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
0: बिल्कुल। वही श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
1: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्मविकास है हम वो कर सकें, ना कि हम उसमें लग के अपने अपने को नुकसान पहुंचाएं,
0: अपने जीवन को हम बर्बाद कर लें, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे, और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवा कर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहाँ आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं, या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं। कभी
1: कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं। क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं। फिर हमें हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
0: ये तो जो हमारे अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं। और आरती, सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं, कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है। आप हार कर भी जीत जाते हैं।
1: किसी आप कभी किसी के चेहरे पे खुशी दे सके, तो सबसे बड़ी बात ये होती है,
0: प्रतियोगिता
1: चेहरे की हंसी देख के आपको लगेगा
0: मजा। हमने अब बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है। वो कोई भी प्रतियोगिता,
1: अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं वहां से हारते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसको मजबूत रखिए।
0: और मन के हारे हारे मन के जीते जीत, अगर आप हार कर भी आपका मन नहीं हारा है, फिर भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है, वो हमें
1: वो मनोबल जो होता है ना, वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
0: बिल्कुल, इसलिए प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में, जो जरूरी भी है, तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें, किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे लेकर जाएं।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंदाक नहीं जी, अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले प्यार था अभी भी प्यार है
1: और आगे भी रहेगा।
0: हाँ जी हाँ, आगे भी रहेगा। वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं पकौड़े,
1: बनाकर लेकर आए हमारे लिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने, तो बात करते हैं। पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं,
1: बिल्कुल।
0: जो हमारे जो जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खोलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खोलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या
1: बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
0: ऐसे तो मतलब सोच नहीं सकते,
1: बिल्कुल। इन्होंने देखिए कितना इसको काव्यात्मक तरीके से, क्लासिक तरीके से पेश किया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से है ना अपने विचार प्रकट करें तो कार्यक्रम का मजा जो है मजा दोगुना हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां 3-4 तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, 1-2 कटे हुए आलू, पालक, बेसन लीजिए और चावल का आटा ले लीजिए 2 बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए। मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें, एक बड़े उस पर एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज, आलू और पालक ले लें, इसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाएं, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाएं बिना पानी डाले और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर और इसमें छोटे छोटे बनाकर पकौड़े डाल दें, कुरकुरा होने तक इसको पकाएं, मध्यम आंच पर दोनों तरफ से इसको हिला के पकाते रहें, अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताइए, अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिया की चटनी के साथ खाइए आंटी जी।
0: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि पकौड़े छान के निकल ही रहे,
1: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना।
0: एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती

0: पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
0: और हमारे जो एक है हमारी जो श्रोता है वो लिखती है कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
1: क्या बात है, देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है। और ये मौसम का साथी है, भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो, तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना बहुत स्वादिष्ट लगती है। और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, या फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज, आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं। ध्यान दें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें, तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें। पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए और छमाछम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
0: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा उन्होंने दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी। तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें, अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए। पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें, धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कढ़ाही में सरसों का तेल गर्म करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें। और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है, इसे सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं। और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप।
1: तो अब पकौड़े बहुत खाली हैं, गीतों का आनंद
0: भी तो ले लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे है ना।
1: बिल्कुल।
0: और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा
1: जी।
0: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आतिश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माताजी अध्यापिका थीं और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहां से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहाँ मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
2: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
2: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियाँ, कुछ कविताएँ, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीज़ें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
2: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
2: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूँ ठीक से, उनको बोलता भी हूँ। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
2: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
1: अच्छा।
2: धर्मयुग, कादम्बिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूँ, मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
1: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
2: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
1: जी जी जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं।
2: जी।
1: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
2: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी। मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
1: जी,
2: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृति मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं नकारात्मकता को दूर करके।
1: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती हैं। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
2: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
1: उसका आकाश
2: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था। उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
1: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
2: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया लेकिन कहानियां मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था
1: जी।
2: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर तीन भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा। और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
1: जी।
2: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
1: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राड़ी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
2: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक। उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी और दो तीन राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई
1: जी।
2: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
1: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद मिला
2: जी।
1: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
2: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: शंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव, ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन 1998 से शुरू कर दिया था, और मैं व्यंग्य में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग्य के पितामह हैं वो, और उनके रचनावली के 6 खंड हैं, वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग्य लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग्य बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज़्यादातर वो व्यंग्य मेरे पहले व्यंग्य संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग्य है, जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है, जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है।
0: जी।
1: ये सीधी सी बात होती है, अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो जब वह नए कुत्ते पर भौंकता है तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं न कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है, वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है, यह व्यंग जो मेरा है उसी को दिखाता है। जिस व्यंग को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझें, क्योंकि व्यंग जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना,
0: जी,
1: जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का,
0: जी,
1: जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे।
0: जी।
1: तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
0: जी, जी।
1: तीसरा जो है वो अंधे पीछे है, ये हमारी व्यवस्था में, मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है, पूरा मुहावरा है कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं। अंधे पीसे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाया जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं, जो कि कुत्ता जी ने समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई 3-4 पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने, पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कॉलम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गईं, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800, 1000, 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य शनिदेव मेरा चौथा व्यंग संग्रह है, जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का संदर्भ। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है, उसमें और भी जो व्यंग हैं वो राजनीतिक, सामाजिक घटनाक्रमों पर हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा, व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
0: हो रहा है,
1: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाए को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है, और उसकी झलक आपको साहित्य के सन्निधि में मिलेगी।
0: जी, तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसाई युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
1: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग्य देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग्य का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं हम कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है। जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया।
0: जी।
1: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है।
0: जी।
1: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी हैं, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे। कितना भी लंबा आप लिखेंगे, पत्रिकाएं छापेंगे, उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया। धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे। अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई।
0: पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था, पाठक का।
1: हाँ, बहुत बड़ा वर्ग था, बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का। और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय में एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कम हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं। जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
0: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है और व्यंग विधा में हाथ आजमा रहा है। अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं, हम उसे भी व्यंग समझ लेते हैं और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं। तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
1: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ और मुझे एक गीत बहुत पसंद है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम
0: इसमें तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। राडी साहब, व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग्य हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है। जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू के राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है। प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूँ जीवन के लिए। हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी,
1: आपने मीम्स की बात की है। मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीज़ें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगत, इनका साज ठीक होना चाहिए।
0: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य, ये कैसा लगता है आपको?
1: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
0: जी,
1: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास

0: खासकर के कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहाँ तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं, और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं
1: जी।
0: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है
1: जी।
0: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
1: नहीं हो पाया जी।
0: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं। ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं। कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका ले किसका ना ले, वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं हैं। थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे, मेरा अनुमान ऐसा है,
1: क्योंकि समय कम है लोगों के पास। और आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते हैं, क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है। तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है। तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग की, आप व्यंग लेखक हैं, क्या व्यंग सभी पर लिखा जा सकता है, या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं, या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
0: जी, ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहाँ तक कि पंचायतों की भी सत्ता है, और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है
1: जी।
0: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है, तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है, उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए
1: जी, जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है
0: जी। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है। व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है।
1: मतलब वैचारिकता होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी चाहिए।
0: उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं, किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं, और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश
1: जी। हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग लेखन पर, और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है
0: जी।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच
0: जी। जरूर, कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं।

0: शंकर जी, तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: ये आपकी बात सही लगती है मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग्य को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग्य पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है।
0: जी।
1: व्यंग्य का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग्य बिरादरी से बाहर है, लेकिन व्यंग मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग, और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिलमिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो।
0: जी, जी।
1: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग्य केवल एक हास्य की विधा है
1: जी,
0: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है।

0: है
1: जी।
0: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा
1: जी, जी।
0: तो क्या पाठकों का व्यंग्य को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूँ जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं
0: जी।
1: सीधे किसी दल किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूँगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुँचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुँचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के ज़माने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीज़ तुरंत मिलती जा रही हैं, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा
0: जी। जी, एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए
1: जी।
0: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
1: जी, मंदाकिनी जी ने आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा यह है कि कुएं का मेढक होना।
0: जी,
1: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है और वहाँ पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके देख करके कर सकते हैं
0: जी।
1: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
0: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
1: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे, जैसे हमारे यहाँ सूरदास
0: जी,
1: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्रिय थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी
0: जी, जी।
1: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे
0: जी, जी।
1: जिन्होंने अथातो घुमक्कर जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि यायावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता
0: नहीं।
1: है और यायावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आई और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पल्लवन
0: यायावरी से होता है। अरे दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफर

0: अवेलेबल जॉब होती है वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
1: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से।
0: तो जब बात रचनात्मकता की आती है तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका, ये इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी
1: जी।
2: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुंचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते फिर इस जमाने में यात्रा संस्मरण की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है।

0: है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहाँ वो जिस जगह पे गया है वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के खान पान, वहाँ के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़ें तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी
1: जी,
0: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण में मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों को एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर की यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है मैंने, मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं मैंने, प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूँ
1: जी,
0: और वहाँ पर जा करके मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहाँ के जन समुदाय को, वहाँ की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं और इसके अलावा जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है, प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है
1: जी
0: जी।
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा लिखा लिखा है।
0: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगे दर्शन दृष्टि और पांव, दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है, और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन विश्व में आता है, और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है। क्या आप गए यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहां आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आ गए, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहाँ आपने दर्शन किया वहाँ का जीवन दर्शन क्या है इस चीज़ को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है। और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आप जब यात्रा करते हुए अपनी मूल चीज़ों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीज़ों को मिला करके मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी जी।
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ, जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहां पर लोग लेके जाते हैं, एक मिनट दो मिनट के उनको दर्शन मिलता है, लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी पे मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं, प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है। मुझे इस बात की, आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि यहां फोटो भी खींचनी चाहिए
1: जी।
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूं मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण में डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत का और सुनना चाहेंगे हम
0: जी।

था जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सिवनी जिले में आयोजित धान महोत्सव कार्यक्रम में करीब 144 करोड़ रुपए की लागत के 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर डॉक्टर यादव ने करीब 350 करोड़ रुपए की लागत के 586 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के विकास को गति दी है। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि इस पहल ने गरीब और वंचित वर्ग को सशक्त बनाया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की पहल से शुरू हुई देश की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में 81% डिजिटल भुगतान यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। श्री शाह ने नई दिल्ली में समिति के साथ हुई बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सत्र 2026-27 में अब तक 5,48,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। और मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी की खिलाड़ी मोहम्मद कोनेन दाद का चयन भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम में हुआ है। टीम 5 से 18 जुलाई तक बेल्जियम दौरे पर जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम युववाणी में। ऑल इंडिया रेडियो का वो प्रोग्राम जो मेरे और आप जैसे नौजवानों के लिए बना है। मैं आपकी दोस्त तेजस्वी आज आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ, क्योंकि हम बात करेंगे दो ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में जो मिलकर इंडिया का फ्यूचर बदल रहे हैं। पहला सबसे बड़ा एस्पेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की दुनिया में AI सिर्फ एक बजवर्ड नहीं रह गया है, ये कुछ सालों पहले तक की डेटा साइंस की ब्रांच को तोड़कर 10 कदम आगे निकलकर एक रिवॉल्यूशन में तब्दील हो चुका है। हम अपनी आंखों के सामने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 चालू होता देख रहे हैं। हर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरह AI भी कई जॉब्स खत्म कर रहा है, मार्केट रिक्वायरमेंट बदल रहा है और नई स्किल्स की डिमांड कर रहा है। तो अब युवा पीढ़ी के लिए ये सवाल उठता है कि क्या AI हमारा दोस्त है या दुश्मन। दूसरा बड़ा एस्पेक्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी। बात चाहे चंद्रयान 3 के मून के साउथ पोल पर लैंडिंग की हो या चंद्रयान 2 के सबस्ट्रेट सरफेस में पानी की खोज करने की हो, इंडिया ने स्पेस टेक में अपनी छाप छोड़ना चालू कर दी है और अपने अगले वीनस मिशन शुक्रयान के साथ इसे और आगे ले जाने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज के इस अपने कार्यक्रम में हम इन डुअल एस्पेक्ट्स के संगम को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

पहले बात करते हैं एआई की, जो अभी हमारी जनरेशन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जिस डिग्री या जॉब की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगले 10 साल में रहेगी भी कि नहीं, दुनिया भर में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या एआई मेरी नौकरी ले लेगा। हाल ही में नितिन सेठ, जो एक ई कॉमर्स कंपनी के फॉर्मर सीओओ हैं, उनका यूएसए में एक इवेंट का एक्सपीरियंस पढ़ रही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें सैन फ्रांसिस्को में पहली बार सेल्फ ड्राइविंग कार्स की सवारी करने का मौका मिला, और जिस प्रिसीजन और ईज के साथ उन गाड़ियों ने ट्रैफिक और कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन नेविगेट किए, वो ये देखकर अचंभित रह गए। वो कहते हैं कि बिना ड्राइवर की गाड़ी चलते रहना देखकर उन्हें शुरुआत में अटपटा जरूर लगा, पर बहुत जल्द उस चीज की आदत लग गई और वो उस गाड़ी पर 100% ट्रस्ट के साथ सवारी का मजा लेने लगे। पर जब वो इस इवेंट से अपनी रेंटल कैब में लौट रहे थे तो उन्होंने अपना अनुभव अपने कैब ड्राइवर के साथ शेयर किया, पर कैब ड्राइवर ने नितिन सेठ का एंथुजियाज्म साझा नहीं किया। और वो करे भी क्यों, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स उसकी नौकरी पर सीधा वार है। उस ड्राइवर को ये डर था कि 2 साल बाद तक सेल्फ ड्राइविंग कार्स उसकी

0: नौकरी खत्म कर देगी और उसे अपने देश वापस लौट जाना पड़ेगा। AI अब केवल मानवीय क्षमताओं को मिमिक नहीं कर रहा है, ये उस गति से विकसित हो रहा है जहां उन क्षेत्रों में हमसे बेहतर प्रदर्शन करने लगा है जिन्हें कभी ह्यूमन यूनिकनेस का शिखर माना जाता था। क्रिएटिविटी से लेके इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग तक AI उन सीमाओं को पार कर रहा है जिन्हें हमें कभी अटूट माना करते थे। मानवीय दृष्टिकोण से AI हमारे ह्यूमन एज को चैलेंज कर रहा है। जिन स्किल्स को हम अपनी यूनिक स्ट्रेंथ मानते थे अब वो हमें अपर हैंड दिलाने में नाकाम साबित हो रही हैं। AI रिवॉल्यूशन पिछले हुए 3 रिवॉल्यूशन से इसलिए भी अलग है क्योंकि अब तक के हर एक रिवॉल्यूशन ने ब्लू कॉलर जॉब्स को डिस्प्लेस किया, पर ये पहला ऐसा रिवॉल्यूशन है जो नॉलेज वर्कर्स या व्हाइट कॉलर जॉब्स को रिप्लेस करेगा। ह्यूमन एज इन द AI एज बुक के अनुसार अनुमानित रूप से 2040 तक 80% व्हाइट कॉलर जॉब्स खत्म हो जाएंगी। उसकी जगह प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, AI एथिक्स एंड कंप्लायंस स्पेशलिस्ट, ह्यूमन AI इंटरैक्शन डिजाइनर जैसे रोल सामने आएंगे। ये चेंज अचानक से ना होके ग्रेजुअल होगा और इस चेंज की शुरुआत हम अपनी आंखों देखी देख ही रहे हैं। इस AI एज में युवा अपने करियर को कैसे नेविगेट करें, आइए जानते हैं इस गीत के बाद।
1: Say now, you said it to me, so do na do na.

0: It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. ऐसा कहना था चार्ल्स डार्विन का, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का इजाद किया। बदलाव को अपनाना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से उन चीजों से दूर नहीं जाना चाहते जो आरामदायक और फेमिलियर महसूस होती हैं। लेकिन असली सफलता माइंडसेट शिफ्ट के साथ आती है। यह तब होता है जब हम बदलाव को स्वीकार करना और उसे पूरी तरह अपनाना शुरू करते हैं। जब भी आपके करियर में रुकाव आता दिखे तो अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा और निरंतर बढ़ाते रहना होगा, जिससे हम इस एआई की एज में एआई से पीछे ना रह जाएं। ये समय है जॉब क्रिएशन का, एंटरप्रेन्योर्स का, जो एआई के माध्यम से नए ब्रेकथ्रूज कर सके। ये समय है अपनी ह्यूमन रूट्स पर जाने का, अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और इंस्टीट्यूशन को जगाने का। जैसे कि मानव जाति ने आग की खोज करके खाना बनाना और सेटलमेंट्स बसाना शुरू किया, बस वैसे ही हमें इन एआई टूल्स का उपयोग करके अपना भविष्य बनाना शुरू करना होगा। आज हमारे सामने जो प्रश्न है वो महाभारत में अर्जुन की दुविधा के समान है। इस बदलते भविष्य में मेरी क्या भूमिका है? क्या मैं ऐसी दुनिया में रेलेवेंट रह सकता हूँ जहाँ मशीनें मुझसे तेजी से सीखती हैं? क्या होगा यदि मेरी स्किल्स या मेरा सेंस ऑफ सेल्फ ही अप्रासंगिक हो जाए? संकट के उस क्षण में कृष्ण ने अर्जुन के साथ भगवद गीता का अद्भुत ज्ञान साझा किया, जो सिर्फ एक फिलोसॉफिकल उपदेश नहीं बल्कि किसी कार्य को क्लैरिटी, करेज और इनर अलाइनमेंट के साथ कैसे करें इसकी रूपरेखा भी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यू हैव द राइट टू एक्शन बट नॉट टू इट्स फ्रूट। इसी के साथ इस विषय को मैं देती हूँ विराम। बातें और भी होंगी, पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं युवा कवि कृष्णा शर्मा। आइए हम उनसे सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं।
1: इश्क न पैदा होता है और न ही मरता है, बस समय के साथ अपना रूप बदलता है। कभी मोहब्बत, कभी इबादत, तो कभी शहादत कहलाता है। उसी के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करता हूँ, जिसका शीर्षक ही है इश्क। वीणा का पावन राग इश्क, पानी में जलती आग इश्क, वन का राजन वह बाघ इश्क, फूलों से सजता बाग इश्क। तुम प्रेम उसे क्यों कहते हो जिस मिथ्या में तुम रहते हो, स्थिर होने की नाट्य प्रस्तुति कर गंगा से बहते हो। क्या कभी चांद को देखा है जो सूर्य स्पर्श की आशा है, जिसे कहते तुम भाव मात्र वह स्वयं प्रभु की भाषा है। स्वर से सजता वह गीत कोई, मानो जन्मों की रीत कोई, जिससे ना हो भयभीत कोई, हर हार में हो एक जीत कोई। मीरा के मन में कृष्ण रहे, फिर और कहां कोई प्रश्न रहे, जब प्रथम पृष्ठ पर प्रेम नाम, क्यों फिर कोई भी कष्ट रहे। राधा ने राह बनाई तो बस कृष्ण कृष्ण, बस कृष्ण कृष्ण ही नाम लिया, पर कृष्ण का मार्ग स्वयं राधा, सृष्टि ने भी यह जान लिया। ऋतु की पहली वर्षा से माटी जो महक सी जाती है, उस महक का जो मैं करूं इत्र, वही इश्क सुगंध कहलाती है। क्या कभी चकोर को समझा है क्यों स्वयं को वह तड़पाती है, मयंक मिलन के मोह में मृत्यु तक उड़ती जाती है। महिवाल मोह में सोहनी की मटकी भी पकना पाई रे, और इसी इश्क में रहकर वे चिनाब में सदा समाई रे। इश्क इबादत में अंतर करने वाला अज्ञानी है, इश्क इबादत में अंतर करने वाला अज्ञानी है, और ईश्वर भी वंचित रह गए जिससे, वही तो प्रेम कहानी है, वही तो प्रेम कहानी है। मित्रों, इश्क की बात तो हो गई, पर क्या हो यदि किसी को इश्क और कर्म के बीच चुनाव करना पड़े? ऐसी ही एक परिस्थिति आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसका शीर्षक है प्रेम और कर्तव्य। मथुरा के गोपाला वृंदावन के लाडले, कान्हा था नाम जिनका, केशव युद्ध पे चले। कृष्ण की विदाई से यह प्रकृति निराश है, भूमि दुख से सूखती और सजलाकाश है। माखन की मटकियां भी टूट तरस जाएंगी, इंद्र की इंद्राणियां भी रोते बरस जाएंगी। गोपियों के अश्रुओं से गंगा बहती जाएगी, जमुना के जल में अब मिठास न रह पाएगी। कृष्ण के जिस रूप की सृष्टि यह दीवानी है, वही रूप जिसके चरणों में बरसाने की महारानी है। ठहरो कृष्ण, तुम गए तो प्रेम चला जाएगा, मनुष्य के इस मन में मात्र मोह घर बनाएगा। श्याम चक्षु में न अपितु अश्रुओं का स्थान है, विष्णु भी विवश हुए विधि का यह विधान है। कंस की हो क्रूरता या कौरवों का कर्म हो, विनाश पाप का जहां वहीं सनातन धर्म हो। पाप का अब अंत हो, धर्म की हो स्थापना, प्रभु स्वयं आएंगे जब अधर्म छाएगा घना। करने अंत कंस का काना चले, छोड़ सब परिवार, प्रेम पुष्प सुख के दूर जा रहे रे अब। राधे को छोड़कर नाते सबसे तोड़कर, माधव जाते हैं देखो सबसे मुख मोड़कर। बंसी वह प्रेम की मुरलीधर अब छोड़ दो, भावनाएं वश में करो नाते सबसे तोड़ दो। प्रेम वह अटूट था पर धर्म का सवाल था, प्रेम वह अटूट था पर धर्म का सवाल था। लक्ष्य के समक्ष पार्थ कुछ भी ना विशाल था, कुछ भी ना विशाल था। मित्रों, भगवान कृष्ण को तो प्रेम और कर्तव्य के बीच में चुनना था, परंतु अर्जुन को उससे भी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुरुक्षेत्र में उसके समक्ष उसी के गुरु, परिवारजन एवं मित्रगण थे। इसी दुविधा को एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसका शीर्षक है अंतिम युद्ध। कुरुक्षेत्र में खड़े रे कान्हा, चिंतित उनका पार्थ है, कैसे वह समझाएं कि जो हो रहा वह यथार्थ है। हे माधव, यह क्या पीड़ा है, कैसे मैं सह पाऊंगा, स्वप्न में भी न सोचा था कि ऐसे मार्ग पर आऊंगा। खड़े हुए मुस्काए माधव, भी एक बात बताते हैं, निंद्रा में देखे हुए स्वप्न पूरे कहां हो पाते हैं। तुमने अपना कर्म किया, बस यह पूजा पाठ है, बीत गए हैं दशम दिवस, शेष मात्र अब आठ हैं। इस सप्ताह तुम खो दोगे जीवन का सारा चैन प्रिय, पर अंतिम दिन को पूजेंगे स्वयं तेरे यह नैन प्रिय। तो उठो पार्थ और प्रहार करो, शत्रु पर पुनः वार करो, हर शत्रु का संहार करो। तुम ही तो हो सर्वश्रेष्ठ, संसार को यह सिद्ध सार करो। अत्यंत पीड़ा पाओगे जब कुरुक्षेत्र में जाओगे, पर लक्ष्य प्रेम में पीड़ा क्या, स्वयं को ही भूल जाओगे। ना भूल अश्रु पांचाली के जो तेरे चक्षु से बहते हैं, ना दुग्धवत वस्त्र कुंती के तन से जो लिपटे रहते हैं। अंतिम अवसर बाकी है, पथ पर अग्रसर पार्थ हो। आदेश जगन्नाथ का पालन से कर्म फल विख्यात हो। अंत समय हो सुखद युद्ध का, आज ऐसा संघर्ष हो। फल ना सही पर आशा है कि कर्म का विशुद्ध निष्कर्ष हो। राम और रावण, यूं तो दो नाम हैं, एक पूरब तो एक पश्चिम, एक धर्म और एक अधर्म, परंतु कलयुग में ये दोनों ही हमारे अंतर मन में रहते हैं। इसी विचार से अगली कविता का शीर्षक है भक्त रावण। सत्य सदा ही अमर रहे, संतों से यह संसार चले, सावन में सुख ना बहे कभी और सूरज भी ना कभी ढले। समक्ष मैं शीश नवाता हूँ और मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ, जब सुनूं कथाएं वीरों की मैं हिंद कवि बन जाता हूँ। फिर प्रश्न स्वयं से करता हूँ, चिंतन में जीता मरता हूँ, ज्ञानी तो कहता हूँ खुद को, फिर पाप घड़ा क्यों भरता हूँ। ज्ञानी ना कोई जाति है, अपितु एक प्रजाति है, जो जग को मार्ग दिखाती है, हर कला जहाँ पूजी जाती है। जब जिस दुविधा में फंस जाऊं, कृष्ण को ही बस आस लगाऊं, मक्खन का मैं भोग चढ़ाऊं, गीता पढ़ना पढ़ना चाहूं, नारी का ना मान करूं, अपने पद पर अभिमान करूं, फिर राम नहीं मैं रावण हूं, फिर किस प्रकार से श्रावण हूं। जब शूर्पणखा अपमानित हुई, मैंने भी शस्त्र उठाए थे, पर सीता का जब हरण किया, विचार न धर्म के आए थे। शिव तांडव का लेखक होकर शिव से सीख न पाता हूं कि हर नारी में देवी है, अंततः नवरात पश्चात जलाया जाता हूं। शास्त्र पढ़े और शस्त्र उठाए, ब्राह्मण भी मैं और क्षत्रिय मैं, पर पाप पुण्य में भेद कराना तो कैसा हूं अत्रेय मैं, सत्य धर्म का समझा मैंने, सर्वोत्तम से जब मिलन हुआ, मोह मिटे संसार के जब, पुरुषोत्तम हाथों मरण हुआ, पुरुषोत्तम राम हाथों मरण हुआ। धन्यवाद।
0: अभी हमने सुनी कृष्णा शर्मा से उनकी कुछ कविताएं, और कविताओं के बाद सुनते हैं ये गीत।

संभावनाएं अनंत हैं, स्काई इज द लिमिट, पर क्या आप ऐसा सोचने में सक्षम हैं? दोस्तों, दुनिया बदलाव की कगार पर है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस बदलाव को स्वीकार कर आसमान की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखते हैं या नहीं। इस बारे में आप जरूर सोचें और अपने दोस्तों से भी बात करें। इसी मोड़ पर लेते हैं हम विराम, कल मिलते हैं कुछ नई जानकारियों और गीतों के साथ। तब तक के लिए लेती हूँ मैं, तेजस्वी, आपसे विदा। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। शाम के 5:30 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं संगीत सरिता। शुरुआत करते हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव के गाए इस गीत के साथ।

0: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से संगीत सरिता, और आइए अब सुनते हैं ये गजल। आवाजें हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की।

अशोक खोसला की गाई इस गजल के साथ ही संगीत सरेधा का ये सफर बस यहीं तक। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से करें थोड़ा सा।

0: केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। आज है जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का जन्मदिन और विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं हरि जी की एक बहुत ही अनमोल रिकॉर्डिंग। समाचार से पहले तक आपने इस रिकॉर्डिंग में हरी जी की कुछ अनमोल बातें सुनी थी। अब आगे की बातें।
3: वो कहते हैं कि एक साधे सब सद जाए, तो आपने एक नष्ट होकर एक वाद्य को कहा कि इसको मैं साध लूं
4: जी,
3: तो सब सद जाएंगे। सब कहते हैं कि ऐसी साधना आपकी रहती थी, जब भी मौका मिल जाए बस बांसुरी लेके बैठ गए और उसी में लीन हो गए।
4: यही है, यही मेरी पूजा है। मैंने कहा यही मेरी आराधना है दूसरे की। जब एक भगवान आपके साथ में, दूसरे भगवान की क्या आवश्यकता। भगवान तो एक ही होने चाहिए ना। हमारे भारत में भगवानों की टोली है, बहुत बड़ा परिवार है भगवानों का। अगर उस परिवार में एक सदस्य भी मेरे साथ में रहते हैं तो इससे बड़ी क्या बात है। बस उनकी ही सेवा, उनकी ही पूजा करता हूँ। और बांसुरी एक वाद्य ऐसा कि अगर इसको हम इस जीवन में कर लें तो ही बहुत बड़ी बात है। अभी तक नहीं किया। मैं अभी भी फील करता हूँ कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं अभी भी सीखना चाहता हूँ। अभी भी मेरी गुरु माँ हैं, वो बांसुरी नहीं बजाती, हम उनसे संगीत सीखते हैं। उनका नाम है अन्नपूर्णा देवी, उस्ताद बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां की सुपुत्री हैं। अभी भी मैं जब जाता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ मुझे थोड़ा कुछ सिखा दे। डांटती हैं बहुत, अभी भी डांटती हैं, तुम क्या इधर जाता है उधर जाता है, कभी विदेश जाता है घूमता रहता है। मुझे अच्छा लगता है, कोई इतना प्यार तो करता है। तो मुझे आज अच्छा लग रहा है और मैं बड़े अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ के लोग आज मुझसे इतनी अच्छी बात करते हैं, मेरे बारे में इतनी प्रशंसा करते हैं।
3: आप बहुत बड़ी कला निधि है हमारी, और ये हमारा सौभाग्य है आपके चरणों में बैठे हैं। मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि जिस समय आपके पिता की मृत्यु हुई थी, आपका एक शो था
4: हरवल्लभ
3: जालंधर में, और आपने उस समय मन को बिना विचलन में डाले, बिना विचलित हुए, पूरे कड़े मन से इस परीक्षा को पास किया। क्या ये सच है, उसके बारे में बताएं।
4: बिल्कुल सच है। अगर मैं किसी के साथ कमिटेड हूँ, किसी से मैंने कह दिया कि मैं आपके पास आऊँगा ये करने के लिए, तो कोशिशें हमारी यही होती कि हम पीछे ना हटें। पीछे हम एक ही वजह से हट सकते हैं कि अगर मुझे कोई ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, तो ही हम हट सकते हैं। लेकिन अगर किसी को हो गया तो हम उनको अपना काम, उनका काम नष्ट करके हम इनको जिंदा तो नहीं कर सकते। उनको तो जो होना था हो गया, मैं दूसरों को क्यों मारें या दूसरों को क्यों परेशान करें। तो इसलिए मैं यहाँ राजकमल स्टूडियो है वी शांताराम जी का, वहाँ रिकॉर्डिंग में था, और रिकॉर्डिंग थी बी आर चोपड़ा जी की। कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था और मैं फिल्म से बड़ा जुड़ा हुआ था, अभी भी जुड़ा हूँ, लेकिन बहुत सारी पिक्चरें और ये सब बड़े बड़े लोगों के साथ काम करता था। तो मैं उस रिकॉर्डिंग में था, रात को 9 बजे मुझे मेरी पत्नी का फ़ोन आया कि ऐसा हो गया। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मैंने बी आर चोपड़ा जी को कहा मेरा ऐसा, अरे ऐसा हो गया तो आप जाओ जाओ। मैं तुरंत रात को वहाँ से ट्रेन लेकर सीधा गया हरवल्लभ, वहाँ बजा के फिर वहाँ से आके और बॉडी रखी थी और आकर उनके बॉडी का काम किया, और काम करने के बाद फिर मुझे शांति मिली कि चलो ये भी होगा जो वहाँ का कमिटमेंट वहाँ से। और वहाँ किसी को ये पता नहीं कि ऐसा हुआ है।
3: जब आप बजा रहे हैं तो मन में
4: कुछ नहीं, वो तो हमारी, मैंने कहा ना मेरी पूजा हो रही है वो, और वो पूजा थी ऐसी कि चलो भगवान हमारे पिताजी को ले गया है तो इनकी आत्मा को शांति दे जहाँ भी हूँ। और अगर मैं पहुँच गया टाइम पे तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। और पहुँच गया, मैं बॉडी रखा हुआ था उन लोगों ने 2 दिन, और मैंने यही कहा था क्योंकि मैं घर का बड़ा तो मैं ही उनको अग्नि का मेरे हाथ से ही होना चाहिए, तो सब हो गया।
3: तो पंडित जी, जैसे आपने बताया कि आप घर के बड़े थे, और भाई बहनों के बारे में, परिवार के दूसरे लोगों के बारे में भी हम थोड़ा सा जानते
4: जी। मेरा एक बड़ा भाई था, वो कुश्ती लड़ता था, लेकिन कोई 19 या 20 साल का था तो उसकी डेथ हो गई। फिर मेरी बड़ी बहन थी, यहाँ बम्बई में रहती थी, उसका देहांत हो गया, तबीयत थोड़ी खराब रहती थी, उम्र भी हो गई थी। अब यहाँ पर मेरे एक भाई हैं और मैं, वो यहीं रहते, मेरे करीब ही रहते हैं, और उनका लड़का मेरा भतीजा वो सीखता है मेरे से, उसका नाम है राकेश चौरासिया, अच्छा बजाता है, अच्छा लड़का है। और बस, और मेरा परिवार है, मेरे परिवार में मेरी पत्नी

0: हैं, मेरा लड़का है, उनके बच्चे हैं और उनको संगीत से शौक है। मेरी पत्नी गाती थी बहुत अच्छा, रेगुलर आर्टिस्ट थी, गाना गाया करती थी, मैं उनके पीछे पीछे बजाया करता था। लेकिन अभी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी सी उम्र के लिए वो थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन अभी भी हमको गुरुकुल में बहुत हेल्प करती हैं। मेरा परिवार रहता है खार में, तो मैं यहाँ रहता हूँ बच्चों के साथ में, वो वहाँ से यहाँ आती हैं बच्चों को गाना सिखाने के लिए। कहना चाहिए उनका भी आशीर्वाद है कि हमारे बच्चे पैसा नहीं देना पड़ता है और गाना भी सीख के जाते हैं।
1: पंडित जी, त्यौहार की बात आई थी क्योंकि आपने कहा कि आपके जीवन में जन्माष्टमी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक त्यौहार का, उसकी क्या तैयारी होती है उस दिन और कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं।
0: उस दिन तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरी शादी हो रही है, आज इतना बड़ा पर्व हो रहा है और इतना आनंद आने वाला है और ऐसा कुछ होने वाला है, मेरे जीवन का एक नया अध्याय खुलने वाला है। आज मैं जो भी खर्चा करूं, आज सब कुछ कर डालूं, इनके ऊपर सब कुछ निछावर कर दूं, आज इनकी वजह से तो मुझे बांसुरी की पहचान हुई, यही तो हमारे सब कुछ है, इन्हीं के आशीर्वाद से तो मुझे लोग हरि की तरीके से जानते हैं, हरि से हरि प्रसाद बना दिया, हरि प्रसाद से हरि प्रसाद चौरासिया, पंडित हरि प्रसाद चौरासिया, फिर पद्मभूषण पंडित हरि प्रसाद पद्म भी, कितना इनकी वजह से सब हो रहा है। मैं कौन हूँ, मैं तो वही हरि हूँ, तो मुझे आज सब कुछ करना है, तो मैं उस हिसाब से तैयारी करता हूँ और बस उनके पास ही रहता हूँ।

0: अच्छा पंडित जी, एक चीज मेरे मन में जानने की इच्छा है कि बांसुरी का प्रेम तो था आप में, लेकिन वो पहलवानी छूट गई थी, अब वो करनी पड़ती थी आप।
1: नहीं, वो तो बुरा लगता था। मैंने कहा ना, मुझे, मैं किसी को पटकूं या मुझे कोई पटक दे, इसका क्या मतलब होता है, मेरे को समझ में नहीं आता। और लोगों को दिखा कर लोगों को क्या मजा आता है, ये भी मुझे समझ में आज तक नहीं आया कि ये लोग करते क्यों।

0: ऐसा काम और दूसरे भी तो काम है, ये उठा के पटकना, उसके ऊपर चढ़ बैठना, उसको दबा देना, उसमें जीत गया, चित हो गया, पट हो, और दूसरे काम करो कुछ जो कि देखने में अच्छा लगे। ये तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात की मैं अपने पिता की तारीफ करता हूँ कि अच्छा हुआ वो पहलवान थे, और पहलवान थे तो मुझे खिलाया खूब जबरदस्त। वो जबरदस्त जो खिलाया, मलाई रबड़ी और घी और दूध में घी डाल के और केसर डाल के, वो आज तो काम दे रहा है। अगर वो पहलवान नहीं होते तो क्या मुझे ये खाना खिला सकते? क्या मैं अभी इस अवस्था में बांसुरी बजा सकता था? तो एक बात प्लस भी है कि उन्होंने जो कुछ किया वो हमको उसका लाभ ही मिल रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। बांसुरी वाद्य बहुत मुश्किल है, जितना आपको साधारण दिखाई पड़ता है एक सूखा बांस का टुकड़ा, उतना ही मुश्किल है जब आप उसको पकड़ते हैं और जब बजाते हैं।
1: सच तो ये कि आप अपने प्राणों से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं।
0: जब आप उसको ट्यून नहीं कर सकते, उसमें तार नहीं, उसमें चमड़ा नहीं, तो फिर आप अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा, तभी आप उसको ट्यूनफुल बजा सकते हैं। और अगर अपने आप को ट्यून करने गए तो आपको मालूम है कि सुबह से लेकर शाम तक उसी के बारे में वही सोच और वही बात, तब जाके आप ट्यून होते हो। जब आप ट्यून होते हैं तब बांसुरी जाके स्वर में बजती है।

0: प्रणित जी, जब मुंबई आए तो मुंबई एक तरह का टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का। ये आपके लिए एक सजा के तौर पर शुरू में बेशक रहा, लेकिन इसका एक सुफल भी मिला, क्योंकि भविष्य के गर्भ में आपके लिए क्या छिपा हुआ था ये आपको भी नहीं मालूम था। फिल्म जगत से भी आप जुड़े, आपको अपनी पहली फिल्म की रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ मालूम है, कौन सी थी?
1: मैं आया तो बम्बई, मुझे आने की बड़ी चाह थी, हालांकि भेजा गया जबरदस्ती, लेकिन उड़ीसा छोड़ने की इच्छा नहीं थी मेरी। मैं क्यों छोड़ू जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं लोगों का प्यार, मैं उसको क्यों छोड़ू? मैंने कहा ठीक है, एक महीना जाके मुंह दिखा कर नौकरी करके आके यहाँ छोड़ के, और फिर यहाँ आके हमारी जो डांसर्स लोग हैं उनसे इतना प्यार मिला है तो वही चलाएंगे हमको, ऐसा मैं सोच के आ गया। लेकिन आपको ये बताऊं कि ये भी बहुत बड़ा महासागर है, ये बम्बई ऐसा कोई सिटी नहीं है बम्बई के जैसा दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी दुनिया में, सारी पृथ्वी में लोग मैनहट्टन की बात करते हैं, अमेरिका को, वो भी कुछ नहीं जो बम्बई है। मैंने जो देखा मेरे आंखों से, मेरे नजरिए से दिखाई पड़ा, आपको लगेगा कि क्या क्राउड है, कौन कहाँ भाग रहा है, पागल की तरह भाग रहे हैं सब, उनको पूछेंगे तो पता ही नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, अगर आप पूछेंगे आप कितना बजे तो जवाब भी नहीं देंगे प्रॉपरली। इतना बड़ा क्राउड, इतना बड़ा, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, संगीत के लिए हो, पेंटिंग के लिए हो, किसी कला के लिए हो, आप जो भी करना चाहें, जो भी सीखना चाहें, आप अपने बच्चे को कुछ भी पढ़ाना चाहें, कुछ भी सिखाना चाहें, बम्बई के जैसा कोई शहर नहीं। या कोई दवा की ज़रूरत हो, या कोई अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, या कुछ, सब यहाँ मास्टर्स लोग पड़े हुए हैं। तो मैं आया तो मैं इतना भाग्यशाली था कि फिल्म इंडस्ट्री, और फिल्म इंडस्ट्री में लोगों के देखने के लिए कि भाई लता जी को देखना है या राज कपूर साहब को देखना है, तो सबकी लालच होती है, मेरी जरा ज़्यादा ही थी, और मैं भी रेडियो में 250 रुपए में कितना जिंदा रहूँगा। तो मैंने कहा कि देखते हैं क्या होता है। एक महीने के बाद मुझे बुलावा आ गया मदन मोहन साहब का कि मैंने तुम संग जन्म गंवा के हार गई सजना, और लता जी गा रही थी, और लता जी देख रहे हैं ऐसे करे, कौन है भाई, कौन है लड़का, एकदम यंग धोती कुर्ता पहना हुआ, कौन है भाई, कौन है? मैं दूर से देख रहा था लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी, वो जाऊं कैसे उनके पास में, देखने की बहुत इच्छा थी, बात करने की। खैर किसी ने कहा भाई इधर आओ, इधर आओ, मदन जी के असिस्टेंट थे मास्टर सोनी, ये लता जी यूपी से आया लड़का और यहाँ रेडियो में नौकरी, अरे वाह हमारे घर आओ, घर बुलाया तो गए, घर में बातचीत, तो मैं तो ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया। तो बस तो मदन जी ने बोला देखो अभी यहाँ मेरे हर रिकॉर्डिंग में काम हो या ना हो आना जरूर, मतलब काम नहीं हो तो आके बैठ के सुनो, पैसे लेके चले जाओ।

0: जी
1: पंडित जी, आपने बहुत दिनों तक एक वादक के रूप में योगदान दिया संगीत में
0: जी,
1: फिर आपने जोड़ी बनाई पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ में, जो देश के जाने माने संतूर वादक हैं, और उनसे भी आपकी सुने की मित्रता जो है बहुत पुरानी है, 50 के दशक की। तो जोड़ी बना करके संगीत देना है और संगीतकार बनना, फिल्म संगीतकार, ये आपका खुद का निर्णय था या इसके लिए किसने आपको इंस्पायर किया था, प्रेरित किया था?
0: शिव कुमार जी के पहले मैंने बहुत पिक्चरें किया था, पहले तो उड़ीसा का था तो उड़ीसा में पिक्चरें किया, उड़िया पिक्चरें 2-3 अकेले किया मैंने पिक्चरें। उसके बाद जब बम्बई आया तो मैंने अवतार कौल साहब थे जिन्होंने सुसाइड किया था, उनकी पिक्चर एक थी जिसका नाम था 27 डाउन
1: जी,
0: उसको मैंने अकेले किया था। तो जब जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है इनको मालूम पड़ा कि मैं पहले कर चुका हूँ, तो उनकी इच्छा हुई कि हम शिव जी दोनों मिल के कुछ करें, ताकि मैं कभी प्रोग्राम में गया हूँ तो शिव कुमार जी संभाल लें, शिव कुमार जी गए हों तो मैं संभाल लूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात। एक पिक्चर थी काला पत्थर, स्वर्गीय यश चोपड़ा की, तो उन्होंने कहा आप लोग इसको करेंगे? मैंने कहा जरूर करेंगे। बोले 2 गाना हो गया है और बाकी 5 गाने वो कर दीजिए। मैंने कहा 2 गाना किसने किया? उन्होंने कहा वो राजेश रोशन ने किया है। तो मैंने कहा नहीं, ये बहुत ख़राब बात है, मैंने रोशन जी के साथ काम किया है, वो लड़का बेचारा 2 गाना किया और फिर हम लोग करें, तो ये अच्छा नहीं, कोई नई पिक्चर होगी दीजिएगा, क्या है इसको और किसी से करवा लीजिए। तो अच्छा बोला तो अगली वाली करेंगे। हाँ ठीक है करेंगे। तो अगली पिक्चर आई कौन सी? सिलसिला, अमिताभ साहब उसमें काम करेंगे और जया जी काम करेंगे और शशि कपूर काम करेंगे और रेखा काम। अरे मैंने कहा वाह, ये तो तकदीर ही खुल गई, बहुत बढ़िया हुआ। वो पिक्चर से हम दोनों ने शुरुआत किया।

0: उस समय में जावेद साहब थे, जावेद साहब के पिताजी बहुत अच्छे लेखक थे, तो ये हुआ कि भाई इनको लिया जाए, क्योंकि यश जी की दीवार थी ये थी, तो उनका अच्छा रिलेशन था, चलो इनको ट्राई करते हैं। तो जावेद साहब ने गाना लिखा, मैं तो कहता हूँ कि मैं देख के उनकी जो सोच है गाने के बारे में, पहली बार गाना लिख रहे हैं, नीला आसमान सो गया, क्या फिलोसफिकल लाइन है, या ये कहाँ आ गए हम यूँ ही साथ चलते चलते। तो इन बातों को देख मैंने कहा कुछ नई बात हो रही, चलो करते हैं। बहुत मज़ा आया। अमिताभ साहब हमारे इलाहाबाद के ही हैं, तो थोड़ी बातचीत हो गई, तो अमिताभ ने कहा भाई गाना भी तो एक आध हम लोग भी गा लें। हमने कहा चलो ठीक है भैया गाओ।
1: अच्छा उन्होंने कहा था आपसे?
0: हाँ हाँ गाएंगे। तो गाते थे अच्छा भाई, अच्छा गाते थे और सितार बजाते। देखा कि एक सिचुएशन है, वो रंग बरसे भी गए चुनाव में, मैंने कहते तो यूपी के हैं तो इनके छोड़ के और कौन गाएगा, और इनके पिताजी तो बहुत अच्छे लेखक हैं, हरिवंश राय जी। तो मैंने सोचा कि ये अगर हरिवंश राय बच्चन जी लिखेंगे तो इसका कलर अलग हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये तो रही आप गाएंगे, लेकिन अगर ये इसके ये गाना आपके पिताजी लिखेंगे तो ही आप गाएंगे। अब वो तो फिल्म में आते नहीं थे, लिखते नहीं थे, दूर रहते थे, तो पटाया इनको तो बात बन गई, तो हरिवंश राय जी मान गए। बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े गुणी आदमी थे। जब उनको ये पता लगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ और अमित गाएंगे, तो उनकी भी इच्छा हो गई कि चलो ठीक है मैं लिखें। वो गाना उन्होंने लिखा, ऐसा गाना हो गया कि एक पारंपरिक गाना हो गया। 79 में हमने रिकॉर्ड किया था, उस साल से जब भी होली आती है अगर ये गाना नहीं बजा तो होली लगती नहीं है। तो अमिताभ साहब ने ऐसा ये गाना गाया, ऐसा अच्छा गाना गाया कि हमने कहा कि वाह भाई तो कमाल है, तो अच्छे प्लेबैक सिंगर भी बन सकते हैं। तो मैंने उनका बहुत फ़ायदा उठाया। एक तो ये गाना पहली बार वो गा रहे थे और हम लोगों रिकॉर्ड कर रहे थे HMB का स्टूडियो, तब इन लोगों ने नया बनाया था कोलाबा में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत बड़ा स्टूडियो बनाया था, तो वहाँ हमने रिकॉर्ड किया। ऐसा लगा कि वाह भाई अमिताभ बाबू क्या गाए आप, बहनती हैं वो। रात को 2-2 बजे शूटिंग के बाद में आते थे घर में, वो कहते जरा वो गाना देख लेंगे एक बार। मैंने कहा

FM बैंडिक्स 102.6 MHz पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सदाबहार गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म कब तक चुप रहूंगी से। आवाज है मोहम्मद अजीज की, समीर के बोल हैं, संगीत है बप्पी लहरी का।

आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। आवाजें सुरेश वाटकर के साथ आशा भोसले की हैं। फिल्म का नाम है सवेरे वाली गाड़ी।

सदाबहार गीतों का ये सफर बस यहीं तक। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। सुनिए सबसे पहले काशीराम अहिरवार का गाया हुआ ये वर्षा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधित श्रोताओं, कार्यालय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्राप्त एक जरूरी सूचना सुनिए। समस्त पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को सूचित किया जाता है कि स्टेशन कमांडर सागर की अध्यक्षता में दिनांक 2 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे शाहबाज सैनिक इंस्टीट्यूट में ECHS सदस्यों हेतु सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अतः सभी संबंधित उक्त सम्मेलन में सुबह 8:30 पर उपस्थित हो सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। अब सुनते हैं नाथू सिंह को।

इस लोकगीत के साथ ही बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग बस यहीं तक। FM बैंड 102.6 MHz पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में, करें थोड़ा सा इंतजार।

0: जागृति शर्मा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: 102.6 MHz पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले इस सभा के शेष कार्यक्रमों पर एक नजर।

अब से कुछ ही पलों बाद यानी शाम 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इनका अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। भोपाल केंद्र से ही आप सुनेंगे शाम 7:30 से ग्राम सभा। शाम 7:20 पर सुनेगा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग।

आज रात 8:20 पर आप सुन सकते हैं भेंट वार्ता, राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर विशेष प्रस्तुति। विषय होगा बेटी बचेगी तो सृष्टि रचेगी। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर शिविका यादव, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और भेंटकर्ता दीपक निषाद। चित्रपट संगीत रात 8:00, मनचाहे गीत रात 9:00।

अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर। इनका अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाता है। रात 9:30 से आप सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

अब कल की सभाओं के कुछ खास कार्यक्रमों पर एक नजर। श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ होगा कल सुबह 6:30 बजे। हमारा नियमित दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह आप सुनते हैं हर रोज सुबह 7 बजे से। मन चाहे गीत सुबह 7:20 पर और संगीत सरिता सुनेगा सुबह 7:45 पर।

प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप इसे सुन सकते हैं सुबह 8:30 बजे से। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा कल सुबह 11 बजे से। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले की जाती है सुबह 10 बजे से। फोन करें, लोकगीत सुने। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा कल सुबह 10 बजे से। कल रात 10:30 बजे से आप सुन सकते हैं ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल।

तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।

0: हम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया शासन और नागरिक सशक्तिकरण की परिवर्तनकारी पहल। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG राम जी अधिनियम लागू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी में धान महोत्सव में सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। और प्रदेश में मॉनसून सक्रिय, उज्जैन बालाघाट सहित 7 जिलों में झमाझम बारिश, बालाघाट डिंडोरी में कल अति भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरा होने पर इसे शासन और नागरिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में परिवर्तनकारी पहल बताया। उन्होंने कहा कि इसने शासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने नवाचार की संस्कृति को गांव और छोटे शहरों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इससे AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे तकनीकों में भी तेजी से विकास हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की पहल से शुरू हुई देश की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में 81% डिजिटल भुगतान UPI के माध्यम से हो रहा है। 2,18,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भारत नेट सेवा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि AI क्षेत्र के लिए 45,000 से अधिक GPU स्थापित किए गए हैं और देश में 2,23,000 से अधिक स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG राम जी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। सरकार ने इसके लिए 95,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने आज द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाली 6-लेन सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 6,969 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिसकी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। इससे कानपुर कबराई का सफर 3.5 घंटे से घटकर 1.5 घंटे रह जाएगा। ये परियोजना भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है और सागर भोपाल तक कनेक्टिविटी मजबूत करेगी।
1: प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर हमीरपुर महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यह समारोह विद्यार्थियों के वर्षों के समर्पण और परिश्रम की सुखद परिणति है। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से समाज का ऋण चुकाने और वंचित वर्ग के सशक्तिकरण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना युवाओं की ऊर्जा और प्रतिबद्धता से ही साकार होगी।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सिवनी जिले में आयोजित धान महोत्सव कार्यक्रम में करीब 145 करोड़ रुपए की लागत के 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। डॉक्टर यादव ने इस मौके पर करीब 350 करोड़ की लागत से 586 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कोदो कुटकी उत्पादक किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से करीब 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। ये राशि 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दी गई है। इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा,
3: मध्य प्रदेश में पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का अभियान भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। जब मैं कोदो कुटकी की बात कर रहा हूँ, इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सभी श्रमिक भाई बहनों के लिए ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से हमारे मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से 16,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के लिए 365 रुपए की राशि अंतरित की जा रही।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी जिले के तलून में खाटू श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 21 कुंडीय महायज्ञ कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बड़वानी और निमाड़ की धरती संतों और लोक परंपराओं से समृद्ध रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मंदिर सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा। राजस्थान के दौसा जिले में कल रात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में प्रदेश के कई यात्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने राजस्थान सरकार से संपर्क बनाए रखते हुए प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, सशक्त और रोजगार उन्मुखी बनाना जरूरी है। मंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पीएम जनमन के तहत प्रदेश में 1,44,000 से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं और प्रदेश इस मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। मंत्री ने पंचायतों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश भी दिए। विदिशा जिले में हृदय रोग से पीड़ित 2.5 माह की मासूम अवनी को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अहमदाबाद भेजा गया। अवनी का उपचार आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क होगा। टीम ने बच्ची को उसके माता पिता सहित सुरक्षित भोपाल एयरपोर्ट पहुंचाया, जहां से उसे अहमदाबाद रवाना किया गया। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी जीवन रक्षक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत राज्य के गंभीर रूप से बीमार या दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को बेहतर और उच्च स्तरीय इलाज के लिए बड़े अस्पतालों तक हवाई मार्ग से पहुँचाया जाता है। बात खेल की। मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के खिलाड़ी मोहम्मद कोनेन दाद का चयन भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम में हुआ है। टीम 5 से 18 जुलाई तक बेल्जियम दौरे पर रहेगी। मोहम्मद कोनेन दाद फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन आईसीसी की T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने करीब एक साल से नंबर 1 पर काबिज अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा है। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं, जबकि इंग्लैंड के जो रूट तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेरल मिचेल पहले और शुभमन गिल दूसरे स्थान पर हैं। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून एक्टिव है। आज उज्जैन, बालाघाट, कटनी, सीहोर, उमरिया, धार और मंडला समेत 7 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और सागर संभाग को मॉनसून पूरी तरह कवर कर चुका है, जबकि उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में दस्तक बाकी है। मौसम विभाग ने कल के लिए बालाघाट और डिंडोरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दादा ईश्वरदास रोहाणी की स्मृति में गौरव शिखर सम्मान का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां मुख्य अतिथि रहे। खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत पॉलीथीन लाइए चाय पीजिए अभियान शुरू किया है। बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक शौचालय परिसर में पॉलीथीन जमा करने वालों को निःशुल्क चाय दी जा रही है। डॉक्टर्स डे पर भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सक कल्याण पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं आगरमालवा में इस मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आम, जामुन और नीम जैसे औषधीय पौधे रोपित किए गए। राजगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने मॉनसून सत्र के दौरान रेत उत्खनन पर रोक लगाई। 1 अक्टूबर तक जिले की समस्त रेत खदानों में खनन कार्य पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। बैतूल जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत करीब 1,65,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। और शिवपुरी शहर के मनियर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। राजस्व टीम ने JCB से अवैध रूप से बनाई गई सड़कों को हटाया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

FM 102.6 MHz पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यालय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्राप्त एक सूचना सुनिए। समस्त पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को सूचित किया जाता है कि स्टेशन कमांडर सागर की अध्यक्षता में दिनांक 2 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे शहबाज सैनिक इंस्टीट्यूट में ECHS सदस्यों हेतु सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अतः सभी संबंधित उक्त सम्मेलन में सुबह 8:30 पर उपस्थित हो सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। FM 102.6 MHz पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। सुनिए सबसे पहले शकुंतला राजपूत को।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं चंद्रभूषण पाठक को।

इस लोकगीत के साथ ही बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग बस यहीं तक। FM 102.6 MHz पर ही आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: बुंदेली समाचार।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भैया जी, हर रोज देखो, जब अपन जैविक रूप से जो अपन को फसल को उत्पादन होते हैं, अगर उनको अपन सेवन कर रहे थे तो

0: ना केवल अपने स्वास्थ्य के लाने वो महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि अपन को उसे अधिक आर्थिक लाभ भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही कछु विशेष प्रकार की जानकारी लेके आज हमारे संगे उपस्थित हुए हैं विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गजराज सिंह वर्मा, उनसे बातचीत करी है आनंद कृष्ण वर्मा ने। तो सुनाते हैं भेंटवार्ता, जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वास्थ्य पर्यावरण, गजराज सिंह वर्मा से आनंद कृष्ण वर्मा की बातचीत।
1: किसान भाइयों बहनों, इस समय हमारे प्रदेश में खेत बचाओ अभियान चल रहा है जो कि 1 जून से 30 जून तक चल रहा है, और इस अभियान के अंतर्गत किसान विकास केंद्र और कृषि विभाग के अधिकारी किसानों से संपर्क करते हुए खेतों को बचाने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और इन सब में सबसे अधिक जो जोर दिया जा रहा है वो है जैविक खेती। जैविक तरीक़ा से खेती करके हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को और फसल की गुणवत्ता को अच्छा रख सकते हैं, और इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है उन्नत कृषक श्री गजराज सिंह वर्मा को, जो कोलास कला जिला सीहोर में खेती करते हैं, किसानी करते हैं और उन्नत कृषक के रूप में जाने जाते हैं। गजराज सिंह वर्मा जी से हम लोग चर्चा करेंगे जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वस्थ पर्यावरण। तो वर्मा साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार
2: जी। नमस्कार सर।
1: वर्मा जी, ये बताएं कि सबसे पहले कि आप जैविक तरीका से खेती करने के बारे में कैसे आपको प्रेरणा मिली है, जैविक तरीका से खेती करना आपने कैसे शुरू किया?
2: एक तो जैविक खेती करने से मतलब जो उसमें उगाए गए अनाज रहते हैं उसको खाने से एक तो अपन स्वस्थ रहते हैं, पूरा परिवार स्वस्थ रहता है और जो अपने प्रकृति है वो भी बचती है। केमिकल, आजकल केमिकल बहुत अधिक मात्रा में मिलाए जाते हैं, उसके कारण काफी बीमारियों का सामना करना पड़ता है।
1: हाँ।
2: तो उससे काफी बीमारियों से भी अपन बच सकते हैं और जैविक खेती की उगाई गई फसल काफी स्वाद अच्छा रहता है उसका, और उसकी सेहत के लिए भी काफी फायदेकारक रहता है, और उससे धरती माता भी सुरक्षित रहती है और अपन भी सुरक्षित रहते हैं। तो जो मार्केट में जो आजकल केमिकल आ रहे हैं उनसे अपन बच सकते हैं। तो जो जैविक खेती करना है वो बहुत आसान तरीका है, आसानी से खेती कर सकते हैं।
1: जी, आपने तो बहुत अच्छे से आपने जैविक खेती के महत्व के बारे में और उसकी जो उपयोगिता है उसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली जैविक खेती करने के बारे में?
2: सबसे पहले मैंने एक एकड़ से स्टार्ट किया था अपने परिवार के लिए और अपने लिए
1: जी।
2: फिर उसको धीरे धीरे उसको बढ़ाते बढ़ाते हमने काफी आज 15 से 20 एकड़ पे जैविक खेती कर रहे हैं और उससे काफी कस्टमर भी बना रखे हैं
1: जी जी।
2: तो उससे काफी लोगों को भी फायदा होता है और अपन भी स्वस्थ रहते हैं, पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, तो उसके काफी फायदे होते हैं।
1: तो आपने बताया कि जैविक खेती करने से आपको अच्छा लाभ मिल रहा है और उसके साथ साथ में आप स्वस्थ भी हैं और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखे हुए हैं, और साथ ही आपकी खेती से जो उत्पाद उत्पन्न हो रहे हैं, जो फसलें निकल रही हैं, वे उनके जो ग्राहक हैं वे भी इसी के साथ साथ में स्वस्थ रहते हैं
2: जी जी जी।
1: तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। ये बताएं कि जैविक खेती में और जो हमारी रासायनिक तरीके की जो खेती होती है उसमें बुनियादी तौर पर अंतर क्या होता है?
2: जैविक खेती में थोड़ी सी जो एक तो समस्या आती खरपतवार की
1: जी।
2: तो खरपतवार हाथ से निकालना पड़ता है, तो उसके बहुत आसान तरीके आजकल चल गए हैं, कुलपे से और डोरे चल रहे हैं, काफी कृषि यंत्र आ रहे हैं पूरा खरपतवार निकालने के लिए
1: जी, जी।
2: उसके बाद हाथ से निंदाई करना पड़ती है। और रासायनिक खेती में ये रहता है कि आदमी एक दवाई स्प्रे कर देगा और उससे पूरे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं
1: जी, जी, जी।
2: तो उसमें उसको कम मेहनत रहती है। जैविक खेती में थोड़ी सी खरपतवार की समस्या आती है तो वो जरूर आपको हाथ से निकालना पड़ता है और रासायनिक खेती में केमिकल से निकल जाते हैं।
1: तो आपका मतलब कहने का ये है कि जैविक खेती में थोड़ी सी मेहनत जरूर रहती है लेकिन रासायनिक तरीके से यदि हम रसायनों का प्रयोग यदि करते हुए हम यदि अपने खेतों में ये काम करें तो उससे काम तो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, लेकिन फसल की गुणवत्ता और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा, है ना?
2: जी जी।
1: तो ये भी आपने एक अच्छी चीज़ बताई। अच्छा, जैविक तरीका से खेती करने में किस तरीके की तुलना की जा सकती है कि जो रासायनिक खेती और जैविक खेती दोनों में से सस्ती कौन सी पड़ती है?
2: वैसे तो जैविक खेती सस्ती पड़ती है क्योंकि जैविक खेती में आप जो दवाई है, वो दवाई जो स्प्रे करते हैं वो दवाई अपने खेत के आसपास

0: पेड़ रहते हैं जैसे नीम है, बेसरा में अकौवा है, सीताफल है, करंज है, तो इसका आप पांच पत्ती काढ़ा बना के उसको स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा एक ब्रह्मास्त्र रहता है, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना के गाय के गोमूत्र में उसको मिक्स करके उसको भी अपन खेत में स्प्रे कर सकते हैं। एक नीम आयल है, तो ऐसे बहुत सारी दवाई जो मार्केट में आज दो दो तीन तीन हजार रुपये लीटर दवाई आ रही है, तो उसकी अपेक्षा ये दवाई बहुत सस्ती पड़ती है।
1: हाँ, और अपन चाहे तो खुद भी बना सकते हैं
0: उसको, खुद ही बनाते हैं लगभग सभी लोग जो जैविक खेती करते हैं वो खुद ही बनाते हैं। और उससे ये रहता है कि मतलब एक तो उसी फसल को अपन उसी दिन खा लेंगे तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, और जो मार्केट की जो केमिकल वाली फसल रहती है उसमें काफ़ी दिन तक जहर का असर रहता है, तो वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक रहता है।
1: जी, ये आपने एक अच्छी बात बताई। अब ये बताएं कि जैविक तरीका से खेती करने में, आपने ये तो बताया कि खरपतवार का नियंत्रण हमें खुद ही करना होता है ना, हाथ से करना पड़ता है, इसके अलावा कीटों का नियंत्रण जैविक तरीके से कैसे होता है?
0: कीटों का नियंत्रण जैसे मैंने बताया, पांच पत्ती काढ़ा बना सकते हैं आप, ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, नीम आयल स्प्रे कर सकते हैं, छाछ की दवाई बना सकते हैं, ऐसी देसी दवाई काफी बनती है। उससे कीट एकदम उस शुरुआत में आपको थोड़ा थोड़ा स्प्रे करना पड़ेगा, यदि एकदम कीट लगने के बाद आप देसी दवाई स्प्रे करेंगे तो फिर वो दवाई असर नहीं करती है।
1: अच्छा।
0: उससे ये है कि फसल 10 से 15 दिन की हो जाए फिर आप थोड़ा थोड़ा स्प्रे उस पर कर सकते हैं, तो फिर आपको कीट की समस्या नहीं आएगी।
1: जी, अच्छा, और कीटों के साथ साथ में एक दूसरी समस्या और आती है फसलों में कि उनमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, तो रोगों के नियंत्रण करने के लिए जैविक कौन से जैविक तरीके हो सकते हैं?
0: जब आप जैविक खेती करना स्टार्ट कर देंगे तो रोग तो अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें गोबर का सड़ा हुआ खाद रहता है और केंचुआ खाद रहता है, या कहीं बोन मील यूज करते हैं जैसे राख फास्फेट यूज करते हैं
1: जी,
0: तो ऐसी काफ़ी ऑर्गेनिक देसी दवाइयाँ या खाद वो आते हैं, तो ये बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। अब मैं करीबन 15-20 वर्ष से कर रहे हैं तो अभी हमारे खेत में कोई बीमारी नहीं आती है, परंतु प्रत्येक हर वर्ष आपको मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए। मई जून में आपको मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए और प्रत्येक वर्ष एक वर्ष छोड़ के आपको मिट्टी पलटना चाहिए
1: जी।
0: तो मिट्टी पलटने से काफी जो गहरी जुताई बोलते हैं अपन, गहरी जुताई करने से मिट्टी नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाती है और ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाती है, तो उससे पोषक तत्व काफी बढ़ते हैं खेत में।
1: जी जी, अच्छा वर्मा साहब, आप अभी बता रहे थे कि मिट्टी परीक्षण ये एक बड़ी जरूरी चीज है, और जो अभी खेत बचाओ अभियान चल रहे हैं उसमें भी इस बात पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि मिट्टी परीक्षण किसानों को कराते रहना चाहिए, नियमित रूप से कराना चाहिए। इसके लाभ क्या है और इसको कैसे करवाया जाता है?
0: मिट्टी परीक्षण के काफ़ी लाभ रहते हैं, जैसे जो लोग रासायनिक खेती कर रहे हैं उनको मिट्टी परीक्षण में ये पता पड़ जाता है कि मेरे एक एकड़ खेत में 10 किलो यूरिया देना है
1: जी,
0: जबकि वो एक एकड़ में 50 किलो यूरिया डाल रहा है, तो वो 40 किलो यूरिया उसका वेस्टेज जा रहा, उसकी उसको जरूरत नहीं है, न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन की, और आप 10 किलो की जरूरत है, अपन 50 किलो डाल रहे हैं तो 40 किलो वेस्टेज जा रहा है, फास्फोरस की कितनी कमी है वो भी बता देते हैं, जिंक की कितनी कमी है, तो ये टोटल मिट्टी परीक्षण में आपको पता पड़ जाएगा कि मेरे खेत में इतना मटेरियल डालना है। यदि आप मिट्टी परीक्षण नहीं करवाएंगे तो फिर आप बहुत अधिक मात्रा में खाद देंगे और उसका काफ़ी फसल को भी नुकसान रहेगा और अपने को भी नुकसान रहता है उसका।
1: अच्छा, तो ये आपने अच्छी चीज़ बताई कि मिट्टी परीक्षण हमें कराते रहना चाहिए। अच्छा, बीज को उपचारित करके भी कुछ खेती की जाती है जिसमें कि लाभ अच्छे तरीके से मिलता है, तो बीज का उपचार किस तरीके से किया जाता है, उपचारित
0: कैसे? जैसे ऑर्गेनिक जैविक खेती में राइजोबियम से उपचार करते हैं, तो उससे एक फंगिसाइड जो फंगस लगती है वो बीज में फंगस नहीं लगती है, और रासायनिक खेती में भी काफ़ी बीज उपचार आते हैं, तो उससे एक तो अंकुरण की क्षमता अधिक बढ़ जाती है, दूसरा कई बीमारियां नहीं लग पाती, शुरुआत में जब पौधा उगता है उसी समय उसको बीमारी ग्रस्त कर लेती है तो फिर वो अच्छा उत्पादन नहीं देता है, तो बीज उपचार करना बहुत अति आवश्यक रहता है।
1: जी जी, हमें जैविक तरीका से यदि हम खेती कर रहे हैं तो और कौन कौन सी सावधानियाँ रखना चाहिए?
0: एक तो आपके जैसे खेत है तो किसी कोई बाजू में आपका रासायनिक खेती कर रहा है, तो उसके खेत का पानी आपके खेत में बह के नहीं आना चाहिए
1: जी।
0: तो आपको जो आपकी मेड़ रहती है उसको बफर

0: जोन बोलते हैं,
1: हाँ।
0: उसको आपको ऊंचाई पे करना पड़ेगा। दूसरा, आपको लास्ट अपने खेत के किनारे पे थोड़ी ऊंची वाली फसल बोना पड़ेगी, तो उससे जो कि दूसरे वाला केमिकल का स्प्रे कर रहा है तो उसकी जो हवा है वो अपने खेत की तरफ नहीं आए, तो उससे वो भी आपको देखना पड़ेगा, तो उससे काफ़ी फायदा रहता है
1: जी। अच्छा वर्मा जी, एक बात ये बताएं, जैविक तरीके की जो उपज होती है उसका कुछ मानकीकरण वगैरह भी होता है क्या, उसके बारे में बताएं, उसकी मार्केटिंग कैसे करी जाए, उसका विपणन कैसे किया जाता है?
0: आजकल क्या है, मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था है भोपाल में, वहाँ आपका पंजीयन होता है।
1: अच्छा।
0: तो वहाँ पे लैब टेस्टिंग भी होता है और इन्फेक्शन के लिए भी वो प्रत्येक वर्ष आपके खेत में जाते हैं और वो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ से एक प्रमाण पत्र देते हैं आपको
1: जी,
0: वो आप इस खतरे में खेती कर रहे हैं, तो वो आपको पूरा वो रिकॉर्ड देंगे, फिर आपको पूरा वर्ष भर की डायरी मेंटेनेंस करना पड़ेगी, आज हमने खेत में निंदाई करी है, आज हमने ये दवाई डाली।
1: अच्छा।
0: है बीज आज ये डाला है
1: जी, जी।
0: इसका हाईवेस्टिंग इस दिन किया है, फिर इसका उत्पादन इतना आया है और इसको इस रेट में हमने बेचा है
1: जी, जी।
0: तो वो पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो वो काफ़ी आसान है और ये भी अपने भोपाल में उसका पूरा ऑफिस बना हुआ है और वो पूरी समस्या का हल निकल जाता है
1: जी। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जैविक तरीका से ऑर्गेनिक के जो फसलें होती हैं वो महंगी होती हैं, तो ये क्या बात है इसके बारे में?
0: एक जैसे जैविक खेती करते हैं तो उसमें थोड़ी सी लेबर कास्ट काफ़ी अधिक लगती
1: है,
0: हाँ। दूसरा, फिर आप उसको प्रोसेसिंग देसी विधि से करते हैं, जैसे आजकल दालें घट्टी से बनती है, वो घट्टी की दाल बनाने में काफ़ी लेबर की कास्ट आती है
1: जी।
0: तो और उसका प्रोसेसिंग करने में थोड़ा सा क्या है, कास्ट ज़्यादा आती है, इस वजह से मार्केट के जो सामग्री रहती है उससे थोड़ी कास्ट उसकी अधिक रहती है
1: जी। किसानों को कैसा फ़ायदा होता है जैविक खेती करने से, फ़ायदा है या नहीं?
0: नहीं, फ़ायदा है और आजकल जैविक सामग्री लोग गांव-गांव ढूंढ रहे हैं उसको, और आजकल जो पहले 40-50 वर्ष पहले जो स्वाद था वो आज की मार्केट की सब्जियां इनमें नहीं है, तो लोग गांव ढूंढ रहे हैं कि कहां पे ऑर्गेनिक खेती हो रही है और वो खेत से खरीद के लेके आते हैं, तो उनको ये एहसास हो जाता है कि हमने 50 वर्ष पहले जो लौकी खाई थी,
1: हाँ।
0: वो आज टेस्ट इसमें आ गया,
1: वैसा टेस्ट आ गया,
0: वैसा टेस्ट आ गया, तो काफी लोग गांव पहुंच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और मार्केट अपने आप मिल जाता है, मार्केट की कोई समस्या नहीं आती है।
1: ठीक। आप हमारे जो किसान हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा प्रत्येक किसान भाई से निवेदन है कि कम से कम आप मार्केट में नहीं बेच सके तो कम से कम अपने परिवार के लिए जैविक खेती करें, एक एकड़ आधा एकड़ 25 डिसमिल जो भी आप कर सकते हैं, परंतु आप अपने परिवार को स्वस्थ रखें, आप स्वस्थ रहें और फिर और अधिक आप करना चाहें तो और अधिक जमीन पे जैविक खेती करिए, तो काफ़ी लोगों को फायदा रहेगा और अपन स्वस्थ रहेंगे, भारत स्वस्थ रहेगा और बीमारियों से अपन मुक्त हो जाएंगे
1: जी। तो गजराज सिंह वर्मा साहब, आप कुलांस कलां जिला सीहोर कि आप उन्नत कृषक हैं और आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसानों को जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वस्थ पर्यावरण के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अबे हमारे भैया जी हरे सुन रहे थे जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वस्थ पर्यावरण, विशेषज्ञ थे गजराज सिंह वर्मा और उनसे बातचीत कर रहे थे आनंद कृष्ण वर्मा। तो हमारे भैया जी हरे जरूर ये जानकारी हासिल करके लाभान्वित हुई हैं। और भैया हरो, देखो आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है, डॉक्टर्स डे। आज को दिन ऐसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं कहीं कि सभी डॉक्टर अधिक परिश्रम से अपने मरीजों को स्वस्थ करते हैं और बल्कि हम कह लेवे कि उनको एक नव जीवन दे देते हैं, राष्ट्र के नागरिकों को एक निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं जिसे वे सबके सम्माननीय बन जाते हैं। ऐसे कई सभी डॉक्टरों को आज हमारे संगे पूरे आकाशवाणी परिवार ग्राम सभा के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो सभी डॉक्टर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब सुन लेते हैं बहादुर सिंह नरवरिया और साथियों के स्वर में गाओ वह जो देवी गीत।

दिवस आज याने 1 जुलाई से 7 जुलाई लो वन महोत्सव मनाओ जात है। पूरो सप्ताह भर देश भर में वृक्षारोपण पर्यावरण जागरूकता उत्सव के रूप में मनाओ जात है। और जो महोत्सव मनावे को अगर अपन बात करें तो ये मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में पेड़ लगावे की आदत के संगे संगे उनको संरक्षण के महत्व को भी समझावे की बात है कि वे पर्यावरण के महत्व को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा ना केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखवे के कारण पेड़ लगावें बल्कि ये जरूरी है कि जो पेड़ लगाए हैं उनको संरक्षित भी रख सकें। और जब वे संरक्षित हुए हैं तो ना केवल वे अपने लाने लाभकारी हुए हैं तो ऐसे लाभ के संगे हम सुन लेते हैं जो वृक्षारोपण गीत डॉक्टर अरविंद सोनी के स्वर में।

भैया जी जी हरो, आज हम अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस सुई मना रहे हैं। और जो दिवस मनावे को अगर बात करें कि क्या उद्देश्य है, तो हम स्वस्थ आहार लेवे जिसे हम सभी जने स्वस्थ बने रहे। काहे कि अगर जब अपन टिकाऊ कृषि पद्धति के माध्यम से अपन कृषि कराते हैं, तो ना अपन को सांस्कृतिक महत्व के द्वारा अपन को जो अपनी फसलें हैं वो अपन को मिलती रहती हैं, बल्कि अपन को अच्छे जो हैं फल हैं सब्जियाँ हैं वो मिलती रहती हैं, जो अपने स्वास्थ्य के लाने जरूरी होती हैं। हर बरस इसको एक दिवस विषय के रूप में मनाओ जात है, और ई वर्ष जो दिवस मनावे के लाने जो फल चुनो गौ है वो है खजूर, और ईखो दौ गौ है फ्रूट ऑफ द ईयर। तो सभी जने खूब फल खावें और स्वस्थ बने रहे, और जब स्वस्थ रहते हैं तो अपनो मन भी अच्छो रहते। सुन लेते हैं आरती तिवारी के स्वर में जो लोक भजन।

भैया जी जी हरो अबिरिया हो रही है चलवे की, सो आप औरों को कल के कार्यक्रम सोई बताओ चले भुंसरा कृषि चर्चा में सुन में खरीफ फसलों की बुआई एवं प्रबंधन और वाचक शुरू हुई है मेदनी प्रताप सिंह को और संजय सुने भेंट वार्ता वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहवे के लाने आयुर्वेद की सलाह और विशेषज्ञ हुई है डॉक्टर ऋतु पांडे और आवारती बहन को दियो आज्ञा राम राम।

0: ग्रामीण भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम सभा। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का सागर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। स्वीकार करें इस कार्यक्रम में हमारा प्यार भरा नमस्कार और सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म 1942 लव स्टोरी से। आवाजें हैं कुमार सानू के साथ कविता कृष्णमूर्ति की, जावेद अख्तर के बोल, आर डी बर्मन का संगीत है।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से चित्रपट संगीत कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कर्तव्य से। आवाज लता मंगेशकर की, वर्मा मलिक के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मजरूह का लिखा हुआ गीत, राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में। आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है फिर वही रात।

0: तो ये था चित्रपट संगीत फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता, राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर विशेष प्रस्तुति। विषय है बेटी बचेगी तो सृष्टि रचेगी। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिविका यादव, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और भेंटकर्ता दीपक निषाद।
1: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद, और एक बेहद खास विषय को लेकर के हम आपके बीच हाजिर हैं। सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ अभियान, ये राष्ट्रव्यापी अभियान है और लड़कियों के जीवन की रक्षा करने, उन्हें शिक्षित करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और लैंगिक भेदभाव को मिटाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये अभियान एक प्रभावी माध्यम है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच आज बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर शिविका यादव, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं सागर में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए।
1: हम बातचीत की शुरुआत करना चाहेंगे मैम और आपसे ये जानना चाहेंगे, सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ अभियान, ये अभियान क्या है और बेटियों की सुरक्षा, बेटियों का स्वास्थ्य, ये हमारे समाज के लिए कितना आवश्यक है?
2: इस अभियान की सबसे पहले तो हम ये बात करें कि इस अभियान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, हमारे देश में क्यों इस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी लिंग अनुपात लड़के लड़कियों का कम है और आज भी लोग लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं। ऑल्दो ये फासला पहले से काफ़ी कम हुआ है, लेकिन आज भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए हमें इस अभियान की आवश्यकता पड़ी है। और मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, इसलिए मैं यह समझ सकती हूँ और मैं ये रोज अनुभव करती हूँ कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ लड़की के पैदा होने पर उत्सव भी मनाया जाता है, और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ लड़की के पैदा होने पर मायूसी की लहर छा जाती है।
1: लिंगानुपात के बारे में आपने बातचीत की, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में लिंगानुपात क्या है और उसमें कमी क्यों है?
2: ऑल्दो ये पहले से काफी बढ़ा है इन्हीं सारे अभियानों की बदौलत, लेकिन हमें इसे बढ़ाना है, क्योंकि कई जो स्टेट्स हैं जैसे कि केरला है, वहाँ पर जो लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुष में वह लड़कियों का ज्यादा है, बिकॉज केरला एक जो है एजुकेटेड स्टेट है, वहाँ के लोगों की
1: लिटरेसी हाई है,
2: तो हमें इस चीज पे काम करना है।
1: जी जी, यानी कि जहाँ पे साक्षरता दर अधिक है, जहाँ लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पर लोग इस चीज को लेकर के जागरूक भी हैं। हमारे देश के एक राज्य में ये स्थिति है, तो ये बाकी जगहों पे भी रेप्लिकेट हो सकती है, दोहराया जा सकता है, और निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं एक संबंध जो है शिक्षा से भी है।
2: बिल्कुल है।
1: आगे हम ये जानना चाहेंगे कि स्लोगन्स में, नारों में हम बहुत कहते हैं बेटा बेटी एक समान, फिर जब प्रसव की बात आती है या समाज में नारी की स्थिति की बात आती है, कमी कहाँ आ जाती है, समाज की मानसिकता कहाँ पे कमजोर पड़ जाती है?
2: मानसिकता कई जगहों पर कमजोर है, कई जगहों पर लूप होल्स हैं। आज भी हमारी जो सोसाइटी है वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि जो परिवार होते हैं उनको एक पुरुष लीड कर रहा होता है, क्योंकि जहाँ पे अगर महिलाएं एज ए लीडर काम करती हैं तो वहाँ ये सोचा जाता है कि शायद ये पुरुष कमजोर होगा, इसलिए इस परिवार की बागडोर जो है वो महिला के हाथ में है। साथ में जो एक चीज मैंने एक्सपीरियंस की है कि कई बार जब लड़की पैदा होती है और हम माँ को बताते हैं, रिवील करते हैं कि लड़की पैदा हो गई है, तो कई बार ये स्थिति होती है कि कई माताएं अपना बीपी बढ़ा लेती हैं। उन्हें ये लगता है कि लड़की के पैदा होने से उनको एक जो प्रसवोत्तर जो सुरक्षा होती है या जो केयर होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दी जाएगी, घर वाले उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उनसे एक बेटे की उम्मीद थी लेकिन बेटी पैदा हो गई, तो कुछ माताएं तो ओटी के अंदर रोने लग जाती हैं, कुछ अपना बीपी बढ़ा लेती हैं जैसे मैंने पहले बताया, कुछ खुश भी होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी सोसाइटी हमेशा से रिग्रेसिव रही है, लेकिन दुखी होने वालों की संख्या ज्यादा है।
1: कहीं ना कहीं उस स्त्री के ऊपर दबाव रहता है,
2: बिल्कुल रहता है कि लड़का पैदा करना है, और इस दबाव का कारण है कि लड़का वंश आगे बढ़ाता है। तो ये जो एक मेंटेलिटी है वो आज भी लोगों में है कि माता पिता को अग्नि जो है वो लड़का देगा, उनको स्वर्ग का जो रास्ता है वो लड़का दिखाएगा, जिन माताओं पिताओं की लड़कियां हैं तो वो स्वर्ग तक कैसे जाएंगे, तो ये बहुत ही दकियानूसी ख्याल है,
1: बहुत सोसाइटी में दकियानूसी ख्यालों में जकड़ा हुआ है समाज अभी भी काफी हद तक एक स्तर पे। और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनमें एक प्रोग्रेसिव सोच भी है और बेटियों को वो स्वीकार करते हैं और खुले दिल से स्वीकार करते हैं और बेटी के समान वो उनको अधिकार देते हैं, स्थान देते हैं। आपने ये बताया कि हमारे समाज में ये धारणा कहीं ना कहीं पाई जाती है और बेटा ही वंश को आगे बढ़ाता है, तो हम वैज्ञानिक कारण ये जानना चाहेंगे कि क्या ये सत्य है या एक मिथक है, और अगर मिथक है तो साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से कैसे एक बेटी भी हमारे समाज में पिता के वंश को आगे बढ़ा सकती है?
2: हाँ, ये बिल्कुल बड़ा मिथ है कि केवल एक लड़का ही वंश को आगे बढ़ा सकता है। आधुनिक विज्ञान ये बताता है

0: ये धारणा बिल्कुल निराधार है,
1: हाँ जी,
0: निर्मूल है कि बेटा ही वंश को आगे बढ़ाता है। आपने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस बात को बताया कि बेटी भी आपके वंश को आगे बढ़ाती है। विज्ञान जब बता रहा है तो हमें अपने दकलियानुसी ख्यालों से बाहर निकलने के लिए आवश्यकता है। लिंग जांच की एक बात आती है, प्रसव पूर्व लिंग जांच, जो कि हमारे देश में एक अपराध भी है और इसे अवैध भी घोषित किया गया है। उसके बावजूद सोनोग्राफी जब स्वास्थ्य जांच के लिए आपके पास लोग आते हैं तो सोनोग्राफी के माध्यम से कई बार लिंग जांच के लिए भी दबाव डाला जाता होगा डॉक्टर के ऊपर, तो ये एक्सपीरियंस आपको क्या होता है और कैसे आप पेरेंट्स को समझाती हैं?
1: बहुत ही डिसहर्टनिंग होता है ये, और सबसे ज्यादा डिसहर्टनिंग ये होता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी पूछते हैं। कई बार ये होता है कि एक मतलब गरीब तबके का इंसान नहीं पूछेगा, लेकिन कई बार ये भी हो जाता है कि अच्छे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड डॉक्टर इंजीनियर फैमिली के लोग पूछते हैं कि मैडम आप रिवील कर सकते हैं क्या। जब ये सोनोग्राफी सेंटर में वहाँ हर जगह लिखा हुआ है कि लिंग जांच एक अपराध है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टिल लोग पूछते हैं, तो उन्हें यही समझाया जाता है कि भाई ये बताना भी कानूनन अपराध है और पूछना भी कानूनन अपराध है, आपको सजा हो सकती है, आपको जुर्माना लग सकता है।
0: हो सकता है कि कई लोग इग्नोरेंस में पूछते हैं, उनको पता ना हो, और गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी है कि हाँ, आपको चारों तरफ ये मतलब सेंटर्स पे लिख के रखना है ताकि लोगों को ये जागरूकता फैले और इसके बारे में लोग बात ना करें। फिर आप लोगों को कन्विंस करती हैं?
1: हाँ, उन्हें समझाया जाता है कि भाई लड़का और लड़की में क्या फर्क है। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं अपने माता पिता की तीसरी लड़की संतान थी, तो आसपास के लोगों को बहुत खुशी नहीं थी इस चीज से, लेकिन आज मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा तो ये मानना है कि अगर एक लड़की शिक्षित होगी और बचेगी, पहली बात तो ये कि लड़की को बचना चाहिए, लड़की अगर बच गई कोख से बाहर निकल गई और वो पढ़ लिख गई तो वो दो परिवारों को संभाल सकती है, अपने ससुराल को और अपने मायके को, दोनों परिवारों को शिक्षित करेगी, उनको आगे बढ़ाएगी।
0: जी, बहुत बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, बहुत संवेदनशील बात है कि बेटी बच जाए वो बड़ी बात है। हाँ। आज 21वीं सदी में हमें बात करनी पड़ रही है, और आपने स्वयं अपने करियर से अपनी शिक्षा से ये सिद्ध किया है कि बेटी अपने जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकती है। एक सफल डॉक्टर है आप।
1: एक बेटी अगर बच जाए तो हर बेटी में इतना पोटेंशियल है कि वो डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक बन सकती है, स्पोर्ट्स में जा सकती है। हमारी महिला क्रिकेट टीम हॉकी टीम कितना अच्छा कर रही है।
0: बिल्कुल सही बात है, एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है और किसी भी तरीके से किसी बेटे से कमतर नहीं है, तो क्यों नहीं समाज में उनको बराबर का स्थान दिया जाना चाहिए।
1: और मेरे ख्याल से लोगों को ये भी पता होगा कि जो कुछ कंट्रीज है वहाँ पे जेंडर रिवील कर दिया जाता है।
0: जी जी,
1: पांचवे महीने ऑनवर्ड्स उनको बता दिया जाता है कि आपके गर्भ में एक लड़का है या लड़की है, और वहाँ एक प्रॉपर जेंडर रिवीलिंग पार्टी होती है जिसमें वो प्रॉपरली खुश होते हैं अगर लड़की भी है और लड़का भी है तो। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि हमारी कंट्री में ये दशा कब आएगी।
0: जिन कंट्रीज में, जिन देशों में ये जेंडर रिवीलिंग पार्टी होती है वहाँ पे फीमेल फेटिसाइड की घटनाएं, कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं नहीं आती
1: हैं,
0: नहीं होती है। मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात है, वो समाज कितना प्रगतिशील है जहाँ पर ये जानने के बावजूद कि गर्भ में पलने वाला बच्चा है या बच्ची, उसके बावजूद उसको प्रसव को वो करवाते हैं
1: और वो
0: खुशियां मनाते हैं, उत्सव की तरह लेते हैं,
1: तो वो विकसित है।
0: तो हमें विकासशील से विकसित अगर बनना है तो सिर्फ आंकड़ों के आधार पे नहीं, सिर्फ व्यवस्था के आधार पे नहीं, बल्कि एक सामाजिक रूप में भी हमें बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है, सोच को विकसित करने की आवश्यकता है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे मैम कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि लड़कियां परिवार में आ गईं, परिवार में आने के बावजूद जन्म के बाद भी उनके साथ किसी न किसी स्तर पे भेदभाव किया जाता है, तो इस भेदभाव के खिलाफ हमें एक सोसाइटी के रूप में, एक समाज के रूप में कैसे खड़े होने की आवश्यकता है, और इसमें महिलाओं की भूमिका क्या है, क्योंकि एक महिला भी पेरेंट्स में, माता पिता में से एक हिस्सा उसका भी है।
1: बिल्कुल है।
0: महिला भी अगर मजबूती से अपनी बेटी के पक्ष में खड़ी हो गई तो बेटी को शिक्षित, बेटी को स्वस्थ और बेटी को कैरियर की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है।
1: बिल्कुल पहुंचा सकती है, और क्योंकि ये कहा जाता है कि बच्चे का जो प्रथम शाला है, स्कूल है, वो उसकी माँ ही है। और मैं ये सोचती हूँ कि यदि आप एक महिला हैं और आप एक महिला के होने पे दुखी कैसे हो सकते हैं? अगर आपके होने पर आपकी माता दुखी होती तो फिर आप कैसे इस जीवन में आते, आप कैसे इस दुनिया में आते? तो महिलाएं भी बिल्कुल बराबर की भागीदार होती हैं भेदभाव करने के उसमें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि परिवार में यदि लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, दूध थोड़ा कम आ रहा है, तो वो जो है वो दूध का ग्लास बच्चे मतलब लड़के को मिलेगा, लड़की को नहीं मिलेगा, है ना। अगर वो लोग पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो लड़के को इंग्लिश मीडियम में भेजेंगे, लड़की को हिंदी मीडियम में भेजेंगे, या तो पढ़ाएंगे ही नहीं, वो ये सोचेंगे कि इसे तो बर ब्याह के अगले घर में जाना है, हमें क्या करना। तो ये जो भेदभाव है, ये माता पिता अपने लेवल पर इसे कम करें, बंद करें, खत्म करें। आपकी लड़की अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो डेफिनेटली

0: आपकी एक जमा पूंजी है, क्योंकि आज मैं भी अपने परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट करती हूँ, कर सकती हूँ, और बिल्कुल करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अगर जिन माता पिता ने आपको पढ़ाया है, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, ये जिम्मेदारी दोनों तरफ आती है, लेकिन पहले जरूरी ये है कि बेटी बचे, बेटी पढ़े, बेटी शिक्षित हो और करियर में अपने आगे जाएं, और महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है।
0: करियर तक बेटियों को समानता का अधिकार दो, बेटियां किसी से कम नहीं है।
1: जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि कोख से लेकर करियर तक उनको समानता का अधिकार दिया जाना बहुत जरूरी है। जेंडर रिवीलिंग पार्टी की बात आपने की कि कई देशों में ऐसा होता है, आपने अपने प्रैक्टिस में आप जब किसी महिला का प्रसव करवाती हैं, बेटी का जन्म होता है, तो आप क्या सेलिब्रेशन के लिए, उत्सव के लिए प्रेरित करती हैं?
0: हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जब लड़कियों का जन्म होता है तो हम उसे एक उत्सव में कन्वर्ट कर देते हैं। हम मतलब लोगों को ये बताते हैं कि भाई लड़की आ गई मतलब लक्ष्मी आ गई, अब तुम्हारी जो है तुम्हारे घर में बरकत आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। बेटियां जो होती हैं वो बरकत लेकर आती हैं, तो हम माता को भी गिफ्ट देते हैं ताकि भाई वो ये ना फील करे कि अब मेरी कोई केयर नहीं करेगा, और उस बच्ची को भी गिफ्ट देते हैं, और हम उनके परिवार वालों को ये समझाते हैं कि लड़की हो गई है तो एक मतलब भगवान ने आपके घर को चुना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, बेटियां जो होती हैं वो सौभाग्य से होती हैं और बेटे भाग्य से होते हैं, तो भगवान ने देखा कि आप इस बेटी के भरण पोषण के लायक हैं, इसलिए आपको ये बेटी मिली है, ये उपहार स्वरूप मिली है, आप इसको पढ़ाओ लिखाओ, एक काबिल इंसान बनाओ। और प्लीज ये ना सोचो कि अब एक लड़की हो गई तो महिला के ऊपर आप दबाव डालने लगो कि अगला बच्चा लड़का ही हो। ये भी होता है हमारी सोसाइटी में, अगर चलो एक लड़की हो गई तो चलो अब एक लड़का पैदा कर लो, परिवार पूरा हो जाएगा। क्यों पूरा परिवार हो जाएगा? क्या दो लड़कियां परिवार पूरा नहीं कर सकती? क्या एक लड़की परिवार पूरा नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। जैसे मैंने बताया कि जो लीनियज है उसको तो लड़कियां ही बढ़ा रही है ना, और ऐसे लोग हैं, ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके पास केवल एक लड़की है और वो एक में ही खुश है, दो लड़कियां हैं और नसबंदी हो गई है, परिवार बंदी हो गई है, वो उसमें खुश है।
1: एक या दो लड़कियों से भी परिवार पूरा हो सकता है, और दो लड़कियों के बाद अगर आप एक लड़के की कामना कर रहे हैं, आगे सोच रहे हैं, सिर्फ इसलिए बच्चियों को जन्म दिए जा रहे हैं कि आपको एक लड़का चाहिए, तो ये गलत है। और बहुत साइंटिफिक तरीके से आपने बताया कि दो लड़कियां भी, एक लड़कियां भी परिवार को पूरा कर सकती हैं। हम शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य के बारे में भी जानना चाहेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चियों के न्यूट्रिशन की, पोषण की एक अलग आवश्यकता भी होती है,
0: आवश्यकता
1: और जब तक हम उस न्यूट्रिशन को, उस पोषण को पूरा नहीं करेंगे तब तक वो बच्ची अपने सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ काम नहीं कर सकती है। तो न्यूट्रिशन, पोषण पूरा किया जाना कितना आवश्यक है बच्चियों का?
0: बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियां ही होती हैं जिन्हें मासिक धर्म, जो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है आफ्टर रीचिंग एडोलेसेंट, वो मासिक धर्म की प्रक्रिया से गुजरती हैं जिसमें ब्लड लॉस होता है, तो उस ब्लड लॉस को पूरा करने के लिए, ताकि उनमें आगे चल के अनीमिया ना हो, रक्ताल्पता ना हो, उसके लिए उनका पोषण, अच्छी हरी पत्तेदार सब्जियां, वही मैंने कहा कि आप असमानता ना करें, लड़के लड़की को दोनों को बराबर पोषण दें, और मेरे ख्याल से तो लड़की को ज्यादा ही दें, क्योंकि आपके लड़के में तो मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा ना, लड़की में हो रहा है,
1: आवश्यकता अधिक है
0: उनको, तो अगर उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो रही है तो उसे इग्नोर ना करें, ये ना कहें कि अरे ये तो सबको होता है, ये भी होता है, पीरियड्स में दर्द सबको होता है, ब्लीडिंग सबको होती है, तुम्हें पहली बार तो नहीं हो रहा है, और पैसे बचाने के लिए डॉक्टर्स के पास नहीं ले जाते हैं, तो वो ना करें। अगर आपकी बेटी आपसे कुछ समस्या बता रही है, पीरियड संबंधित या स्वास्थ्य संबंधित या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप उसको डॉक्टर्स के पास में लेकर जाइए, उनकी जांचें कराइए, वो सप्लीमेंट्स बताएंगे, वो आपको सारी चीजें बताएंगे, और उनका पालन कीजिए।
1: एक बात और भी है कि यदि न्यूट्रिशन या पोषण अच्छा नहीं रहा तो आगे चल के प्रसव में भी समस्या आती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जाती है,
0: बिल्कुल समस्या आती है।
1: और किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं प्रेगनेंसी में अगर पोषण अच्छा नहीं है तो?
0: जो है देखो, अगर पोषण अच्छा नहीं है, पीरियड्स ज्यादा हो रहे हैं, खून की कमी हो रही है, तो पहले तो कमजोरी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद में जो बच्चा होगा वो कमजोर होगा, उन्हें पहली बात तो ये कि बच्चा करने में ही दिक्कत होगी, बिल्कुल रिस्क पे जा सकता है, बच्चे की जान को खतरा होता है, मरीज की जान को खतरा होता है, वो महिला पीपीएच में जा सकती है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज में जा सकती है।
1: बहुत अच्छी चर्चा हुई आपसे मैम, आखिरी में चलते चलते बेटी बचाओ के लिए, सेव द गर्ल चाइल्ड के लिए, जिस थीम के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ संदेश अगर आप देना चाहें तो?
0: मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि यदि बेटी बचेगी तो सृष्टि रचेगी, तो पहले तो हमारा काम है बेटी को बचाना, फिर उसके बाद में अगर बेटी बच जाएगी तो सृष्टि स्वतः ही रच जाएगी।
1: बेटी को बचाना यही एक बड़ा टास्क है।
0: हाँ।
1: बेटी को बचा लिया गया तो स्वतः ही वो अपने काम को पूरा कर लेगी, और
0: बेटियों को, क्योंकि मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, और मेरी एक ही बेटी है, मैं चाहती हूँ कि अगर फ्यूचर में मैं कभी माँ बनूँ तो मैं एक बेटी को ही जन्म दूँ, और यदि मैं करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चलते नहीं कर पाऊँ तो मैं एक बेटी को गोद लूँ। ये मेरी मनोकामना है। और बेटियों को ज्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद देख देख के सीख जाती हैं।
1: फास्ट लर्नर होती हैं,
0: बहुत ही फास्ट लर्नर होती हैं, वो बहुत ही डोसाइल होती हैं, आपकी बातें मान लेती हैं, सब सीख जाती हैं खुद से।
1: बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि कोक से लेके करियर तक बच्ची को समान अवसर दिया जाना बहुत जरूरी है। बेटी बचेगी तभी सृष्टि रचेगी। लैंगिक भेदभाव मिटा करके समाज में महिलाओं को समान अधिकार देना और महिलाओं को सशक्त बनाना एक समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारी है, और इस बारे में पूरे समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: स्वागत करते हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर विशेष प्रस्तुति भेंटवार्ता। विषय था बेटी बचेगी तो सृष्टि रचेगी। विशेषज्ञ थी डॉक्टर शिविका यादव, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और भेंट करता थे दीपक निषाद। FM 102.6 MHz पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यालय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्राप्त एक सूचना सुनिए। समस्त पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को सूचित किया जाता है कि स्टेशन कमांडर सागर की अध्यक्षता में दिनांक 2 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे शाहबाज सैनिक इंस्टीट्यूट में ECHS सदस्यों हेतु सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अतः सभी संबंधित उक्त सम्मेलन में सुबह 8:30 पर उपस्थित हो सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

0: का व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297। आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 से।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है 11:30 से 11:30 तक।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार 7:20 से।
4: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
5: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
4: News on AIR?
5: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
4: अरे वाह माँ, कमाल है।
6: News on AIR।

0: यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती हैं।
2: अरे काय भैया, ये सब मोह लटकाए काय को दिए थे?
3: अब कहा बताएं भज्जा तुमकी, कोनो ये कहु परेशानी हो तो बतावे, ये तो राम धई समस्याओं की लेन लगी है लेन।
2: अरे भैया ये सब का होगा, कुछ तो बताओ।
3: अब तुम्हें का बताएं भैया, कबहू जो ढोर बीमार, कबहू वो ढोर बीमार, कहूँ एक खोजा परेशानी, कहूँ वो खोबा परेशानी, और ऊपर से खेती रो आ रही है सो अलग ही।
2: अरे अब रोबो धोबो छोड़ो, उठाओ मोबाइल, लगाओ हेलो किसान वाणी में। हेलो किसान वाणी में हर गुरुवार को दोपहर 1 से फोन लगत है, वो में आउट है आकाशवाणी में एक से एक चुनिंदा वैज्ञानिक और डॉक्टर सोई।
3: अच्छा अच्छा,
2: हाँ, हाँ। मोबाइल पे फोन लगाओ 22 88 20, और दूसरा नंबर भी लिख लो 240 845।
3: और सीधो लाख का कछु वो करना पड़े,
2: बड़े समझदार हो। इमे कोड नंबर ही लगाने पड़े सागर को, और सागर को कोड है 07582। अब सागर आकाशवाणी को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो भैया।

0: ओ नो सात।
1: एक बीर फिर से बता दे भैया।
0: भैया फिर से लिख लो, इसमें कछु परेशानी नहीं। 9 7 7 0 4 3 2 2 9 7।
1: अच्छा तो पहले फोन की कोशिश कर है और ले लो बताओ फिर बात साहब।
0: अरे
1: अच्छा जा बताओ भज्जा। हाँ। ये सर रामधाई हमारी सब समस्याओं को निदान हो जाए।
0: अब तो रोबो धोबो हो गई पुरानी बातें। हाँ। लगाओ हेलो किसान बाणी में फोन।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा, 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समय अनुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
3: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
4: बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक

0: आंकड़ा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
1: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत के समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। रात्रि के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है मन चाहे गीत। स्वीकार करें इस कार्यक्रम में अपने दोस्त जय शेखर का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमें व्हाट्सएप से फरमाइश मिली है। लिखने वाले हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता, संकल्प और गुड़िया वेदा। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले, राजदीप सावले, राशि और शीतल। ये खत हमें मिले हैं ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद हसनैन, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। खंडवा से ही अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र झवर, धनुश्री आरोही और कान्हा वाघे। ये खत हमें मिला है पुरव्याऊ टोरी सागर से। लिखने वाले हैं श्याम रैकवार, विक्रम, वंदना, विनय, लक्ष्मी, खुशबू, कीर्तिका, टक्कू, भूमिका, दक्ष, शुभम, निक्की, गुड्डू, कल्लू और हल्ले। सुनिए अपनी फरमाइश पर मोहम्मद रफी को फिल्म जानी दुश्मन में वर्मा मलिक के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

श्रोताओं, कार्यालय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्राप्त सूचना सुनिए। समस्त पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को सूचित किया जाता है कि स्टेशन कमांडर सागर की अध्यक्षता में दिनांक 2 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे शहबाज सैनिक इंस्टीट्यूट में ECHS सदस्यों हेतु सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अतः सभी संबंधित उक्त सम्मेलन में सुबह 8:30 पर उपस्थित हो सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। और अब कार्यक्रम का अगला गीत, जिसकी फरमाइश हमें मिली है व्हाट्सएप से, गुजराती बाजार सागर से राजेश मनवानी, शंकर सचदेव, अनिल गंगवानी, सपना मनवानी, चंपक भाई जैन, निर्मल भोले बजाज, महक, अंजलि, रूपेश, बरखा, प्रियंका और इनके बहुत सारे साथी। व्हाट्सएप से ही फरमाइश है पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा। ये खत्म मिला है। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, शिवा शिवांशु, यश अवधेश, प्रेम नारायण, रमेश कठोंदिया, सुजीत और रमाकांत दुबे। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कस्मे वादे फिल्म में आशा भोसले को। शब्द रचना गुलशन बाबरा की है, धुन बनाई है RD बर्मन ने।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ग्राम बिनेका तहसील बंडा जिला सागर से बलराम सेन, अरविंद, रेखा, रविंद्र, संगीता, महेंद्र, राम देवी, सुरेंद्र, नंदिनी, रिया, गौरव राज, आर्यन, कौशल और दीप्ति सेन। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। ये खत में मिला है यादव मोहल्ला सनावद से। लिखने वाले हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान, जितेंद्र, धर्मेंद्र मालाकार। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमारी संचिता वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, करड़ा रिसोर्ट से कुमारी सानवी देशमुख और सर्वद देशमुख। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म बड़े दिलवाला में। मजरू के बोलों को संगीत में ढाला है राहुल देव बर्मन ने।

बरसात की एक रात, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन और गीतकार आनंद बख्शी। फरमाइश व्हाट्सएप से मिली है, लिखने वाले हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईराज, विशाल और इनके बहुत सारे साथी। इन्होंने खत हमें लिखा है, पता नहीं लिखा है, शास्त्री नगर बीड़ शहर से। अपने नाम को किशन की जगह किशन लिखा हुआ है। और कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओम और साईं गायकवाड़, ये खत हमें मिले हैं। HIG प्रथम गौरनगर मकरोनिया से जूही सिंह परिहार, सुधा सिंह, भविका सिंह, ज्योत्सना, महेंद्र सिंह, सुमित सिंह, अरविंद सिंह, विकास, अभिराज और छोटा बाबू। एक और खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेंद्र बिरक और मीका ब्रेक का। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर बड़े दिल वाला इस फिल्म का ये गीत। फिल्म का नाम है बरसात की एक रात।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक मोहम्मद शाकिर अलकमा खत्री अलतमश खत्री रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। बठिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर दपिंदर वरिंदर सिमरन कुलदीप एकम दमन अभिजोत और इनके बहुत सारे साथी। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर इंदिवर के बोल। राजेश रोशन का संगीत है और फिल्म का नाम है कामचोर।

0: इस गीत के साथ ही मनचाहे गीतों का ये सफर बस यहीं तक। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, करें थोड़ा सा इंतजार।
1: रहे हैं विविध भारती से आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पर पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

दोस्तों, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो

0: ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

प्रस्तुत है छाया की। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामी, आग की त्रासदी है कि वो हमें झुलसा देती है। हाँ, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है और बुझते बुझते एक जमाना बीत जाता है। हम ताउम्र किसी आग में जलते रहते हैं, नफरत की आग या फिर प्रेम की अगर।

धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, लगता है किसी का इश्क जल रहा है इन दिनों।

कहते हैं नफरत आग लगा देती है और प्रेम की एक बूंद बड़ी से बड़ी आग बुझा देती है। जिनके दिलों में नफरत होती है उनकी जुबां सिर्फ आग ही उगलती है और ये आग सिर्फ धुआं ही छोड़ती है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती है।

हमारा प्यार जैसे जंगल की आग था, और कहते हैं अगर इश्क की आग दिल में लगी हो तो सुकून कभी मिलता नहीं है। अब आग को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। चूल्हे में लगी आग खाना पकाती है और पेट की आग को शांत करती है, लेकिन यही आग जब रिश्तों में लग जाए तो घर जलकर खाक हो जाते हैं। यानी आग का अपना एक गुण है, आग ठंड में राहत देती है और यही आग गर्मी में झुलसा देती है। ये सीने की आग है साहेब, यहाँ पानी का क्या काम। ये सीने की आग है साहेब, यहाँ पानी का क्या काम। किया हमने महज इश्क ही तो था कमबख्त, किस्मत ही निकली बेईमान।

इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आग, जी हाँ, आग कुछ नहीं बोलती। वो अपने को समेट कर चुपचाप माचिस की डिबिया में पड़ी होती है, पर कभी कभी ना राख उड़ती है ना उठता है धुआं। कुछ रिश्ते बस चुपचाप जला करते हैं। हालांकि खुद को अगर हमने परिश्रम की भट्टी में झोंक दिया तो हीरा बनकर बाहर निकलते हैं। यानी ये आग आपको जलाकर खाक भी कर सकती है, और यही आग कांच को हीरा भी बना देती है।

ये आग की बात है, तूने ये बात सुनाई है, ये जिंदगी की वही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। कहते हैं आज

आग में ही नहीं पाई जाती, कभी एकांत में स्वयं के भीतर के तापमान को जांच कर देखना। भीतर का मौसम भभक रहा होता है कई बार, और मन उस आंच में सिकता रहता है, सिकता रहता है, धीरे धीरे धीरे धीरे। इन दिनों मौसम जैसे धुआं धुआं सा है, हर तरफ एक आग और फुगा सा है।

आग को साधते हुए कई बार आग से खेल जाते हैं हम, और यही है वो आग, सना है जिसका ताप जीवन की खुशबू से। हाँ, लक्षित नहीं होता है जीवन के ठंडे और धूसर राख भरे अवसाद के नीचे। हमारे भीतर भी एक आग बची होती है और इसी आग में प्यार और नफरत सिकते रहते हैं। इसी आग में जलते हैं सपने, ख्वाबों का जंगल भी इन्हीं लपटों से झुलस जाता है, और जंगल में फैली ये आग जल्दी बुझती भी तो नहीं।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की पुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 में बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम चार दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने भी फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गाते नहीं, एक लाइन सुना के दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कूदे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती,

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कवराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक DR कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The government today approved two major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7 kilometer long Kanpur-Kaburai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen or Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VB G. Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a three-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with various administrations. The panel informed the Home Minister that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. India has strongly condemned the demolition of the historic 125-year-old sacred Gurudwara Sri Guru Singh Sabha Sahib in Farrukhabad, Pakistan, calling it highly deplorable and a targeted act of vandalism. In response to media queries regarding the reported demolition, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, the systemic targeting of religious minorities and their places of worship in Pakistan continues unabated. India has called upon Pakistan to expeditiously investigate this matter and bring the perpetrators of this act to justice. India and Pakistan today exchanged lists of civil prisoners and fishermen in each other's custody through diplomatic channels in New Delhi and Islamabad. The External Affairs Ministry said in a statement that India has shared lists of 386 civil prisoners and 53 fishermen in its custody who are Pakistani or believed to be Pakistani. Pakistan has shared a list of 52 civil prisoners and 198 fishermen in its custody who are Indian or believed to be Indian.